印度德里广播电台，下面请听印地语电音歌曲。

हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए। मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग, अपने पास एक ही चीज सोलह आने स्वदेशी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल।

एक तनु नामक छद्म रूपधारी मुनि और सुअर रूप में प्रकट होने वाले राक्षस कालकेतु के मायावी षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु ने भोजन के लिए 100,000 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। राजा के पुरोहित रसोइये के रूप में स्वयं कपटी मुनि ने वेदों में वर्णित 6 रसों से युक्त 4 प्रकार

का भोजन बनाया, जिसमें नाना पशुओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों का मांस पकाया गया था। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा कि गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत खाओ, इसको खाने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। ये सुनकर स्तंभित ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ में बाल कांड का भाग 65वां। अब कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिकादेशीयेन विदेशसचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान् विषयान् समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान् सुदृढीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध

0: Di sini siaran luar negeri Akaswani Seksi Rasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, penyiaran Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Rasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
5: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक

0: मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
0: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों

0: में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना

0: कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोकसत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमेरिका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
3: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual

0: Paper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in Lucknow last night. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
1: Thank you, Anuja. The visit of US Secretary of State Marco Rubio and his meeting with Prime Minister Narendra Modi has been prominently covered by most of the newspapers. PM backs peace push with renewed push to repair ties in meeting with Rubio is a front page headline in Hindustan Times, while the Tribune writes, India flags energy crisis. State Secretary touts US oil, extends Trump's invite to Modi to visit White House. Another headline in Hindustan Times says, headway in Iran-US talks raises truce hopes. Quoting Defense Minister Rajnath Singh, a Sunday pioneer, headline says, India to be biggest weapon exporter in 25-30 years, adding the government wants private sector share in defense production to rise to 50%. The Hindu reports on new law Viksit Bharat Jiramji replacing the 20-year-old MG Narega set to come into effect from 1st of July with draft rules open for feedback till 3rd week of June under the headline, Big Poor States to get higher funds under government's new rural job scheme. Hindustan Times editorial writes how Sikkim showcases a thoughtful vision of development while respecting tradition and an exemplary social harmony to its education sector, opening the doors to the future. More red, white and blues for green card applicants, states the Economic Times, as new policy for US immigration may force permanent residency seekers to return home for paperwork. And finally, the Sunday Times reports that only 6 states now have fertility rate above replacement level. The paper refers to latest sample registration report of 2024. And with that, it's back to Ganucha.
0: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderweer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुजाकिरात करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है, इसमें स्वास्थ्य साथी मुस्तफिदीन को भी शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र एसआईटी ने नासिक टीसीएस जिंसी ज्यादती और मजहब की तब्दीली के केस में 4 मुलजिमान के खिलाफ फर्दे जुर्म दायर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुस को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शिमाली वस्ती और मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है। एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी अमन के अलावा सलामती से मुतालिक उमूर समेत दीगर मामलात पर भी वसी तर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड के वजराए खारजा की मीटिंग में शिरकत की गरज से 4 दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे। उन्होंने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें दिफा, अहम टेक्नोलॉजीज, तिजारत और सरमायाकारी के अलावा तवानाई की फराहमी, कनेक्टिविटी, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत बहुत से शोबों में दो तरफा तआवुन में ठोस पेशरफ्त के बारे

0: में जानकारी फराहम की। जनाब मोदी ने जोर देते हुए कहा कि भारत और अमरीकी आलमी भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वजीर आजम ने अमन कोशिशों के लिए भारत की मुसलसल हिमायत का इरादा किया और मुजाकिरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के पुरअमन हल की अपील को दोहराया। वजीर खारजा जनाब रूबियो ने मगरबी एशिया की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर अमरीकी मौकफ साझा किए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को मुनक़िद होगी। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वज़ीर खारजा तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के वज़ीर खारजा मार्को रूबियो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। एक आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल खित्ते के लिए क्वाड के विजन को मद्देनज़र रखते हुए वज़राए खारजा तरजीह शोबों में क्वाड के तआवुन को आगे बढ़ाने के बारे में ख़यालात का तबादला करेंगे। क्वाड के जारी इकदाम पर पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे और भारत बहरुल काहिल खित्ते में हालिया पेशरफ्त और बाहमी तौर पर मुतल्लिक दीगर बैनुल अक़वामी उमूर पर गौर करेंगे। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से भारतीय कारोबारी रहनुमाओं के एक वफ्द के साथ कनाडा के 3 रोजा दौरे पर होंगे। वजारत तिजारत ने मुतला किया है कि तिजारत सरमायाकारी और भारत कनाडा जामे इकतसादी शराकतदारी मुआहदे CEPA के मुजाकिरात को आगे बढ़ाने के लिए ओटावा और टोरेंटो में 2 तरफा मसरूफियात में हिस्सा लेंगे, जो इस दौरे का मरकजी महवर होगा। इस साल मार्च में कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी के दौरे भारत के दौरान टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर दस्तखत किए गए थे। मुजाकिरात का पहला दौर मार्च में वर्चुअल तरीके से मुनक़िद किया गया था और दूसरा दौर 8 मई को ख़त्म हुआ था। इस दौरे के दौरान ओटावा में मुजाकिरात के अगले दौर का इनेकाद किया जाएगा। दोनों फरीक इस साल के आखिर तक एक तवाजुन और बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद CEPA को जल्द हतमी शक्ल देने की समत में काम कर रहे हैं, जिसका मुश्तरक मकसद 2030 तक दोतरफा तिजारत को 70 अरब कैनेडियाई डॉलर तक पहुंचाना है। मगरबी बंगाल में इस साल जुलाई से आयुष्मान भारत स्कीम का आगाज होगा। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल कोलकाता में सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा के साथ वर्चुअल वसीले से एक मीटिंग के बाद ये ऐलान किया। रियासती सेहत स्कीम स्वास्थ्य साथी के तहत पहले से मौजूद मुस्तफिदीन को आयुष्मान भारत स्कीम में जोड़ा जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में एक मफाहमत नामे पर जून में नई दिल्ली में दस्तखत होंगे। जनाब अधिकारी ने कहा कि मगरबी बंगाल में PM जन औषधि केंद्रों की तादाद 117 से बढ़ाकर 469 करने के सिलसिले में मरकज को एक तजवीज भेजी गई है। वजीर आला ने यह भी कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और जनूबी दिनाजपुर में नए मेडिकल कॉलेजेस और शिमाली बंगाल के लिए एक नए एम्स के सिलसिले में तजावीज भी मरकजी हुकूमत को भेजी जा चुकी हैं। महाराष्ट्र में TCS फैसिलिटी के खिलाफ मुबैना तौर पर जिंसी ज्यादती और मजहब तब्दील कराने की कोशिश करने के मामले में नासिक की एक अदालत में 1500 सफात पर मुश्तमिल एक फर्द जुर्म दायर की गई है। SIT के चीफ संदीप मिटके के मुताबिक ये फर्द जुर्म 4 मुलजिमान दैनिक दानिश शेख, निदा खान, मतीन पटेल और तौसीफ अत्तार के खिलाफ कल दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले से मुतालिक 7 से 8 अफराद के खिलाफ इजाफी फर्द जुर्म अगले 3 से 4 रोज के दौरान दायर की जाएगी। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर JP नड्डा ने कहा है कि हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ सेहत और तिब्बी पेशेवर अफराद की तरबियत यकसां तौर पर अहम है। उन्होंने ये बयानात कल नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में इम्तहानात के कौमी बोर्ड की तकसीम असनाद की 23वीं तकरीब से खिताब करते हुए कही। जनाब नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टरों को हिफ्जान सेहत के निज़ाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देनी चाहिए। वहीं बुनियादी ढांचे और दीगर सहूलियात को मुल्क के लिए हार्डवेयर के तौर पर काम करना चाहिए। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क के उभरते हुए तिब के मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन को एजाज देकर भारत अपने हिफ्जान सेहत के इको निज़ाम के मुस्तकबिल को एक शक्ल दे रहा है। मेडिकल साइंसेज में इम्तहानात के कौमी बोर्ड के बारे में बात करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि इस इंस्टीट्यूट ने एक मजबूत ब्रांड तामीर किया है, जो कि हिफ्जान सेहत में पेशेवराना सलाहियत, मफाहमत और साख को पेश किया है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मरीज की देखभाल में और ज्यादा सहूलियात पैदा करने और उन्हें

0: रकम बनाने के लिए 11 नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हुकूमत वसीतर अवामी सलाह मशवरे के लिए VBG रामजी एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाय कर दिया है। देही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई भी फर्दो फरीक तंजीम या कोई इदारा अगले माह की 21 तारीख तक सलाह मशवरे के लिए जाब्तों के मसौदे पर अपने एतराजात या तजावीज पेश कर सकता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट MG नरेगा 2005 की जगह ले ली है। इस कानून का मकसद एक माली साल में कानूनी रोजगार की जमानत 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक उस जाब्तों के मसौदे सेक्शन 33 और इस कानून की दीगर मौजूदा शिकों के मुताबिक वज़ किए गए हैं। वजारत ने कहा है कि अबूरी शिकों के जाब्ते कौमी सतह की कायम कमेटी के जाब्तों, मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी कौंसिल के जाब्ते, इंतजामी अखराजात के जाब्ते व शिकायत के इजाले के से मुतालिक जाब्ते समय जाब्तों के मसौदे सलाह मशवरे के लिए अवामी सतह पर रखे गए हैं। नए कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेह उजरत की अदायगियों पर काफ़ी जोर दिया गया है। इस कानून में बेरोजगार भत्ते की भी गुंजाइश फराहम की गई है, बशर्ते के मुकर्रर वक्त के अंदर काम नहीं फराहम किया जाता। VBG-RAM-G Act 2025 इस साल 1 जुलाई से निफाज के साथ तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतज़ाम इलाकों में शुरू करने के लिए इस माह की 11 तारीख को नोटिफाई किया गया था। नई दिल्ली से अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और खित्ते में दीगर हलीफ मुल्कों के साथ फोन पर गुफ्तगू के बाद आबनाए हुरमुस को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक मुजाकिरात हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस पेशरफ्त का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इस माहदे के हतमी पहलुओं और तफसीलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और जल्द ही उनका ऐलान कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इसराइल के साथ सऊदी अरब, मुत्तहिद अरब अमारात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन के लीडरों के साथ बातचीत की थी। इससे पहले ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सरकारी टेलीविजन पर बताया कि पिछले हफ्ते अमरीका और ईरान के मौकफ में कुछ तब्दीलियां आई हैं, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि इसका मतलब ये नहीं कि अहम उमूर पर समझौते हो जायेंगे। उन्होंने अमरीकियों पर मुतजाद बयानात देने का इल्ज़ाम लगाया। ईरान 8 अप्रैल को जंगबंदी पर मुत्तफिक हुआ था और इसके बाद से वाशिंगटन और तेहरान एक तवील मुद्दती अमन मुआहदे पर बातचीत में मसरूफ हैं। वाशिंगटन में सदारती कॉम्प्लेक्स के नज़दीक गोलियों के चलने की आवाज़ सुनने के बाद व्हाइट हाउस के नज़दीक सिक्योरिटी के ताल्लुक से खौफ व हिरास पैदा हो गया। इससे कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। अमरीका की खुफिया सर्विस ने पेश आए इस वाकये के नज़दीक एक मुश्तबा शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया और अफरा तफरी के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि वो इस वाकये की तफसीलात हासिल करने के बाद अवाम को जानकारी फराहम करेंगे। जमहूरिया कांगो में हुकाम ने बताया है कि मुल्क में इबोला वायरस के फैलने से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 204 हो गई है। मुल्क की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 204 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि इबोला वायरस के कुल 867 केसेस सामने आए हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के हिस्सों में सख्त गर्मी की लहर की पेशगोई की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की सूरत हाल रहने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल और उड़ीसा में गर्म और मरतूब मौसम रहने का इम्कान है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में रात में गर्मी की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज अंडमान और निकोबार, जजायर, बिहार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में गरज चमक का इम्कान है। गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड के एक नए कौमी रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ 2026 के एथलेटिक्स फेडरेशन कप में मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता। उन्होंने अपने सावे का जाती बेहतरीन रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़

0: जो 10.18 सेकेंड का था और 10.16 सेकेंड के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वालिफिकेशन निशाने को आसानी से उबूर कर लिया। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकेंड की टाइमिंग के साथ चांदी का तमगा हासिल किया, जबकि प्रणॉय प्रमोद ने 10.29 सेकेंड में अपना मुकाबला जीतकर कांसे का तमगा हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर की 101 रन की शानदार कारकर्दगी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज 2 मैच होने हैं, जिसमें पहला मैच दोपहर 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान होगा और दूसरा मैच शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत दौरे से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, भारत अमरीका आलमी अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक नुमायाँ सुर्खी है, वजीर आजम ने 51,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे तकसीम किए, कहा विकसित भारत में नौजवानों का अहम रोल। अखबार ने मुल्क में जारी शदीद गर्मी से मुतल्लिक सुर्खी लगाई है, अगले चंद दिनों में दिल्ली NCR समेत मुल्क के बड़े हिस्सों में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं। अखबार प्रताप ने भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान RP सिंह के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि संगीन माली और इंतजामी बहरान की तरफ बढ़ रहा है पंजाब।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है, इसमें स्वास्थ्य साथी मुस्तफिदीन को शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र SIT ने नासिक TCS जिंसी ज्यादती और मजहब की तब्दील के केस में 4 मुलजिमान के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शिमाली वस्ती और मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है। और एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है, प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, साहित्य में किसी कहानी के दो धरातल होते हैं, एक उसका बाह्य पक्ष जो घटनाओं दृश्यों चरित्रों के शारीरिक आवागमन और सामाजिक ताने बाने से निर्मित होता है, और दूसरा उसका आत्मपक्ष जो कहानी की आंतरिक चेतना पात्रों के अंतर मन का भूगोल और उसकी मनोवैज्ञानिक गहनता है। यदि घटनाएं कहानी का क्लेवर या शरीर है तो आत्मपक्ष उसकी आत्मा है। हिंदी कहानी का विकास क्रम इस बात का गवाह है कि जब तक कहानी केवल घटना प्रधान थी वह महज मनोरंजन का साधन रही, परंतु जैसे ही उसमें आत्मपक्ष का प्रवेश हुआ वह मनुष्य के अस्तित्व की व्याख्या करने लगी। इस कार्यक्रम में हिंदी कहानी के इसी आंतरिक संसार की परतों को खोलने का प्रयास होगा और आप सुनेंगे कि कैसे एक लेखक शब्दों की ओट में छिपकर मानव मन के अगाध समंदर में गोता लगाता है। साहित्यिकी के इस अंक में लीजिए सुनिए परिचर्चा हिंदी कहानी का आत्मपक्ष। प्रतिभागी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर हिरण्य हेमकर, फिल्म प्रोड्यूसर लेखिका और सांस्कृतिक दूत डॉक्टर श्वेता सिंह उमा, वरिष्ठ लेखक और मीडियाकर्मी श्री सूर्यकांत शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर आलोक रंजन पांडे।
4: हिंदी कहानी का इतिहास देखें तो लगभग 200 साल बीत चुके हैं। इंसा अल्लाह खां की रानी चक्की की कहानी से शुरू होकर प्रेमचंद से होते हुए आज उदय प्रकाश की कहानी, तिरिच और अनिल यादव की लोक गायक का विरह तक सफर करते हुए हिंदी कहानी ने कई मील के पत्थर पार किए हैं। इस दौरान अनेक आंदोलन भी हुए। इन्हीं सबके बीच जो प्रश्न सबसे अधिक उभरे उनमें कहानी का आत्मपक्ष रहा। उदाहरण के लिए हम निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे देखें तो उसमें लतिका का आत्मपक्ष उभर कर हमारे सामने आता है। और आगे की कहानी।

0: गैंग्रीन में, तो वे मैं शैली अपनाते हुए उस मशीनी जीवन की व्यापक तस्वीर सामने रखते हैं। इसी तरह मनु भंडारी की कहानी यही सच है में स्त्री की रिश्तों को लेकर वह पोस्ट सामने आता है। मेरा पहला सवाल सूर्यकांत जी आपसे है
1: जी,
0: कि हिंदी साहित्य की आत्मपक्ष केंद्रित कहानियों में कौन सी कहानी को आप महत्वपूर्ण मानते हैं और उसमें क्या नयापन आपको दिखता है?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं

0: संस्कृति का बड़ा होना बहुत जरूरी है। आज का जो टॉपिक है कहानी का आत्मपक्ष,
1: जी जी
0: ये उसी से जुड़ा हुआ है। अब अगर कहानी की बात करें, मुझे सबसे अच्छी जो कहानी लगी वो निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी लगी।
1: जी जी
0: ये कहानी अकेलेपन, स्मृति और पात्रों के आंतरिक खालीपन पर केंद्रित है।
1: जी
0: जितना
1: जी।
0: अच्छा मानसिक द्वंद इसके अंदर बताया गया है और जितनी शिद्दत से इसको बताया गया है, मैं समझता हूँ कि शायद निर्मल वर्मा अगर अमर हुए हैं
1: जी
0: तो उसमें इस कहानी का बहुत बड़ा योगदान है।
1: जी जी श्वेता जी, किसी भी साहित्य में लेखक की जो मौजूदगी होती है वह उसके आत्मपक्ष का निर्धारण करती है, और कहानी का आत्मपक्ष उस कहानी में यथार्थ की मात्रा का निर्धारण भी करता है।
2: बिल्कुल।
1: और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था आपसे कि इंसा अल्लाह खां की कहानी रानी तेती जो कहानी आती है उसमें राजा रानी के किस्से के तर्ज पर कहानी वो लिखी जाती है, उस कहानी से कहानी की आत्मपक्ष की प्रवेश बिंदु माना जाता है। इंसा अल्लाह खां की कहानियों के बाद जब हम आते हैं प्रेमचंद युग तक, तो आपको उसमें क्या नयापन दिखता है?
2: जहाँ तक आपने इंसा अल्लाह खान की बात की, तो इंसा अल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी, मैं मानती हूँ कि मूल रूप से राजा रानी की परंपरागत कथा शैली से शुरू होती है।
1: जी जी।
2: जहाँ घटनाएं सीधे सीधे आगे बढ़ती है, लेकिन आगे चलकर उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है, कथा के भीतर लेखक की अपनी उपस्थिति और हस्तक्षेप। इसमें आत्मपक्ष का प्रवेश स्पष्ट रूप से वहां से माना जा सकता है जब लेखक कहानी के बीच में रुककर केवल कथा नहीं सुनाता बल्कि कथा की भाषा और शैली पर भी टिप्पणी करने लगता
1: बिल्कुल, है। बिल्कुल।
2: वह यह आग्रह करता है कि कहानी ठेठ हिंदी में लिखी जानी चाहिए, फारसी अरबी मिश्रित भाषा में नहीं होनी चाहिए। यह क्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ कथाकार पहली बार पाठक को यह एहसास कराता है कि वो केवल घटनाएं नहीं सुना रहा बल्कि वो स्वयं कथा निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित और स्पष्ट रूप से कर रहा है, उसमें शामिल है, यानी वो कहानी के भीतर रहकर कहानी के बारे में बोलना चाहता है, बातें करता है। यहीं से रानी केतकी की कहानी पारंपरिक कथा से अलग कही जा सकती है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और इसी बिंदु पर आत्मपक्ष का प्रवेश मैं मानती हूँ कि स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल, श्वेता जी ने बहुत अच्छे से कहा कि किस्सा गोई में कहानी का आत्मपक्ष एक नए रूप में आता है। हिमकर जी, प्रेमचंद को केंद्र में रखकर हम कहानी की विकास यात्रा को देखते हैं, और उनके पहले और बाद में भी लेखकों ने अपने आत्मपक्ष को बहुत सुदृढ़ रूप से अपनी कहानियों में दिखाया। मेरा आपसे सवाल है कि प्रेमचंद भारतीय आत्मा और वैचारिक स्वरूप को अपनाते हुए कहानियां लिखते हैं, उनके पूर्ववर्ती और कहानियों से आत्मपक्ष में आपको कैसी भिन्नता दिखाई देती है?
3: ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जब भी हिंदी कहानी की बात की जाती है तो सबसे बड़ी चेष्टा की जाती है कि पहली हिंदी कहानी कौन सी है, और लगातार उसके बारे में आलोचकों ने समय समय पर, तो दरअसल पहली मौलिक हिंदी कहानी उसके आत्मपक्ष की विवेचना को ही केंद्र में लेकर, उसकी वैचारिकी को केंद्र में ही लेकर ये तैयार करने की कोशिश आलोचकों द्वारा की गई। मेरे हिसाब से प्रेमचंद से पहले एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की जो कहानी है, उसमें एक आत्मपक्ष में मजबूती है और उसमें लेखक विद्यमान है और उसमें एक सामाजिकी भी है। जैसे एक उदाहरण कहानी के अंदर ही है कि एक विधवा बुढ़िया जाती है और जमींदार से वो कहती है कि एक टोकरी भर मिट्टी उठाने दो क्योंकि मेरे छोटे बच्चे के लिए चूल्हे पे खाना बनाना है। टोकरी भरकर जैसे ही वो कहती है, जमींदार जी हाथ लगा दीजिए, तो जमींदार जब हाथ लगाने आते हैं तो टोकरी उठ नहीं पाती है, तो वो बुढ़िया कहती है कि कैसे बोझ उठा पाओगे जब एक टोकरी का बोझ नहीं उठा पा रहे हो, तो ये जो पूरा जो घर लिया है उसमें इतनी मिट्टी है उसका बोझ कैसे उठा पाएंगे। इसके बाद दुलाई वाली एक कहानी,
1: बिल्कुल,
3: है।
1: बिल्कुल, मैं
3: उसका जो आत्मपक्ष है कि पहली बार हिंदी कहानी में परिवार के बीच के संबंधों और हंसी टिटोली को बहुत ही मनोवैज्ञानिक स्वरूप के साथ उद्घाटित किया गया है। पत्नी है, काफी दिनों से मिली नहीं है, उस जमाने में पति और पत्नी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, तो पहचानते किससे थे, कपड़ों से पहचानते थे। लखनऊ स्टेशन है, लखनऊ स्टेशन पे उनकी भाभियों को ठिठोली सूझती है और वो अपने देवर को कहते हैं कि अंदर ही बैठी हुई है, जाकर मिल लो।
1: जी,
3: और उनकी भाभी जो होती है उनकी पत्नी की चादर ओढ़कर खड़ी होती है और वो पीछे से उसे दबोचते हैं और सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। ये हिंदी कहानी का एक ऐसा आत्मपक्ष था जिसने हिंदी कहानी को राजा रानी की कहानियों से अलग करकर आम जनता के बीच में लेकर आई, आम जनता की संवेदना के साथ उसे प्रकट किया।
1: बिल्कुल।
3: और प्रेमचंद के युग में आते आते ये जो आत्मपक्ष है उसमें एक राजनीतिक चेतना आती है, सामाजिक चेतना आती है और स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना आती है, यानी कहानी जो होती है वो हमारे आसपास के परिवेश से ही कल्पित होती है। ये

0: हेमचंद पूर्ववर्ती कथाकारों ने हमें
1: बिल्कुल
0: बता
1: बिल्कुल
0: दिया था।
1: हिमकर जी,
0: सही
1: आपने
0: बात,
1: बिल्कुल सही कहा। देखिए, कहानी शब्द ही बना है कहनानी से, और
0: बिल्कुल
1: जब बच्चे छोटे होते थे, चूंकि टीवी नहीं होता था, कोई मनोरंजन साधन नहीं होता था, तो
0: जी
1: बच्चों को लोरी और कहानी सुना सुना के हम उनको मनोरंजित करने का प्रयास किया करते थे।
0: जी
1: और अभी बताया हिमकर जी ने कि उसमें कैसे प्रेमचंद अलग रूप में लेके आते हैं। प्रेमचंद के बाद कहानियों में मनोविज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से और स्मृतियां आधारित बहुत सारी कहानियां हमारे सामने दिखाई देती हैं। यदि हम पाजेब की बात करें, तो पाजेब एक तरह से मनोविज्ञान भी है, और स्मृति के अलग हटने से उसकी कहानी का आत्मपक्ष बदलता रहता
0: बदलता
1: है।
0: रहे
1: रेखा
0: तो
1: जी, जैसे कि हेमकर जी ने भी कहा कि सामाजिक दृष्टिकोण, प्रसाद की कहानियों की बात किए हुए
2: जी
1: आगे बढ़ना लाजमी नहीं है।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: और
2: सही बात
1: ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीयता,
2: जी।
1: जितनी राष्ट्रीयता उसने कहा था मैं दिखता है, उससे कहीं ज्यादा मुझे पुरस्कार में दिखाई देता
2: बिल्कुल
1: है।
2: सही बात
1: बिल्कुल,
2: कर रहे हैं।
1: और पुरस्कार जैसी कहानियों में लेखक का अपने जो उनका देश प्रेम का जो पक्ष आता है,
2: जी
1: आप उसने कहा था भी ले लीजिए, प्रसाद की कहानी ले लीजिए,
2: जी जी
1: उस देश प्रेम में उनके यहाँ आत्मपक्ष किस रूप में आप देखते हैं। जैसे हमने सामाजिक की बात कर ली, मनोविश्लेषण की बात कर ली, तो ये राष्ट्र प्रेम जो है
2: जी
1: वो आत्मपक्ष को किस रूप में दर्शाता है।
2: मैं मानती हूँ कि जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ, विशेषकर पुरस्कार जैसी रचनाओं में केवल कथा ही नहीं बताई जाती है, बल्कि उसमें व्यापक तौर से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय पुनर्जागरण की भावना दिखाई देती है। उनकी कहानियाँ भारतीय इतिहास, संस्कृति और गौरव बोध को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। उन रचनाओं में जो आत्मपक्ष दिखाई देता है, वो पारंपरिक अर्थों में आत्मपक्ष जैसा निजी अनुभव नहीं है,
1: बिल्कुल
2: बल्कि लेखक की स्वचेतन वैचारिक उपस्थिति है। प्रसाद कथा के माध्यम से अपने समय के समाज, संस्कृति और राष्ट्र चेतना पर विचार करते हैं, और कहीं कहीं कथा को इस दिशा में मोड़ देते हैं जिसमें उनका देश प्रेम, सांस्कृतिक गौरव और नैतिक दृष्टि स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पुरस्कार जैसी कहानियों में ये आत्मपक्ष विशेष रूप से उस समय उभरता है जब कथा व्यक्तिगत भावनाओं से आगे बढ़कर राष्ट्र, कर्तव्य और बलिदान जैसे मूल्यों पर केंद्रित हो जाती है। यहाँ लेखक केवल घटनाओं का वर्णन करता नहीं रह जाता, बल्कि वो एक सचेत विचारक और मार्गदर्शक स्वर के रूप में उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार मैं मानती हूँ कि प्रसाद का आत्मपक्ष उनकी कहानियों में राष्ट्रवादी चेतना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और नैतिक मूल्यों की स्थापना के रूप में प्रकट होता है, न कि व्यक्तिगत आत्मकथाकार अभिव्यक्ति के रूप में।
1: श्वेता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हिमकर जी, आप चूंकि रंगकर्मी हैं और आंचलिक कहानियों को आप अच्छी तरह समझते हैं, जैसे अभी श्वेता जी बता रही थी पुरस्कार और सम्मान, मैं कहीं पढ़ रहा था पुरस्कार और सम्मान में बहुत अंतर होता है, और पुरस्कार जो कहानी है मूलतः पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता में जाना पड़ता है, और इस कहानी को हम देखें और पढ़ें तो लगता है कि प्रतियोगिता चल रही है। तो चूंकि आप रंगकर्मी हैं और फणीश्वरनाथ रेणी की आंचलिक कहानियों की हम बात ना करें, और उसमें भी खासकर लाल पान की बेगम का, या फिर उसके आगे आते हैं तीसरी कसम की बात ना
0: तीसरी
1: करें,
0: कसम
1: पंचलेट की बात ना करें, और ये सारी कहानियों में मूलतः गांव की आत्मा जो है वो मनोविश्लेषणवाद, वो राष्ट्र प्रेम। पुरस्कार में गांव है, लेकिन उस गांव में और लाल पान की बेगम के गांव में अंतर दिखाई देता है, करमनासा की हार के गांव में अंतर दिखाई देता है, और उसी तीसरे कसम और मारे गए गुलफाम पे एक फिल्म भी बनती है। और फिल्म और कहानी, क्योंकि आप कहानीकार भी हैं और रंगकर्मी भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहानी की आत्मा फिल्म में रूपांतरित हो पाई है, या आत्मपक्ष दोनों का अलग अलग दिखाई देता है आपको?
0: ये बहुत दिलचस्प सवाल है। फणीश्वरनाथ रेणु के ऊपर जब भी हम बात करते हैं तो उनकी आंचलिकता के ऊपर बात होती है। कमाल की बात यह है कि इसका आत्मपक्ष इसके शीर्षक से अपने आप ही हमारे सामने प्रकट होता है। तीसरी
1: जी
0: कसम, कहानी में तीन कसमें हैं, तीसरी
1: जी
0: कसम, पंचलेट,
1: जी
0: पंचलाइट की बात हो रही है, वहां लोग पंचलेट कहते हैं तो पंचलेट है, और लाल पान की बेगम जो वहां पे बहुत मशहूर है, इस तरह के जो बोलियों में बात आती है। तीसरी कसम फिल्म बनी और तीसरी कसम जो कहानी लिखी गई, दोनों का आत्म एक है।
1: जी
0: जिस तरीके से फणीश्वरनाथ रेणु ने कहानी लिखी है, हूबहू उसी तरीके से पर्दे पर उतारी गई है, और साहित्य का फिल्म में रूपांतरण का एक बेजोड़ नमूना है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो फणीश्वरनाथ रेणु के आत्म में गांव की राजनीति रहती है, गांव का अपना उसकी सामासिक शक्ति रहती है, और सबसे बड़ी बात कि गांव में पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, उनकी अपनी सामाजिकता रहती है, उनका अपना आत्म रहता है, और फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों में जितने भी पात्र हैं वो पिछड़ी जातियों से आते हैं और वो अपने आत्म को सबसे ज़्यादा प्रस्तुत करते हैं।

0: हैं, चाहे गाड़ीवान हीरा मन हो, उसकी जाति अगर पूरी कहानी में कहीं भी दृष्टिगोचर स्पष्ट रूप से नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो पिछड़ी जाति से संबंध रखता है और हीराबाई जो वहाँ पर आती है नौटंकी करने के लिए उससे प्रेम करता है लेकिन अपने आत्म को नहीं भूलता है। और उसके साथ साथ जो गांव में उसने जो जो कस्में खाई हैं और जो जो कहानियाँ सुनी हैं उन कहानियों को आत्मसात करवाता है किसके साथ, तो हीराबाई के साथ। तो आप फणीश्वरनाथ रेणु बहुत बड़े कथाकार हैं, यानी उन्होंने आंचलिकता के बहाने कहानी के आत्मपक्ष को गांव से जोड़ा, गांव के तत्वों को और वहां के व्यक्ति को और वहां के पिछड़े समाज को, इन सब को एक साथ इस तरह से पिरोया है कि वो एकमय हो गए हैं। तो इस तरीके से
1: कहानी और फिल्म का एकमय होना
0: जी
1: एक अलग रूप में हमें दिखाई देता है। सूर्यकांत जी, जैसे फिल्म में फिक्शन होता है
2: जी,
1: कहानियों में भी फिक्शन होता है। श्वेता जी रानी चेत्ती कहानी की बात कर रही थी, मैंने आपसे अनिल यादव की लोक गायक कहानी की बात की थी
2: जी,
1: करमनासा की हार की बात की थी, तो इंसा अल्लाह खां से लेकर
2: जी
1: अनिल यादव तक की कहानियों में अनेक धाराएं, वैचारिक मतभेद, यदि हम ओम प्रकाश बाल्मीकि की कहानी अम्मा की बात करें और अम्मा को देखते हुए हम उसे भूल जाएं कि वो दलित कहानी है
2: जी,
1: हम ऐसे उसे समाज के रूप में देखें, सामाजिक यथार्थ के रूप में देखें, और उस यथार्थ के बीच कई धाराएं हमारे सम्मुख वैचारिक रूप से विद्यमान दिखाई देता है। ऐसे में जो वर्तमान हिंदी कहानी है, जैसे कि हम साठोत्री कहानी को बोल जाएं, समकालीन कहानी के बाद अकहानी को देखें, उसके बाद जो कहानियों में जो आत्मपक दिखाई देता है, जिस पर आज का समय विराजमान दिखाई देता है, आज का एआई स्वरूप दिखाई देता है, डिजिटलाइजेशन दिखाई देता है, तो क्या किस्सा गोई से जो शुरू हुई कहानियों की आत्मपक हमारे सामने है, क्या आज भी उतना ही किस्सा गोई विराजमान है या हम उससे कहीं दूर होते जा रहे हैं?
2: देखिए, ये थोड़ा जटिल सवाल है, क्योंकि अब एआई का जब पदार्पण इसमें हुआ तो इसने मौलिकता को कहीं ना कहीं प्रभावित किया। ये ठीक वैसे ही है जैसे शुरू में कोई चीज बेहतर लगे और बाद में आप उसके आदि हो जाएं। लेकिन आज की कहानियां या समकालीन साहित्य में जो आत्मपक्ष है उसमें जो आत्मकथात्मक लेखन है और भोगे हुए यथार्थ को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया, तो आत्मपक्ष तो हमेशा ही मुखर रहना चाहिए, रह रहा है, लेकिन वैसा आत्मपक्ष जो साहित्यिक मापदंडों पर पूरा उतरे वो चीज उसमें नहीं है। इंशाल्लाह खां की रानी केतकी से लेकर के और अनिल यादव तक जब हम आते हैं तो बहुत अच्छा सा एक सुहावना सा सफर लगता है।
1: आपने बिल्कुल सही कहा
2: जी।
1: देखिए, जैसे जैसे कहानियों का स्वरूप बढ़ता गया, जैसे जैसे नई धारा बढ़ती गई, लेखकों ने अपनी कहानियों में मैं शैली अपनाई, मैं शैली का प्रयोग ज्यादा होने लगा, और खासकर यदि हम देखें तो दलित कथाकार और महिला कथाकारों में।
3: सही बात।
1: और यदि हम बात करें मन्नू भंडारी कहानी यही सच है, कृष्णा सोपती कहानी ए लड़की जिसे हम लंबी कहानी मानते
3: जी,
1: हैं
3: जी।
1: और ओम प्रकाश बाल्मीकि कहानी यह अंत नहीं या 25 चौका 150। जब हम इस कहानी की बात करते हैं ए लड़की में, तो उसमें क्या है कि लेखिका जो है अपनी बेटी को बैठाए रखती है और मैं कहती है कि जो मैंने किया है तुम शायद वैसा करो या ना करो, तो उसे बैठा कर रखना, ये जो मैं शैली वाली जो बात है, तो स्त्री और दलित कथाकारों में ये आत्मपक्ष के कौन से नए आयाम आपको दिखाई देते हैं?
3: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और एक स्त्री के नाते मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगी कि ये मैं पक्ष बहुत उभर कर आता है। जी जी जी, कोशिश करती हूँ लिखने की। और सही बात है कि हिंदी कथा साहित्य में स्त्री और दलित कथाकारों ने अनुभव के दायरे को व्यापक बनाते हुए इसे नई दृष्टि और संवेदनाओं से जोड़ा है। इस संदर्भ में जैसा आपने जिक्र किया कि मनु भंडारी की कहानी यही सच है और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की मैं खासकर बताना चाहूंगी 25 चौका 150, ये बहुत बहुत पसंद की जाती है और विशेष स्थान भी रखती है। स्त्री कथाकारों में अगर कहूँ तो कथा साहित्य में स्त्री के आत्मबोध, उसकी स्वतंत्र पहचान, भावनात्मक जटिलताओं और संबंधों की सच्चाई को केंद्र में रखकर काम किया गया है। यही सच है में स्त्री मन की द्वंद्वात्मकता को दिखाने के लिए, प्रेम और यथार्थ के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए अत्यंत ही सहज और मार्मिक ढंग से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसे बताया गया है। वहीं अगर दलित कथाकारों की बात करें तो सामाजिक यथार्थ के इस पक्ष को सामने लाने के लिए जो लंबे समय से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उपेक्षित थे, उसको उन्होंने अपनी कहानी में पिरोया है। 25 चौका 150 में जातिगत शोषण, आर्थिक विषमता और मानवीय गरिमा के संघर्ष का सशस्त्र चित्रण मिलता है। यहाँ अनुभव की प्राथमिकता और प्रतिरोध की चेतना प्रमुख है। इस प्रकार मैं मानती हूँ कि स्त्री और दलित लेखन में हिंदी कहानी को आत्मानुभूति की सीमाओं से निकालकर सामाजिक न्याय, स्मिता और समानता के उस आयाम तक पहुँचाया है जहाँ कथा साहित्य से अधिक जीवन

0: तुरंत यथार्थ स्वरूप और व्यापक रूप ले लेती है।
1: बिल्कुल श्वेता जी, चूंकि अब हम अंतिम पड़ाव पे हैं और हिमकर जी आपसे ये अंतिम सवाल
2: जी
1: संक्षेप में कि हिंदी कहानियों में आत्मपक्ष आपको कितना हावी दिखता है? हमने मैथिली की बात कर ली, समाज शैली की बात कर ली, देश प्रेम की बात कर ली, यथार्थ की बात कर ली, आदर्श की बात कर ली, लेकिन ये आत्मपक्ष आपको कितना हावी दिखता है?
2: हिंदी कहानियों में यदि आत्मपक्ष ना रहे, यानी लेखक के अपनी अनुभूतियां ना रहें, तो हिंदी कहानियां राजा रानी की कहानियां बन जाएगी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बिल्कुल, ये आत्मपक्ष ही है, यानी कि एक लेखक के अपने अनुभव ही हैं जो कहानी में अपने समकालीनता के साथ जोड़ता है, वैचारिकी के साथ जोड़ता है, राजनीतिक बोध, सामाजिक बोध, सांस्कृतिक बोध और आर्थिक बोध के साथ वो जोड़ता है, और तभी कहानियां बहुत समकालीन हो पाती हैं और वो लग पाती हैं कि ये हाँ हमारी ही बात कर रहे हैं। जैसे अभी कहा कि मैं की बात क्यों की जाती है, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जब हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम अक्सर कहते हैं मेरे दादाजी कहा करते थे। दादाजी की लेगेसी के कारण मैं अपनी बात को साबित करने की कोशिश करता हूं, लेकिन स्त्री और दलितों के पास कोई लेगेसी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मैं को अपनाया कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, मैं ऐसा महसूस कर रही हूं।
1: बिल्कुल, हिंदी साहित्य की कहानियों का जो आत्मपक्ष समय के साथ हमें प्रबल दिखाई देता है, इसी के साथ उसमें नए पक्ष, नए आयाम भी जुड़े हुए हैं। ज्ञान रंजन जी, हम पिता कहानी ले लें, या हाल में ही आई हुई उषा प्रियंवदती की कहानी मायावी, या संजीव की कहानी 30 साल का सफरनामा, बहुत महत्वपूर्ण कहानी आत्मपक्ष को लेकर देखी जा सकती है। एक तरफ कथाकारों ने आत्मा के भीतर डुबकी लगाकर मन की परतों को खोला, दूसरी ओर अपने आत्मा को व्यापक बनाते हुए सामाजिक मुद्दों से उसे जोड़ा। मानव जीवन के हर पक्ष को कलात्मक और संवेदनशील रूप से चित्रित करना शुरू से लेकर अभी तक कहानियों का कार्य रहा है, और हिंदी कहानी इस पक्ष में बहुत सफल भी रही है। मुझे लगता है कि आगे भी कहानियों के लेखन में आत्मपक्ष की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है। हिमकर जी आपने, श्वेता जी आपने, सुरकांत जी आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार,
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: हिंदी कहानी का आत्मपक्ष, अभी आप ये परिचर्चा सुन रही थी। प्रतिभागी थे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर हिरण्य हेमकर, फिल्म प्रोड्यूसर, लेखिका और सांस्कृतिक दूत डॉक्टर श्वेता सिंह उमा, वरिष्ठ लेखक और मीडिया कर्मी श्री सूर्यकांत शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे डॉक्टर आलोक रंजन पांडे। और श्रोताओं, अब सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में कुछ रोचक तथ्य। रेडियो, जो एक सदी से निरंतर संचार माध्यमों की रफ्तार में लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, विश्व की तमाम भाषाओं, बोलियों के कलाकारों को जितना रेडियो ने समृद्ध किया है, शायद ही किसी माध्यम ने किया है। दुनिया निरंतर बदल रही है, इसी तर्ज पर रेडियो भी नित नवीन नवाचारों को अपना रहा है, क्योंकि आज भी रेडियो ही एक ऐसा जन संचार माध्यम है जिसके जरिए असंख्य लोगों तक सूचना और ज्ञान का प्रसार किया जाता है, खासकर गांव, कस्बों और ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों तक जहां संचार का कोई माध्यम पहुंचना आसान नहीं है। इन जगहों पर आज भी रेडियो कम्युनिकेशन का प्रमुख माध्यम है। इस रूप में आकाशवाणी स्वतंत्र भारत की एक ऐसी धड़कन है जिसने देश के हर सुख दुख, हर करवट और हर कामयाबी को अपनी तरंगों में समेटा है। आज जब हम आकाशवाणी के 90 वर्षों के सुनहरे सफर को देखते हैं, तो यह इतिहास किसी सिनेमा की रील की तरह आंखों के सामने तैर जाता है। आइए आज हम रेडियो के उस जादुई सफर पर चलते हैं जिसने एक औपनिवेशिक शुरुआत से लेकर आधुनिक भारत का राष्ट्र प्रसारक बनने तक का गौरवशाली सफर तय किया है। श्रोताओं, भारत में रेडियो की गूंज यूं तो 1920 के दशक में शुरू हो गई थी, लेकिन देश का पहला संगठित और नियमित रेडियो स्टेशन मिला 23 जुलाई 1927 को। इसी ऐतिहासिक दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन बॉम्बे में किया गया था। इस पल की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका उद्घाटन खुद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। उद्घाटन के दिन मात्र 15 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित हुआ था जिसमें कुछ गीत और भाषण शामिल थे, लेकिन इसने देश में जनसंचार के एक नव युग की नींव रख दी थी। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में हम हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके कुछ हफ्तों बाद 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता में भी दूसरा रेडियो स्टेशन शुरू हुआ और धीरे धीरे रेडियो देश की सूचना और मनोरंजन का मुख्य जरिया बनने लगा। राजधानी दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो का जन्म 1936

आरंभ हुआ। सफर आगे बढ़ा जो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पल साबित हुआ। 1 जनवरी 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस दिल्ली केंद्र आधिकारिक रूप से ऑन एयर हुआ। शुरुआत में यह केंद्र दिल्ली के 18 अलीपुर रोड स्थित एक अस्थायी स्टूडियो में चलता था और इसका 20 किलोवाट का मीडियम वेव ट्रांसमीटर मॉल रोड पर स्थापित किया गया था। दिल्ली केंद्र के आने से कला, शिक्षा और संगीत को एक नई दिशा मिली। इसके ठीक कुछ महीने बाद 8 जून 1936 को एक बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। इस बदलाव के पीछे उस समय के कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग लियोनेल फिल्डन की बहुत बड़ी भूमिका थी। इस नई पहचान की घोषणा 7 जून 1936 को द इंडियन लिसनर के प्रथम पृष्ठ पर की गई थी और अगले दिन से रेडियो की यह नई आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। समय बदला और आया साल 1947, 14 और 15 अगस्त की उस ऐतिहासिक मध्य रात्रि का जब दुनिया सो रही थी, तब ऑल इंडिया रेडियो की तरंगों पर स्वतंत्र भारत का पहला स्वर गूंजा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कालजयी भाषण, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबोधन सीधे रेडियो पर प्रसारित किया गया, जिसे सुनकर करोड़ों भारतीयों की आंखों में खुशी के आंसू तैर गए थे। यही नहीं, 15 अगस्त की सुबह ठीक 5:30 बजे पूर्णम विश्वनाथ ने बाह्य प्रसारण यानी एक्सटर्नल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से पूर्वी एशिया तक भारत की आजादी की पहली आधिकारिक घोषणा पहुंचाई थी। विभाजन की भीषण त्रासदी के बीच जब देश अपने को खो रहा था, तब आकाशवाणी ही एकमात्र जरिया थी जिसमें बिछड़े हुए परिवारों को संदेश के माध्यम से जोड़ा और पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए रखा। इसी दौर की एक और भावुक और ऐतिहासिक घटना जुड़ी है महात्मा गांधी से। 12 नवंबर 1947 को बापू ने पहली और अंतिम बार ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में कदम रखा। उन्होंने नई दिल्ली के ब्रॉडकास्टिंग हाउस से देश को संबोधित किया। यह संदेश विशेष रूप से उन शरणार्थियों के लिए था जो विभाजन के बाद कुरुक्षेत्र के शिविर में विस्थापित होकर रह रहे थे। आगे चलकर आकाशवाणी ने उस स्टूडियो का नाम बदलकर बापू स्टूडियो रखा। बापू की इस ऐतिहासिक यात्रा और उसकी लोक सेवा की भावना को याद करते हुए हर वर्ष 12 नवंबर को पूरे देश में लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। आजादी के बाद आकाशवाणी ने देश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का बीड़ा उठाया। इसी कड़ी में 20 जुलाई 1952 को पहली बार राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को आम जनता तक पहुंचाना था। 90 मिनट के इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों शैलियों का अद्भुत संगम पेश किया जाता था। अक्टूबर 1952 में दिल्ली में नेशनल ऑर्केस्ट्रा की स्थापना हुई, जिसका नेतृत्व विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर ने किया और बाद में प्रख्यात कर्नाटक वायलिन वादक टीके जयराम अय्यर इसके दूसरे संचालक बने। सांस्कृतिक एकता को और मजबूत करने के लिए 25 जनवरी 1956 को तत्कालीन महानिदेशक और प्रसिद्ध साहित्यकार जेसी माथुर की कल्पना से सर्वभाषा कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं के कवि एक साथ जुटते हैं और उनकी रचनाओं का हिंदी अनुवाद भी प्रसारित किया जाता है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा भाषाई आयोजन है जो विविधता में एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसी वर्ष यानी 15 अगस्त 1956 को नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम की ऐतिहासिक शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत जुलाई 1956 में गिरीश चंद्र घोष द्वारा रचित बांग्ला नाटक प्रफुल्ला के प्रसारण से हुई थी। इसके माध्यम से रेडियो नाटक, ओपेरा और फीचर सीधे लोगों के दीवान खाने तक पहुंचने लगे। संकट और विकास का साथी, जयमाला और फार्म एंड होम यूनिट्स रेडियो सिर्फ शांति का ही नहीं बल्कि संकट का भी साथी रहा।
1962 में भारत चीन युद्ध के चुनौतीपूर्ण समय में सीमा पर शून्य से नीचे के तापमान में तैनात हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए आकाशवाणी ने जयमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। ये रेडियो जगत का एक ऐसा अनोखा प्रयोग था जहां पहली बार फिल्मी हस्तियों ने सीधे तौर पर कार्यक्रम का संचालन

0: किया। इसकी पहली प्रस्तोता महान अभिनेत्री नरगिस थी और बाद में लता मंगेशकर और मुकेश जैसे दिग्गजों ने सैनिकों की फरमाइश पर गाने बजाकर अपने संदेश साझा कर सरहद पर बैठे जवानों में जोश भर दिया। युद्ध के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी खाद्यान्न की कमी। साल 1965 में जब भारत में हरित क्रांति का आगाज हुआ तो आकाशवाणी ने ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने के लिए फार्म एंड होम यूनिट्स की स्थापना की। इन इकाइयों का काम किसानों की दैनिक जरूरतों के अनुसार विशेष कृषि कार्यक्रम तैयार करना था। उन्नत बीजों, आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक उपायों की जानकारी दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम सीधे किसानों तक पहुंचाई जाती थी। इसने देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में एक मूक लेकिन सबसे प्रभावी क्रांति की भूमिका निभाई। समय बदला, माध्यम बदले, पर साख आज भी वही है। श्रोताओं, 1927 की उस 15 मिनट की पहली ब्रॉडकास्टिंग से शुरू हुआ यह सफर आज डिजिटल पॉडकास्ट, एफएम चैनलों और मोबाइल ऐप्स तक पहुंच चुका है। इन 90 वर्षों के हम सफर ने साबित किया है कि तकनीक चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन जब भरोसे, संस्कृति और देश की प्रामाणिक आवाज की बात आएगी तो आकाशवाणी का कोई सानी नहीं है। इसी के साथ कीर्ति को दीजिए अनुमति। तो श्रोताओं, आप सुन रही थी आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में कुछ रोचक तथ्य। साहित्य की का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य की और अब समय हुआ है कार्यक्रम हमारे अतिथि का। हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर मुक्ति शर्मा, शिक्षाविद साहित्यकार की बातचीत काजल सूरी से। कार्यक्रम की प्रस्तुति काजल सूरी।

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी साहित्यकार, शिक्षाविद और कवित्री डॉक्टर मुक्ति शर्मा जी से। इनसे बातचीत कर रही हैं काजल सूरी। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर, कि जो मुसलसल गुजर रहा है, ये जब न गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये वक्त क्या है। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, ये जो वक्त है ये चलता ही रहता है, भागता ही रहता है और कई बार अपने कदमों के निशान छोड़ जाता है। लेकिन हमारे अतिथि प्रोग्राम में आज हमारे साथ वक्त एक बहुत खूबसूरत मेहमान को छोड़कर गया है और वो मेहमान है हमारे आज के जो अतिथि हैं वो हैं डॉक्टर मुक्ति शर्मा, जो जानी मानी साहित्यकार, शिक्षाविद और कवित्री हैं। डॉक्टर मुक्ति, आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी। तो मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि साहित्य की तरफ आपका जो सफ़र था वो कैसे शुरू हुआ?
1: साहित्य कहते हैं ना, जब इंसान कुछ लिखने का करने का मन होता है तो वो कुछ ना कुछ लिखता रहता है
0: जी।
1: तो वैसे तो विरासत में मिला ही नहीं साहित्य, ना कोई था लिखने वाला, पर ये शुरू से ये तमन्ना थी कि कुछ ऐसा करूं समाज में, आगे पीछे जो देखती थी।
0: तो आपका यही जो सफ़र था वो आसपास जो हमारे समाज में कहानियाँ बिखरी पड़ती हैं और जो हमारे समाज में चीज़ें हो रही थी उनको देख देख के आपको प्रेरणा मिली। जिस तरह से आपने कहा कि आपको जो लेखन है वो विरासत में नहीं मिला, बस ये जो कहानियाँ हमारे आसपास बिखरी हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास बिखरी हैं, वही हमें लिखने की प्रेरणा देती रही, वही आपको लिखने की प्रेरणा देती रही। तो जो आपने लिखा है, आपने जिस जिस विधा में लिखा है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप हमें बताएं।
1: मैं कहानियाँ लिखती हूँ, संस्मरण लिखती हूँ, रिपोर्टाज लिखती हूँ, उपन्यास लिखती हूँ। तो मेरा यहाँ तक सोचना है कि लेखक को अपनी लेखनी जो है, कलम जो है, एक क्षेत्र में चलानी चाहिए, लिखना चाहिए। कविताएं लिखती हूँ, है ना, कविताएं कहते हैं ना मन को छू के निकल जाती है ना। तो उपन्यास तो ऐसी चीज

0: है कि वो उसमें कितनी सारी घटनाएं होती हैं, कितने सारे लोग जुड़े होते हैं
1: जी।
0: तो एक जुड़ाव सा होता है
1: जी।
0: तो इसलिए उपन्यास लिखना अच्छा लगता है। तो लेखकों को चाहती हूँ कि और अच्छा लिखें, अच्छे उपन्यास लिखें, कहानियाँ लिखें
1: जी।
0: हाँ जी
1: जी। तो जिस तरह से आपने कहा कि आपने उपन्यास कई किताबों की रचना की है, तो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को संभालते हुए आपने सशक्त लेखन भी किया है, क्या कहेंगी कैसे आपने घर गृहस्थी को और लेखन की भी जो बैलेंस है उसको कैसे आपने बनाया?
0: कहते हैं ना लेखक के अंदर एक कीड़ा होता है लिखने का
1: जी।
0: तो वो बस फिर इंसान ये नहीं देखता कि घर गृहस्थी है तो फिर इंसान सोचता नहीं, जो दिमाग में आया बस उसे अपने कलम से लिख लो, तो वो चलता रहता है फिर साथ साथ। और लेखक के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं कहीं बैठी होती हूँ तब भी लिख रही होती हूँ, कुछ कर रही होती हूँ तब भी दिमाग चलता रहता, सोचती रहती हूँ, कई बार सो रही होती हूँ तो तब भी रहता है दिमाग में, बातें चलती रहती हैं कि लिखूँ, तो फिर एकदम से झटके से उठ जाती हूँ, सोचती नहीं अब ये लिख ही लेती हूँ, सुबह तक शायद भूल जाऊँ।
1: तो साहित्य की कौन सी विधा है जिसमें आप खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं और जो आपको बहुत अच्छी लगती है, कौन सी विधा में आपको सबसे अच्छा लगता है लिखना?
0: उपन्यास मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
1: नॉवल लिखना,
0: नॉवल लिखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता ही है मेरा नॉवल आया था एक श्रापित किन्नर, किन्नरों पे लिखा था, फिर उसके बाद मेरी किताब आई है प्रवासी कथा संसार एक दृष्टिकोण, तो वो मैंने जितने भी लेखक हैं बाहर के प्रवासी लेखक हैं उनकी कहानियों का समीक्षाएं की, ताकि जो हमारे शोधार्थी हैं उनके लिए एक प्रेरणा बन सके और उन्हें बना बनाया मिल सके।
1: अच्छा।
0: क्योंकि जब हम शोधार्थी थे तो हमने काफ़ी स्ट्रगल की, तो मैं नहीं चाहती कि आने वाली पीढ़ी स्ट्रगल करे, उनको कुछ ऐसा मिले कि जो एक नया हो, अनुभव हो अपनी तरफ से। तो बच्चे युवा पीढ़ी और अच्छा बड़ा अच्छा कर रहे हैं, पर मैंने वो किताब की समीक्षा इसीलिए की थी कि युवाओं के लिए शोधार्थियों के लिए आसान हो सके सामग्री।
1: तो क्या फीडबैक मिला कि जो स्कॉलर्स हैं जो शोधार्थी हैं उनको इससे मदद मिली, इसमें आपको क्या?
0: हाँ जी हाँ जी, मैंने तेजेंद्र शर्मा की कहानियाँ थी, ज़किया ज़ुबैदी की कहानी ली थी, रेखा राजवंशी जी की कहानी ली थी, तो काफ़ी सारे लेखक की कहानियाँ ली थी उसमें, तो शैलजा जी की कहानी ली थी। तो जब शोधार्थियों ने वो काम किया अपना प्रवासियों पे, तो आपको पता ही है बड़ा काम हो रहा है आजकल, तो उनको काफ़ी मदद मिली, बच्चे बड़ा बोलने बाद में उन्होंने बताया शोधार्थियों ने, मैम ये बड़ी अच्छी है आपने समीक्षा की, हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है अच्छी बात है,
1: तो फिर बहुत मदद मिली।
0: हाँ जी।
1: तो आपने जितनी कृतियाँ लिखी हैं आपकी, आप किसको मानती है दिस इज़ माई बेस्ट, ये मेरी सबसे श्रेष्ठ कृति है, क्या कहेंगे?
0: तो मुझे अपनी कहानियाँ जैसे मैंने लिखी थी बलि का बकरा, बड़ी अच्छी लगी, उसके बड़े अच्छे फीडबैक मिले। पूत कपूत कहानी थी, फिर तलब कहानी थी।
1: अच्छा, कहानियाँ आपको जो आपने लिखी हाँ, वो आपको बहुत अच्छी
0: हाँ जी हाँ जी, कहानियाँ तलब थी, उसके बड़े अच्छे फीडबैक मिले, बच्चों ने बड़ी पसंद की, शोधार्थियों ने, लोगों ने बड़ा उसे सराहाया, अच्छी थी, सब लोगों को
1: पसंद आई,
0: पसंद आई। तो फिर जब लेखक सुनता है लोगों से कि हाँ जी फीडबैक अच्छे मिल रहे हैं, तो फिर लेखक को भी लगता है कि नहीं शायद कुछ अच्छा लिखा हो। तो वो उपन्यास का भी बड़ा अच्छा रहा, श्रापित किन्नर का, उस पर भी 20-25 बच्चे MPhil PhD कर रहे हैं।
1: हाँ जी हाँ जी
0: हाँ जी हाँ जी,
1: कहाँ से कर रहे हैं?
0: हाँ, एक तो बाहर की ही लड़की थी चेन्नई की, उसने अभी लघु शोध किया है उस पर हुआ है, और काफी सारे बच्चों ने वो नावल जो है वो लिया है अपना।
1: तो जब आपने लिखना शुरू किया तो सबसे पहले आपकी रचना कौन सी रही?
0: मैं तो जब कॉलेज टाइम में थी तो मैं आर्टिकल वगैरह लिखती थी, तो नियर अबाउट मेरे 85 आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं अलग अलग पत्रिकाओं में, तो तभी से लिखने का शौक था आर्टिकल्स से। फिर मुझे लगा कि नहीं अब उपन्यास लिखना चाहिए, थोड़ी लंबी उड़ान भरे।
1: तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आज आप जिस मकाम पर हैं उसे पाने के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को संभालते हुए।
0: लोगों को लगता है ना लेखक है तो शायद बना बनाया मिल गया है आगे, वैसा कुछ भी नहीं होता। तो कहते हैं ना ये जब सीने में दर्द होता है तो तभी लिखा जाता है, तभी लेखनी चलती है। तो वो जो संघर्ष है उसका पीछे का, जैसे हमारा फैमिली बैकग्राउंड था, पापा आर्मी में थे, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी फैमिली के की, तो उसके बावजूद अपना लिखना, पढ़ाई, यहाँ इस मुकाम तक पहुँचना, फिर घर की परेशानी, आपको पता ही है एक औरत के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, घर भी संभालना, परिवार भी संभालना, आया गया भी लगा रहता है, तो सब चलता रहता है, तो लेखन भी अपनी जगह चलता है, तो जो संघर्ष है वो तो है ही है। तो इंसान तभी मुकाम पे पहुंच सकता है जब वो संघर्ष करेगा।
1: मुक्ति जी की कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, आपका क्या मानना है, आप क्या कहते हैं इस बारे में?
0: साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, ये हमारी बड़ी पुरानी बात है। तो जब साहित्य के माध्यम से ही एक ऐसा निखार आता है इंसान के जीवन में, साहित्य के माध्यम से

0: पता चलता है हमारी आने वाली पीढ़ी को कि पहले क्या हो चुका है, तो साहित्य से भी हमें सारी जानकारी मिलती है। जो आज इतना अच्छा लेखन लिखा हुआ है, तुलसीदास ने लिखा, प्रेमचंद लिख रहे हैं, कबीर दास ने लिखा है, वो साहित्य तो है, उन्हीं को पढ़ पढ़ के तो हम लोग आगे प्रेरणा ले रहे हैं और
1: सीख रहे हैं,
0: सीख रहे हैं
1: बिल्कुल, है ना। शब्दावली को, शब्दावली को,
0: भाषा क्या है ना,
1: बिल्कुल
0: ये सब चीजें सीख रहे हैं तो कर रहे हैं, तो वो बड़ा साहित्य का तो बड़ा बहुत बड़ा योगदान है लेखन में।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने जितना कुछ लिखा मुक्ति जी, सबसे ज्यादा मेहनत आपको किसमें लगा कि मैंने इसमें, इस किताब में या इस कविता को लिखने में, इस कहानी को लिखने में सबसे ज्यादा मेहनत मुझे लगी है, क्या कहेंगी आप?
0: मुझे तो लगता है उपन्यास लिखने में ही सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, नियर अबाउट उसमें 2 साल लग ही जाते हैं। इंसान कितना मर्जी छांट ले कर ले, अभी मेरा उपन्यास एक और आने वाला है, मीना की उड़ान, तो 2 साल से मैं उस पर काम कर रही हूँ, 2.5 साल होने लगे हैं, अभी भी जब फाइनल होने वाला है तो अभी भी मुझे लगता है कि नहीं कुछ कमियां हैं।
1: हाँ बिल्कुल। तो जब आप नॉवेल लिखती हैं, जब आप उपन्यास लिखती हैं, तो किरदार का चुनाव अपनी कल्पना के आधार पर करती हैं या रियलिटी के बेस पर करती हैं, किस आधार पर करती हैं?
0: नहीं, ये तो मैं रियलिटी के बेस पे ही करती हूँ, है ना। कई बार कोई हमसे पूछ भी ले कि हाँ मुक्ति जी आपने ये लिखा, इसमें लिखा है तो क्यों लिखा है, तो जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो पात्र जो है वो घटना सामने हुई होती है तो बंदा लिखता है
1: जी, समाज में जो घटित हुआ होता है वहीं से अपने किरदार लेते हैं,
0: वहीं से निकाल के तो बस फिर लिखते हैं,
1: कहानी का रूप या नॉवल का रूप,
0: नॉवल का रूप दे देते हैं।
1: एक और सवाल, जैसे आपने बात की श्रापित किन्नर के बारे में, जो आपका बहुत चर्चित नॉवल है आजकल, जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट्स शोध भी कर रहे हैं जैसे आपने बताया, तो स्त्री पुरुष और तीसरे जेंडर की समस्या को आप कैसे देखती हैं?
0: हस्बैंड वाइफ होते हैं ना घर पे, तो वो 2 बर्तन जहाँ होते हैं वो खनकते हैं, तो थर्ड जेंडर तो एकदम से अलग है ना समाज से। ये ऐसे लोग हैं जिनकी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं करता, इनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। फिर 2014 में हमारी सरकार ने सोचा कि इनके बारे में, 2009 में एक पास हुआ हाईकोर्ट की तरफ से कि नहीं इनको भी समान अधिकार मिलने चाहिए, तब जाके उन लोगों को लगा कि नहीं हमारी भी पूछ हो रही है। 14 में भी हुआ वो, इनको मान्यता मिली, और ये प्रोसेस 2009 से ही शुरू हो गया था। तो फिर क्या हुआ, जब हो गया ये सारा, तो उन लोगों को फिर उनमें एक ना ऊर्जा का संचार हुआ कि हम भी समाज का एक हिस्सा है।
1: तो सरकार ने इस तरफ कदम उठाया,
0: सरकार
1: रिकॉग्निशन मिल गई।
0: हाँ, तो अब जो है सरकार उनके लिए काफी काम कर रही है, और वो भी लोग सिर उठा के जी रहे हैं और अच्छे ओहदों पे हैं।
1: बिल्कुल।
0: कोई वकील है, कोई पुलिस में है, कोई जज है, तो मुझे ये है कि अगर इनको प्लेटफॉर्म मिला है तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल,
0: जैसे
1: बिल्कुल।
0: हम आम इंसान कर सकते हैं वैसे ये भी कर सकते हैं, तो हमें सबसे बड़ी बात है हमें इनको जेंडर क्यों समझना, इंसान समझो। ये तो बड़े कम लेखक हैं, आई थिंक 14-15 लेखक हैं जिनके उपन्यास आए हैं इस पे, थर्ड जेंडर पे लिखे हुए हैं, अदरवाइज तो पहले कोई थी ही नहीं पूछ। तो हालांकि आपको पता है ये कब से है, पुराने जमाने, रामायण काल से, महाभारत काल से, मुगलों के पीरियड से ये लोग चले आ रहे हैं।
1: रिकॉग्निशन अब दी है गवर्नमेंट की
0: तरफ से, अब गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए हैं इनको दे रहे हैं, फैसिलिटीज है सारी इनको मिल रही है, तो भी इनके अंदर भी एक हौसला पैदा हुआ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो अब तक के अपने लेखन में जो आपकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां आप जिसको मानती हैं, किसको मानती हैं आप?
0: कहानी, उपन्यास जितने भी हैं उन्हीं को ही।
1: जिस तरह से प्रोग्राम के शुरू में, कार्यक्रम के शुरू में आपने बात की थी वुमेन एम्पावरमेंट की, नारी की आज़ादी के बारे में, नारी स्वतंत्रता के बारे में, तो जब आप लिखती हैं नारी स्वतंत्रता के जो सवाल होते हैं उसको उठाते वक्त आपका फोकस क्या रहता है?
0: मेरा ये फोकस रहता है कि नारियों को समानता मिलनी चाहिए समाज में। देखो एक स्त्री जो है अपना सब कुछ दांव पे लगाती है, कितनी मेहनत करती है, चाहे वो ये घर हो चाहे वो बाहर हो, प्रत्येक क्षेत्र में वो आगे बढ़ती है, काम करती है। नो डाउट कि पुरुष किसी से कम नहीं है, तो मैं कहती हूँ एक कामयाब महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मेरे हस्बैंड मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, हाँ, तो तभी मैं इस मुकाम पे हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट के बगैर तो नहीं
0: हो सकता ना। इसीलिए तो जब हम स्त्रियों की आवाज को उठाएंगे, स्त्रियों की क्या समस्याएं हैं उनको जागृत करेंगे, तो तभी तो पता चलेगा। तो एक स्त्री होने के नाते तो इतना तो बनता ही
1: बनता
0: है कि हम स्त्री के लिए सोचें, करें
1: और लिखें। ताकि जन-जन तक आवाज पहुंचे,
0: जन-जन तक आवाज पहुंचे।
1: तो आप हिंदी के लिए ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे हिंदी ज्यादा से ज्यादा लोगों पे मिले? जिस तरह से आपने प्रवासी भारतीयों के लिए बात की कि आपकी किताबें बाहर भी, आपने किताब का नाम लिया था जो बाहर से छपती है, पत्रिका का नाम भी लिया था प्रोग्राम में, तो मैं चाहूंगी इसके बारे में आप प्रकाश डालें।
0: जैसे मैंने आपको बताया पुरवाई पत्रिका निकलती है,

0: लंदन से, मैं उसके संपादक मंडल में हूँ, कश्मीर का दायित्व है मुझ पर, तो हम लोग सेमिनार्स करवा सकते हैं, गोष्ठियाँ करवा सकते हैं, है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो कश्मीर जो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सिर्फ उर्दू और कश्मीरी ज़्यादा चलती है ना, हिंदी बिल्कुल बड़ी कम है। तो जब हम वहाँ पे गोष्ठियाँ करवाएंगे, सेमिनार्स करवाएंगे, तो लोगों को जब बताएंगे इसके बारे में,
1: भले ही ऑनलाइन हो,
0: हाँ ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, ताकि भाषा के विकास के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। तो डॉक्टर मुक्ति, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी।
1: तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर मुक्ति शर्मा जी, जानी मानी साहित्यकार, शिक्षाविद और कवित्री, जिनसे अभी हमने बात की। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे अतिथि। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ थी जानी मानी साहित्यकार, शिक्षाविद और कवित्री डॉक्टर मुक्ति शर्मा, भेंटकर्ता और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमें मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे कार्यक्रमों के जुड़ने के लिए हमारे कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आप हमें भेज सकते हैं समय समय पर मेल, और उसका मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। आप किसी भी कार्यक्रम के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं, जैसे कि हमारा मॉर्निंग गीतों भरी गुड मॉर्निंग का शो, या फिर 10:10 पर, या दोपहर को एक ही फिल्म से गीत, आदि कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें आप सीधे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं इसी ईमेल के ज़रिए। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। और अब समय हो गया है हमारे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप ये कार्यक्रम।

0: माता-पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी सही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहाँ पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है।
1: मिस्टर अय्यर, अ शाउट आउट टू द फैमिलीज एंड

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक आठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्ज़ियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्ज़ियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों TB एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस आपातकालीन चिकित्सा हिमोफीलिया प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा।

विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: franchise as they've already been eliminated from IPL 2026. In another clash of the day, Kolkata Knight Riders will face Delhi Capitals at Eden Gardens in Kolkata. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी बहनों का प्रिय कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी प्यारी प्यारी बहनों को मनीषा और
1: कमलेश का
0: राम राम।
1: और जब हमारी बहनें हमसे मिलती हैं और हम अपने बहनों से मिलती हैं और मौसम के बारे में भी हम चर्चा करते हैं, इसके साथ ही साथ हम बच्चों के बारे में भी चर्चा करते हैं, खेलों के बारे में भी, और जो आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी हम समय समय पर अपनी बहनों को जानकारी देते हैं। मनीषा
0: जी, बिल्कुल कमलेश, जैसा कि आपने कहा कि आज का दिन कैसे महत्वपूर्ण है, तो एक जो अवधारणा है हमारी वसुधैव कुटुंबकम की, यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार की संकल्पना है ना, और आज है हमारा राष्ट्रमंडल दिवस, जो कि यही साकार करता है। भारत में राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। ये दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे,
1: और 56 स्वतंत्र देशों के संगठन जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बीच में शांति, समानता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसको पहले मनीषा एम्पायर डे के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको राष्ट्रमंडल दिवस नाम दिया गया, तो हम तो आज इसको राष्ट्रमंडल दिवस के नाम से मना रहे हैं।
0: तो चलिए इस प्यारे से गीत के साथ इस दिवस की शुरुआत करते हैं।

0: ऊंच नीच का पापड़ा खेलेंगे हम दोनों हाथ मिलकर। और देखो ना,
1: बिल्कुल
0: जब हम छोटे छोटे बच्चे बन जाएं, क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपने अंदर एक छोटे बच्चे को हमेशा रखना चाहिए जो हमेशा प्रफुल्लित रहता है और तनाव से हमेशा दूर रहता है, उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान रहती है। ये मैंने इसलिए बोला कि जब मैं आ रही थी तो बच्चे ना शाम को खेल रहे थे, वो एक दो तीन बच्चे कह रहे थे टिप्पी टिप्पी टैप व्हाट कलर यू वॉन्ट, तो मैंने कहा ये तो अच्छा खेल बच्चों के लिए।
1: जी
0: फिर
1: हाँ
0: एक उन्होंने आइस और वाटर का गेम था, मैंने कहा ये कौन सा गेम होता है भाई, हमने तो कभी नहीं खेला। तो उन्होंने बताया कि एक बच्चा आइस बनता है, दूसरे बच्चे वाटर बनते हैं, अगर आइस वाला वाटर को छुएगा तो वो आइस बन जाएगा, वाटर वाला अगर आइस को छुएगा तो वो आइस बन जाएगा। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप ध्यान कैसे रखते हो? कहते वो हमें पता है क्योंकि हमने खेलते रहते हैं। तो मनीषा मैंने सोचा कि देखो खेलों से हमारे बच्चों का मानसिक विकास होता है
1: बिल्कुल
0: और वहीं से उनको शिक्षा भी मिल रही है, वहाँ से उनको साथ में रहने का भी ढंग आता है। और कई बार ये देखा है बच्चे लड़ाई झगड़ा करेंगे लेकिन जब खेलना होता है ना, पहले तो बच्चे मुंह फुला लेंगे मैं नहीं खेलता तेरे साथ, मैं भी नहीं खेलता तेरे साथ, और जब उनका मनपसंद गेम होता है तो वो फिर कहते हैं चलो क्या कुट्टी करनी है अब्बा ही कर लेते हैं, इसके साथ हम अपना खेल शुरू ही कर लेते
1: जी हाँ कमलेश,
0: हैं।
1: बहुत सारे खेल होते हैं जिनसे कहीं ना कहीं बच्चे का मानसिक विकास भी होता है, उनको बोलने की क्षमता भी विकसित होती है, और चाहे घर का आंगन हो या स्कूल का मैदान, जब बच्चे खेलते हैं तो उनका सर्वांगीण विकास होता ही होता है। और पढ़ाई पर ध्यान देने के साथ साथ आजकल खेलों पर भी बेहद ध्यान दिया जा रहा है। पहले कमलेश एक कहावत हुआ करती थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, और खेलोगे कूदोगे और तो बनोगे नवाब। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम बात करें ना, तो पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब तो बनोगे, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो लाजवाब बनोगे।
0: क्या बात है, और हम तो यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो लाजवाब बने, क्योंकि उनसे उनको देखो मन शरीर और आत्मा का जो पोषण है मेरे हिसाब से वो सब कुछ आपको खेलों से ही प्राप्त होता है। क्योंकि इंडोर गेम्स और आउटडोर हम
1: जी
0: हमेशा बोलते हैं बच्चा घर के अंदर ही अंदर रहेगा वो एक अलग है, लेकिन अगर बच्चा बाहर जाकर खेलता है तो शारीरिक जो गतिविधियां हैं जैसे खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, और जब बच्चे उनमें भाग लेते हैं तो पूरी टीम के साथ उनको खेलना होता है। और कई बार क्या होता है कि बच्चा अब मान लो आगे जाता है या कुछ गलत करता है, उसका कोच बोलता है नहीं ये ऐसे करना है, और दूसरा बड़ा बच्चा उसको डांटता है तो वहाँ भी बच्चा बोलेगा नहीं। तो बच्चे को ये है कि अगर आपकी गलती है तो उस गलती को मान लेने में भलाई है, क्योंकि जब मैं इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ूंगा तो मेरी जो टीम है वो जीतेगी जरूर।
1: बिल्कुल, यानी कि आसपास के वातावरण को खेलों से बच्चे समझते भी हैं, सीखते भी हैं, और मौज मस्ती के साथ साथ उनका विकास भी होता है।
0: बिल्कुल, और देखो जब हम छोटे थे तो लंगड़ी टांग भी खेलते थे, स्टापू
1: जी
0: भी खेलते थे, रस्सा कूद भी खेलते थे,
1: जी
0: तो उससे अपनी शारीरिक गतिविधि भी हुई और सबके साथ पता भी चल गया, अड़ोस पड़ोस अब भी कहीं मिले तो कहते अरे हम वो वाले गेम खेलते थे ना साथ साथ में, अरे देखो ना उस गेम में उससे उसकी लड़ाई हो गई थी तो कैसे हुआ था, अरे 2 दिन तो उसने ऐसे किया था लेकिन उसके बाद तो हम सब जैसे पहले थे वैसे ही अब हो गए।
1: क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: और जब हम खेलते हैं तो भी बात तो फिर अलग ही हो जाती है मनीषा,
1: जी
0: तो हम भी बच्चा बन

0: और मनीषा, हम जब आते हैं अपनी बहनों के लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं, और जब
1: जी
0: हम बात करते हैं खास की, तो हमारी बहनें भी कहती है बार बार खास तो कह रही हैं लेकिन क्या खास है वो खुलासा नहीं कर रही हैं, वो अपने पिटारे में से निकाल कर बता ही नहीं रही हैं। अब जब हम बहनें पढ़ लिख जाती हैं और अपने पैरों पर भी खड़ी हो जाती हैं, अपने परिवार भी हमारे बस जाते हैं, तो कई बार कुछ ऐसी हमारे सामने समस्याएं आ जाती हैं, या कई बार हमें लगता है कि हमारे हमारे लिए भी कुछ है या नहीं, यानी कुछ कानून हम लोगों के लिए है कि नहीं। तो सब कहते हैं हाँ भाई, सारे कानून आपके लिए तो हैं,
1: जी
0: क्योंकि अब तो सब एक समान है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। लेकिन जब धरातल पर चलकर हम देखते हैं, तो लगता है कि शायद हम अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ तक हमारी बहनों को पहुँचना चाहिए था। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हमने अपने स्टूडियो में महिलाओं के कानून, अधिकार, शिक्षा और संपत्ति, इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए अपने विशेषज्ञ को बुलाया है।
1: जी हाँ, हमारे साथ हमारी विशेषज्ञ हैं सावित्री पांडे, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। सावित्री जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: आज हम जैसा कि बात कर रहे हैं सावित्री जी, महिला शिक्षा की, तो महिला शिक्षा संबंधी कानूनी अधिकार की, तो ऐसे में हमें ये बताइए कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का शिक्षित होना क्यों आवश्यक है?
2: जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी होगी।
1: जी
2: कहते हैं कि एक पुरुष जब शिक्षित होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है
1: जी
2: तो वो पूरे परिवार और पूरे समाज को शिक्षित करती है, क्योंकि बच्चा तो माँ से ही सीख करके आगे बढ़ता है।
1: जी
2: तो महिलाओं का की शिक्षा से सशक्तिकरण देश का भी होता है, समाज का भी होता है। इसलिए महिलाओं की शिक्षा अति आवश्यक है,
0: जी
2: पुरुषों से भी अधिक।
0: कहते हैं ना कि जब एक स्त्री शिक्षा प्राप्त करती है तो दो परिवारों को वो अच्छी तरीके से चलाती है, उसको सोचने समझने की जो उसकी शक्ति
2: दो
0: है।
2: ही

0: परिवारों की नहीं, बच्चे की परवरिश करती है, वो विजन आता है, बच्चा ही आगे समाज का निर्माण करता है। तो जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो देश को, समाज को सशक्तिकरण प्रदान करती, सशक्त करती है अपने बच्चे के माध्यम से, अपनी जागरूकता के माध्यम से। तो महिला के एक महिला के शिक्षित होने से एटलीस्ट उस जिस एरिया में वो रह रही होती उतना वहाँ तो सशक्तिकरण आ ही जाता है, विकास का दरवाज़ा खुल जाता है।
1: जी, कहते हैं ना कि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे का भाग्य निर्माण कर पाती है।
0: पहला शिक्षा, पहला स्कूल जो होता है, गुरु, पहली गुरु जो होती है वो माता होती है।
1: जी बिल्कुल जी। और जब हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करते हैं या महिला आरक्षण विधेयक 2010 इसकी भी बात करते हैं और भी कानून बनाए गए हैं जो महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाते हैं, इसके बारे में भी मैं आपसे विस्तार में जानना चाहूँगी।
0: देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी महिलाओं को बहुत अधिकार दिए गए हैं। हमारा अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है सभी को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो।
1: जी,
0: 15 ए हमारे यहाँ अनुच्छेद जो है संविधान में, जो संविधान सभी के लिए है, जब से हम स्वतंत्र हुए हैं तब से बना हुआ है, सबके समान अधिकारों की बात करता है, हमारे कर्तव्यों की बात करता है। वहाँ 14 में जहाँ सबको समानता का अधिकार दिया गया है, महिला हो या पुरुष हो, उसी तरह से अनुच्छेद 15 में हमें ये दिया गया है कि महिलाओं के साथ लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, जिससे उन्हें समान शिक्षा और समान रूप से आगे बढ़ने का अधिकार मिल सके।
2: जी।
0: इसी तरह से अनुच्छेद 21 में हमें समान रूप से जीने का अधिकार मिलता है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, उन्हें आगे का बढ़ने का अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 39 में कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे प्रोविजन है हमें, जहाँ ये बताया गया है कि पहले होता था कि महिलाएं और पुरुष के एक ही समान वेतन का अधिकार नहीं था, एक ही काम के लिए महिलाओं को कुछ और वेतन मिलता था, पुरुषों को उनसे कई गुना वेतन मिलता था ज़्यादा। संविधान में ये प्रावधान बनाए गए कि सभी को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, तो महिलाओं को उस तरह से वहाँ सशक्तिकरण किया गया। इसी तरह महिलाओं को होता था कि समाज में मोस्टली जब बच्चियां पैदा होती हैं तो बहुत खुशी का माहौल नहीं होता, लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम उठाया, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। इसके अलावा यही इतना नहीं किया गया, मान लिया कि उनकी शादी हो जाती है, 18 वर्ष से पहले उनकी शादी के प्रावधान को रोका गया कि उनकी शादी नहीं की जा सकती। जिन बहनों की शादी हो गई है उसके बाद वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो पहले जो उनको मैटरनिटी लीव 6 हफ्ते की मिला करती थी
1: जी,
0: वो अब 28 हफ्ते की कर दी गई, जिससे वो अपने बच्चे का भी संरक्षण कर सकती हैं और वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती हैं। बच्चे के रहते हुए आपको उनको फीडिंग वीडिंग करवानी है तो उसके लिए भी उतनी, 6 महीने के बाद आप जा रही हैं तो भी आपका बच्चा छोटा है, उसकी देखभाल करनी है, तो आपके कार्यस्थल पर आपको एक सुरक्षित कमरा देने का प्रावधान दिया गया है कि जिससे आपके अपने बच्चे का भी पोषण कर सकें और अपने कार्य के साथ भी न्याय कर सकें। सभी संस्थानों में क्रेच का प्रावधान किया गया है, इसके लिए सरकारी सुविधाएं दी गई हैं। ये है, और 6 से 14 साल की शिक्षा पूर्णतः मुफ्त कर दी गई है। जब 2009 की बात करती हैं, 6 साल से 14 साल तक के सभी बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर दी गई। आगे 2010 में संशोधन किया गया
1: जी।
0: संशोधन के साथ ये किया गया कि बच्चियों के लिए किसी भी हाल में उनको मुफ्त किताब कॉपी दी जाएगी, उनको ड्रेसेस प्रोवाइड किए जाएंगे
1: जी।
0: उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिस पे निर्बाध तरीके से वो आगे शिक्षा ग्रहण कर सकें और आगे बढ़ सके
1: जी। और कुछ स्कूलों में तो सावित्री जी, मैंने ऐसा भी देखा कि जो दोपहर में थोड़ा सा जो भोजन है, अल्प भोजन जिसको मैं कह सकती हूँ, वो भी देने का प्रावधान मैंने अपने मतलब आंखों से देखा है कि बच्चियाँ जो है खाना भी वहीं पर खाती है।
0: कुछ बच्चे देखिए ऐसा है, सिर्फ ये आप बच्चियों के लिए ही नहीं है, भोजन का प्रावधान सभी बच्चों के लिए किया गया है। 6 से 14 साल के जो बच्चे जाते हैं उनको शिक्षा के साथ साथ पौष्टिक भोजन भी मिल सके। गरीबी की वजह से या किसी पिछड़ेपन की वजह से उनको किताबों की अव्यवस्था ना हो, तो मुफ्त किताबें, मुफ्त ड्रेस, मुफ्त खाना, ये सब सरकारी स्कूलों में प्रावधान किया गया है। बाकी जो प्राइवेट

0: प्राइवेट संस्थान है वहाँ भी इनकी व्यवस्था 25% की गई है कि 25% का आरक्षण प्राइवेट स्कूल्स में भी सभी सभी को दिया जाएगा, जिससे जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं वो पढ़ के आगे बढ़ सकें और अपने भविष्य का निर्माण कर सकें।
1: यानी कि देखो मनीषा, जब इतने सारे हमें सुविधाएं मिल जाती हैं तब तो हर माँ बाप यही चाहेगा कि उनकी बच्चियां जो हैं वो स्कूलों में जाएं और वहां पर जाकर शिक्षा प्राप्त करें।
2: बिल्कुल
1: सावित्री जी, अब आपका तो काम है कानून की बातें करना, कानून के विषय में बताना, जो केस आते हैं उनके बारे में करना, लेकिन कभी पीछे में ऐसा समय भी होता होगा जब आपको लगता हो कि भाई अब मैं परेशान हो गई हूँ या अब मुझे ये लगता है कि कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए, कुछ गीत भी होना चाहिए,
2: तो आपकी पसंद का कोई ऐसा गीत जो आपको याद आ रहा हो और आपको बेहद पसंद हो?
0: चलिए सुना दीजिए, ना मुंह छुपा के जियो ना सर झुका के जियो।
1: क्या बात,
2: क्या बात है, चलिए
0: हमारी बहनों को अपना सर ऊंचा करके सम्मान पूर्वक जीने का हक है और उन्हें सम्मान पूर्वक ही जीना चाहिए सर ऊंचा करके, मेरा ये मानना है। हमारी बहनों के लिए ये सुना दीजिए
2: जी। बहुत खूब।

0: सावित्री जी, एक महिला जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए परिवार के दायरे से बाहर निकलती है तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कई बार उसके साथ लिंग भेदभाव होता है, यौन उत्पीड़न होता है और सामाजिक दबाव भी कहीं ना कहीं सहना पड़ता है उसे। तो ऐसी स्थिति में हमारा कानून उनकी कैसे रक्षा करता है?
1: संविधान में ही इस बात का प्रावधान किया गया है
0: जी।
1: हमारे यहाँ अनुच्छेद 15 बताता है कि किसी भी तरह का लिंग भेदभाव या इस तरह की असमानता ना की जाए। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है कि जिससे उनके साथ किसी तरह का लिंग भेदभाव ना हो
2: जी।
1: खाली लिंग भेदभाव नहीं, जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी के भी नाम पे उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए
0: जी।
1: हमारा अनुच्छेद 21 भी समानता से जीने का अधिकार देता है। ज़रूरत है तो हमारी बहनों को अपने अधिकारों को जानने की, समझने की, कानून की कमी नहीं है, बहुत है हमारे संविधान में और उसके इतर भी जा करके कई कानून महिलाओं को सशक्त करने के लिए बनाए गए हैं। 2009 का संशोधन आया था, उस अधिनियम आया था, उसके बाद 2010 का संशोधन भी आया
0: जी,
1: जिसमें महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में, और अब आगे बढ़ करके सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेप लिया है कि हर जगह महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, पहले तो ये खाली किया गया था प्रावधान कि इनको संसद में या पंचायत राज में उनको 1/3 स्टेटस दिया जाएगा, कि यदि 3 लोग हैं तो उसमें से एक महिला का होना आवश्यक था
0: जी।
1: लेकिन अब इसे आगे बढ़ करके सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फर्दर स्टेप लिया है, पार्लियामेंट से भी लिया गया, सरकार ने भी स्टेप लिया है कि अब चाहे वो संसद हो, चाहे आपका कोई शिक्षा संस्थान हो, आपका जुडिशियरी हो, कहीं भी, वहाँ ये प्रयास किए जा रहे हैं कि 1/3 का आरक्षण दिया जा रहा है जिससे उनकी लीडरशिप और उनका नेतृत्व बढ़े महिलाओं का। आवश्यकता है तो बहनों के आगे बढ़ करके
0: जी।
1: उस प्रावधान का जो भी किए गए हैं उसका लाभ उठाने का है, उसके लिए इन्हें अपनी बेड़ियां खुद तोड़नी होंगी, कानून की कमी नहीं है। और इनके लिए जगह जगह कानूनी सहायता और सहायता के लिए भी बूथ बनाए गए हैं, चाहे वो किसी कोर्ट में जाएंगे, पंचायत राज में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वहाँ जा करके ये सहायता मांग सकती हैं। लेकिन जब ये अपने अधिकारों के बारे में जानेंगी ही नहीं तो उसका उपयोग कैसे करेंगी? लिंग भेदभाव के लिए आप अनुच्छेद में, आपको संवैधानिक अनुच्छेद में आपको वो दे दिया गया 15(1) में किया गया कि आपके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आपको जानने की भी तो आवश्यकता है। आप जानिए कि आपको अधिकार दिए गए हैं, आपको सशक्त करने के लिए दिए गए हैं, तो आप अपने अधिकारों को जानिए। अधिक आप ज्ञान ही जो होता है सशक्तिकरण का पहला स्टेप होता है। आप जानिए कि आपको सरकारी कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, आपको कहाँ कहाँ आरक्षण दिए गए हैं, आपके क्या क्या अधिकार हैं। कानून बहुत बनाए गए हैं, समानता का अधिकार है आपको, समान वेतन का अधिकार है आपको, मुक्त शिक्षा का अधिकार है। यदि बच्चियाँ 10th में 12th में अच्छे मार्क्स ले आती हैं तो उनके प्रोत्साहन के लिए भी सरकार उनको वजीफे दे रही है कि जिससे आगे की उनकी शिक्षा पूरी हो सके, वो आगे बढ़ सकें। यदि वो मेरिट्स में आती हैं तो सरकार उनको आगे बढ़ाने के लिए भी अपने खर्चे पे भेज रही है, इसके लिए भी प्रावधान बनाए गए हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हमारी बहनें भी प्रतिबद्ध होकर के समाज की बेड़ियों को तोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, जाने,
3: क्योंकि कई बार ये होता है कोई सामाजिक हमारी परंपराएं होती हैं, कुछ अपने ऐसे विचार होते हैं कि हम चीज़ों को जानते हुए भी सावित्री जी हम चुप रह जाते हैं, और जब बात चलती है संपत्ति की वहाँ पर महिलाओं को मालूम होता है कि हमारे क्या अधिकार हैं। लेकिन कहते हैं ना कि संपत्ति एक ऐसी चीज़ है जो कि रिश्तों में खटास पैदा कर देती है, लेकिन अगर आपको वो अधिकार भी मिला हुआ है और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि भाई मुझे इस समय संपत्ति की ज़रूरत है या भाई मैं ऐसी प्रॉब्लम में आ गई हूँ कि मुझे

0: उस परिवार का जो एक संपत्ति का वो बना उसमें थोड़ा मेरे को साझेदारी चाहिए, तो वो भी कहने के लिए बहनों को बड़ा टाइम लगता है, ये भी हम लोगों ने देखा है। तो आप जब हम संपत्ति की बात करते हैं तो महिलाओं के जो संपत्ति अधिकारों को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो साधारण भाषा में महिलाओं के संपत्ति अधिकार क्या हैं और उनसे उनका जो जीवन है वो कैसे प्रभावित होता है?
1: ये सबसे पहली तो बेड़ी तोड़नी होगी कि जो सोशल और इमोशनल प्रेशर होता है,
2: जी।
1: लोग कहेंगे कि अरे अपने भाई से ही हिस्सा मांग रहे हैं, अपनी ससुराल में ही हिस्सा मांग रहे हैं,
2: जी हाँ।
1: उससे उन भावनात्मक चीजों से हमारी बहनों को ऊपर उठना पड़ेगा। सरकार ने नियम बनाए, कानून बहुत सशक्त है आपके लिए, मिताक्षरा में भी आपको हक दिया गया था, लेकिन उससे आगे बढ़ करके आपको 2005 में भी अधिकार दिया गया, आपको फंडामेंटल राइट्स में भी दिए गए हैं कि हाँ आपके अपने कानूनी अधिकार हैं। यदि पिता की कोई लड़की अविवाहित है तो उसको अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी पूरा का पूरा राइट है, जैसा कि उसके भाइयों को है। किसी को भी जो मतलब परिवार के लड़के को जितना अधिकार है उतना ही लड़की को भी अधिकार है
2: जी।
1: कि वो अपने पैतृक संपत्ति में से वो हक ले सकती है। यूपी में लेकर के थोड़ा सा नियम अलग है, जहां कृषि योग्य भूमि के लिए शादीशुदा लड़कियां ये नहीं कह सकती हैं कि उनको वो अधिकार मिलेगा, बाकी सारी संपत्ति पे उनका अधिकार है, वहां रहेंगी रह सकती हैं, उनका भरण पोषण भी हो सकता है।
2: जी।
1: लेकिन सिर्फ यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां कृषि योग्य भूमि के लिए किसी शादीशुदा लड़की को अधिकार नहीं दिए जाते हैं, बाकी सारे संपत्ति का अधिकार बराबर मिले हुए हैं और सभी जगह मिले हुए हैं। इसके अलावा यदि आपके पिता ने आपको पिता से कोई संपत्ति मिली हुई है, तो लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि यदि लड़की को कहीं किसी भी तरह उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, कुछ होता है, तो वो संपत्ति उसके पति को चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बहनों को ये जानना जरूरी है अपने अधिकार के लिए कि यदि ऐसा कुछ होता है तो बहन को उसके पिता की तरफ से जो संपत्ति मिली हुई है उस संपत्ति का अधिकार उनके बाद उनके पिता को ही है, उनके पति को अधिकार नहीं जाता है। इसी तरह इससे स्टेप एक आगे बढ़ते हैं, यदि उनको ससुराल पक्ष से कोई संपत्ति मिली हुई है, ससुराल पक्ष से कोई भी संपत्ति मिली हुई है, चाहे उनके पति ने ही उनके नाम पे खरीदा है,
0: जी।
1: तो यदि महिला को कहीं कुछ हो जाता है तो उस पे उसके पति का अधिकार नहीं होगा, पहला अधिकार उनके बच्चों का होगा
0: जी।
1: ये अधिकार बच्चों का है, बेटा है बेटी है, उस संपत्ति पे अधिकार बच्चों का होता है, ना कि पति का। बच्चे उनके बच्चे नहीं होंगे तब पति का अधिकार आता है, उससे पहले पति का अधिकार नहीं आता है
2: जी।
0: आज हमने कितनी अच्छी
2: अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें
0: सीखी। कई बार ये होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब हमारे एक्सपर्ट आकर हमें बताते हैं तब हमें अच्छी तरह से चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। और जब आप संपत्ति की बात करते हैं और आप इतने सारे केस भी देखती होंगी, तो उनके बीच में उन केसों के बीच में कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि भाई सही फैसला हो गया या नहीं हुआ, ऐसा भी कभी कभी आपको लगता होगा?
1: कभी कभी होता है कि फैसले की वहाँ तो न्याय संगत जो न्याय किया जाता है वो प्रमाणों के आधार पे किया जाता है, जो साक्ष्य होता है साक्ष्य के आधार पे किया जा रहा है। अब वहाँ यदि हमारी बहनें आगे ही आएंगी नहीं, इमोशंस में बढ़ करके लोगों के इमोशनल प्रेशर में आकर के कहीं लिख करके ये दे देती हैं, वो उनको वो ज़रूरतमंद हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनसे प्रेशर में कैसे भी उनसे दस्तखत करवा लिया गया कि अपना हक आपने छोड़ दिया, तो उस स्थिति में कानून के भी हाथ बंधे हुए होते हैं। कानून होते हुए भी जब आप अपना ही अधिकार छोड़ रही हों और वो भी लिखित में दे दें, तो उसमें कौन आपकी हेल्प कर सकता है? कैसे? कोई नहीं हेल्प कर सकता। आपके कानूनी अधिकार होते हुए भी चूंकि आपने उसे खुद छोड़ दिया है, तो हम देखते हैं कि अन्याय हो रहा है आपके साथ, कई बार ऐसा होता है, लेकिन कानून तो साक्ष्यों के आधार पर चलता है। आपने अपने अधिकार खुद ही छोड़ दिए हों तो उसमें कानून क्या करेगा आपके लिए?
0: बिल्कुल।
1: तो जरूरत है कि आप खुद अपने अधिकारों

0: के प्रति जागरूक हों, उन्हें जानें और उनका संरक्षण करें।
1: तो मैम अगला गीत आप कौन सा सुनना चाहेंगी?
0: देखो देखो जी, लता जी का।
1: जी चलिए लता जी का ये प्यारा सा गीत सुनते हैं सावित्री पांडे जी की फरमाइश पे।

0: सावित्री जी, आपने बहुत सी अच्छी अच्छी हमें बातें बताई, जानकारी हमारी बहुत बड़ी और हमारी बहनों की भी। एक प्रश्न मेरे मन में और आ रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं और संपत्ति के अधिकार को कहाँ तक प्रभावित करता है, और क्या महिला संपत्ति अधिकार कानून के तहत बेटी समान संपत्ति अधिकारों का दावा कर सकती है?
1: बिल्कुल कर सकती है, बेटी समान संपत्ति का दावा कर सकती है। उसमें जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वहाँ भी जैसा कि मैंने बताया, यूपी में एक नियम यह है कि वहाँ खेती योग्य जमीन के लिए लड़की नहीं दावा कर सकती है, शादीशुदा। अविवाहित बेटी की बात नहीं की जा रहा है, अविवाहित बेटियों का तो सारे जगह सबको समान अधिकार है, बाकी सब में मिताक्षर के हिसाब से भी लड़कियों को, जब संशोधन 2005 में किया गया, उसके बाद लड़कियों को वो सारे अधिकार दिए गए संपत्ति जो किसी भी बेटे को अधिकार होते हैं। पहले ऐसा था कि उनको रहने का अधिकार था, बेच नहीं सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी, अपना हिस्सा अलग से नहीं मांग सकती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज लड़कियां अपना पूरा हिस्सा अपने भाई के बराबर ही ले सकती हैं, उनके वो पूरे अधिकार होते हैं। मिताक्षरा में भी जो किया गया, मिताक्षरा यानी जो आप भारतीय कानून की बात कर रही हैं कि उसके हिसाब से होता है, वहाँ भी वो अपने ससुराल में भी अपने अधिकार ले सकती हैं, यदि बाई दबे किसी समय उनके पति की मृत्यु हो जाती है
0: जी,
1: तो उनको उनका भरण पोषण उनके ससुर की संपत्ति से किया जाएगा। उनके ससुर की भी किसी वजह से पहले या मृत्यु हो गई है या हो जाती है, तो उनके बच्चों के पूरे अधिकार बने रहते हैं, वो अपने ससुर की संपत्ति में वही पूरा हक ले

सकते हैं जो उनके देवर, जेठ, जेठानी और बाकी लोगों का होता है। यह उस स्थिति की बात की जा रही है यदि बिना किसी तरह की वसीयत किए हुए भी उनके पति या उनके ससुर की डेथ हो जाती है, तो उस घर में उनको पूरा अधिकार होता है रहने का, बच्चों के भरण पोषण का, और अपने पति की के हक के हिसाब से ही उस संपत्ति में बंटवारा करवाने का भी

0: का पूरा हक होता है, जिससे पूरे सम्मान पूर्वक वो अपना आगे का जीवन बिता सके।
1: आज हमने सावित्री जी से इतनी अच्छी बातें सीखी कि जो हम बहनों के अधिकार हैं शिक्षा और संपत्ति को लेकर, उनके बारे में विस्तृत हमने जानकारी ली कि महिलाओं के कानून अधिकार संपत्ति और शिक्षा को लेकर क्या क्या है, और हमने विस्तार से सब चीज़ें जान ली हैं। तो सावित्री जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका हार्दिक आभार है। और चलते चलते मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपका एक और मनपसंद गीत
0: आशाएं।
2: चलिए, आशाओं के साथ हम भी उड़ते हैं।
0: हाँ, और बहनों से भी गुजारिश है कि आशा ना छोड़ें।
2: बिल्कुल।

0: कमलेश, सड़कें होती हैं ना, और रास्ता होता है वो कहीं ना कहीं किसी मंजिल तक हमें ज़रूर ले जाता है। और ऐसी ही 2017 में घोषित भारत सरकार की भारत माला परियोजना भी है, जो वित्त पोषित बृहद और महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास का कार्यक्रम है। इसके मुख्य लक्ष्य जो हैं वो आर्थिक गलियारों, तटीय सड़कों, सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ना, यातायात को सुगम बनाना और जो माल ढुलाई लागत है यानी लॉजिस्टिक लागत को कम करना। पहले चरण में 26,425 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का इसमें निर्माण भी हो चुका है और हाई स्पीड ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है।
1: तो और एक जानकारी मैं भी अपनी बहनों के साथ साझा करना चाहूँगी, वो है प्रीति लता वादेदार के बारे में। और ये जो थी, ये प्रथम महिला क्रांतिकारी थी और इनका जन्म जो है 1911 में हुआ था और स्नातक की उपाधि के बाद वे चटगांव के एक बालिका विद्यालय में पढ़ाने लगी थी। और इन्होंने जो है अंग्रेज सेना से जो है मुकाबला उनके साथ में किया था और यूरोपियन क्लब पर उन्होंने हमला किया था, उसका नेतृत्व किया था। देखो कितने साल पहले, तो हमारी बहनें किसी से कम नहीं, लेकिन वो कई बार डर जाती हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि डरना तो उनको चाहिए नहीं, क्योंकि ये सब जो चीज़ें ये हम बातें बताते हैं, इतिहास हम उनको समय समय पर बताते रहते हैं, तो उस इतिहास से उनको सीखना भी चाहिए। और जब प्रीतिलता और उसके साथियों ने बम फोड़ने शुरू कर दिए थे तो एक पूरे मतलब क्लब में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। अगर वो चाहती तो बाहर निकल सकती थी, लेकिन वो बड़ी ही उससे खड़ी रहीं। और उन्होंने क्या डिसाइड कर आखिर में कि पोटाशियम साइनाइड को खाकर उन्होंने आत्मघात कर लिया।
0: जी हाँ, तो, यानी कि कमलेश, उनका जीवन बताता था कि साहस और देश प्रेम की कोई उम्र या लिंग नहीं होता।
1: बिल्कुल, तो इनको हम नमन करते हैं
0: जी।

0: देखिए गर्मियाँ इतनी बढ़ रही हैं, लू भी चल रही है, और ऐसे में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना कमलेश, वो ज़िद कर रहे हैं बाहर घूमने जाने की, और रोते हैं, मम्मा हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, हमें नानी हाउस जाना है ना,
1: अच्छा,
0: तो
1: आजकल
0: बहुत
1: तो
0: सारी
1: नानी हाउस
0: फरमाइशें हैं।
1: और हमारी बहनें कई बार ये कहती, अरे स्कूल, तुम तो स्कूल ही चले जाते तो बढ़िया था, क्योंकि सुबह अपना टाइम से तैयार करो, टाइम से चले जाओ। अब ये कि कोई बच्चा 10 बजे जग रहा है, कोई जो है 11 बजे, और उस पर भी मम्मी उठाती रहती, तब जगते, अरे मम्मी छुट्टी है, कुछ तो सोने दो, अभी स्कूल जाएंगे तो अब जल्दी जगा ही दोगी ना हमें। तो
0: जी
1: हम तो
0: हाँ,
1: यही कहेंगे कि भाई गर्मी के मौसम में जो जो आपको अपने बच्चों को गर्मी के हिसाब से खाना देना है, उनको जो शरबत देने हैं उनको पिलाइए, उनको बताइए कि इस शरबत से आपको क्या लाभ मिलेगा, ताकि बच्चों को उसका टेस्ट भी आए और उसका जो गुण है उसके बारे में भी पता चले।
0: जी हाँ, और छुट्टियों का महत्व भी पता चले, क्योंकि बच्चों को तो रहता है कि चाहे धूप हो छांव हो, उनको बस बाहर लेकर के जाना है, पर उन्हें हमें बताना है कि ये इतनी गर्मी है, लोग परेशान हैं, तो ठंडे पेय पदार्थ दें बच्चों को और बच्चों का बेहद ख्याल रखें।
1: और अगर जब घर से बाहर भी जाएं तो शाम के समय निकलें,
0: जी
1: या जब तेज धूप हो उससे पहले पहले बच्चों को लेकर जाएं, और सिर के ऊपर उनके आजकल तो इतनी प्यारी प्यारी टोपी आ गई हैं, वो लेकर जाएं तो और भी बढ़िया रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और हमारे कार्यक्रम का जो पता है वो भी बता दो मनीषा।
0: जी हाँ, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, नई दिल्ली 110001।
1: और जो हमारा मेल आईडी है वो है feedback@gmail.com।
0: और हमें रहेगा बहनों के ईमेल का और खत का इंतज़ार, क्योंकि बहुत से सुझाव, बहुत सी अगर कोई शिकायतें भी हैं तो प्लीज़ हमें आप ज़रूर लिखिए, हमें बताइए कि कार्यक्रम कैसा लगा, और कोई गीत हो तो वो भी हमें बताइए।
1: और प्रस्तुतकर्ता इस कार्यक्रम के हैं तुषार पाराशर,
0: और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।
1: और इसी के साथ हम बहनों को कहें, बहनों राम
0: राम राम।
1: राम।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.

दोस्तों, इस गाने को सुनकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज की फिल्म कौन सी है। जी हां, आज की फिल्म है अनुरोध, और इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं, आपका रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

अनुरोध, ये 1977 में बनी एक हिंदी भाषा की संगीतमय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन किया था जाने माने फिल्म डायरेक्टर शक्ति सामंता ने। और इस फिल्म के अगर कलाकारों की बात करें तो इसमें राजेश खन्ना, विनोद मेहरा, सिंपल कपाड़िया, जी हाँ डिंपल कपाड़िया की बहन, और ये उनकी पहली डेब्यू फिल्म थी। इसके अलावा इसमें अशोक कुमार, असरानी, असित सेन, उत्पल दत्त और निरूपा रॉय ने भी अभिनय किया था। और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। और इस फिल्म की कहानी क्या है हम आपको जरूर बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

और दोस्तों, हम भी आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप अपना फीडबैक हमें ईमेल के माध्यम से बता सकते हैं। और जो हमारे नियमित श्रोता हैं यानी रेगुलर लिसनर हैं, उनको तो मालूम ही है कि हमारा ईमेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। और जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके लिए भी मैंने इस ईमेल आईडी को दोबारा से बता रहा हूं, ip.radio.delhi@gmail.com। इस पर मेल करके आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं आज हम अनुरोध फिल्म की, और इस फिल्म में राजेश खन्ना साहब ने बहुत ही यादगार भूमिका निभाई है। और उनके अलावा इस फिल्म में विनोद मेहरा साहब का भी एक छोटा सा रोल था, लेकिन वह रोल बहुत ही मार्मिक और बहुत ही दिल को छू जाने वाला था। और हिंदी सिनेमा में जब भी परंपरावादी किसी कवि या लेखक को संघर्ष करना पड़ता है, तो उसे पहचान और अस्तित्व के लिए बेहद कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, चाहे वो बात सुपर डुपर क्लासिकल हिट मूवी प्यासा के विजय यानी गुरुदत्त साहब की हो, या फिर नमक हराम के आलम यानी रजा मुराद साहब की हो, या फिर बात हो हमारी आज की फिल्म अनुरोध के श्रीकांत की, उनकी कविताएं तभी सामने आती हैं जब कोई उन्हें गीत के रूप में पहचान देता है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि अगर एक कवि को बीमार और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़े तो वो क्यों संघर्ष करे, कैसे संघर्ष करे, क्योंकि उसे एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध करना पड़ता है, उसे आत्मपीड़ित होना पड़ता है, जो समाधान तो देता है लेकिन कभी स्वीकार नहीं करता है। अगर हम बात करें अनुरोध फिल्म की, तो अनुरोध फिल्म उस गुमनाम कवि को एक श्रद्धांजलि है जो बनावटी खुशियों से पले बढ़े समाज के अशांत जीवन को सुकून देता है। इस कवि की दुनिया में छल, कपट और दिखावे के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी रचनाओं में पारदर्शिता होती है, उनकी प्रतिभापूर्ण आवाज के माध्यम से लोगों तक उनके दिलों को छू जाते हैं, और इस प्रक्रिया में उनकी आवाज स्मृति में बस जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरुण खन्ना यानी राजेश खन्ना। राजेश खन्ना जो फिल्म के मुख्य किरदार हैं, और उन्होंने निभाया है अरुण का किरदार। वो एक महत्वाकांक्षी गायक हैं, और अपने दोस्त श्रीकांत जिसका किरदार निभाया है विनोद मेहरा साहब ने, और वो उनकी कविताओं के माध्यम से अपने मन की बात को कहने का मंच देते हैं। ये अनुरोध फिल्म एक बेहद ही संगीतमय फिल्म है, जिसे किशोर कुमार, आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की दमदार जोड़ी से ताकत मिली है। और इस फिल्म की पटकथा कैसी है, कहानी में आगे क्या होता है, हम आपको वो सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, यानी इसी फिल्म से किशोर कुमार साहब की आवाज़ में एक बेहद ही प्यारा गाना आपको सुनाते हैं, और उसके बाद आपके संदेश भी इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से, अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी के साथ।

और इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। गांव हाड़ीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सचिन शर्मा और नंदिनी शर्मा का ये ईमेल आया है और इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम एक ही फिल्म से आज की फिल्म अनुरोध के बारे में जो आप जानकारी दे रहे हैं वो बेहद पसंद आ रही है। हम आपका कार्यक्रम बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद तो आपको है कि आप हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और अपना फीडबैक भी दे रहे हैं। ऐसे ही कार्यक्रम को सुनते रहिए।

0: और हमें बिल्कुल याद है कि आपके मैसेजेस हमें अपने इस कार्यक्रम में शामिल करना है, तो एक और संदेश ले लेते हैं। ये हमारे नियमित श्रोता हैं, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और डॉली बेबी पूजा, राधिका और प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का। और इन्होंने लिखा है कि आज आप एक ही फिल्म में अनुरोध फिल्म के जो गीत और संगीत के साथ साथ कहानी आपके श्रीमुख से हम सुन रहे हैं, तो हमें बेहद आनंद आ रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: उस

जी हाँ दोस्तों, हमारी आज की जो फिल्म है अनुरोध, ये भी याद रह जाने वाली फिल्म है। और हम इस कहानी के बारे में बात कर रहे थे, जो इस फिल्म की कहानी है, तो उसके में ये होता है कि जो इस फिल्म की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले लिखा गया है, तो वो ऐसा लगता है कि वो राजेश खन्ना साहब के लिए ही लिखा गया है। हालांकि इसमें उन्हें अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए पेड़ों के आसपास दौड़ने का मौका तो नहीं दिया गया है, लेकिन उनका किरदार अपनी आवाज़ से

ये पहचाना जाता है, क्योंकि वो एक रेडियो स्टेशन में काम करता है, जैसा कि हम यहाँ पर आपके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। और अरुण के पिता यानी जिसका किरदार निभाया है उत्पल दत्त साहब ने, और वो एक जाने माने व्यापारी हैं, और उन्हें अपने बेटे का गायन यानी सिंगिंग का जो उनका शौक है वो एक आम पिता की तरह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा विद्रोह कर देता है और इसके बाद अपनी पहचान बनाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, जिससे उसकी माँ बहुत दुखी होती है। लेकिन श्रीकांत तो बेहद प्रतिभाशाली है, और जब उसका दोस्त उसकी रचनाओं को आवाज नहीं देता तो उसकी लेखन प्रतिभा अधर में लटक जाती है, वो अवसाद यानी डिप्रेशन में चला जाता है, फिर एक जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो जाता है। और अपने दोस्त की परेशानियों से बेखबर अरुण, जिसे अब संजय के रूप में जाना जाता है, वो दूसरे शहर में अपना टैलेंट दिखाने का मौका तलाश रहा होता है, जहां वह मैकेनिक के रूप में काम करके अपना जीवन यापन करता है। और फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। सुनीता यानी जो सिंपल कपाड़िया जी हैं, उन्होंने इसका किरदार निभाया है, और आपको बता दें ये डिंपल कपाड़िया की बहन है और ये उनकी डेब्यू फिल्म है, यानी इसी फिल्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो कहानी में कुछ यूं होता है कि सुनीता, अरुण यानी संजय जिसका किरदार राजेश खन्ना साहब ने निभाया है, वे उनकी बेहद बड़ी प्रशंसक होती हैं, और परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं फिल्म में कि दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाते हैं। गायक सुनीता को खोने के डर से वो अपनी पहचान को उजागर तो नहीं करता, लेकिन अब उसे श्रीकांत यानी जो हमारे विनोद मेहरा साहब ने उसका किरदार निभाया है, उनके इलाज के लिए धन जुटाने के लिए मंच पर आकर गाना गाते हैं, और कुछ इस तरह से घटनाएं घटती हैं। और कहानी में नाटकीय मोड़ तब आता है जब श्रीकांत को अपने बिछड़े दादा यानी अशोक कुमार साहब उनके बारे में पता चलता है, तो बच्चों के लिए वे एक आश्रम चलाते हैं, और कहानी धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सभी खुशी खुशी एक हो जाते हैं, और श्रीकांत ही आश्रम में गाए जाने वाले अपने ही गीत तुम बेसहारा हो तो आइए सुनाते हैं यही गाना तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, मन्ना डे साहब और साथियों की आवाज़ में।

बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन और अपार का मैसेज आया है और इन्होंने लिखा है कि आज की फिल्म के जो गाने और जानकारी आप दे रहे हैं वो बेहद पसंद आ रहा है, आपकी शानदार प्रस्तुति है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

जी हाँ दोस्तों, कितना ही प्यारा सा संदेश इस गाने के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से हम सभी को दिया गया है कि अगर हम बेसहारा हैं तो दूसरों का सहारा बने। बात करते हैं और कुछ मैसेजेस की। तो एक मैसेज आया है छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से। अरे क्या बात है, हमारा कार्यक्रम मुंबई में भी सुना जा रहा है। जी हाँ, और ये संदेश भेजा है अहमद भाई, सदफ जूही इकबाल, इमरान अहमद और बिटिया आमना, आसमा परी, आशु अहमद और समस्त परिवार। इसके अलावा गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता जी का मैसेज आया है। इन्होंने लिखा है कि आपका ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, गाने कहानी और रोचक जानकारी आपकी दमदार आवाज़ में दिल को छू रहा है। अरे जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और एक और जल्दी से मैसेज ले लेते हैं। ये मैसेज आया है, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र, कपिल और पूजा परिहार का। इन्होंने लिखा है कि हम आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं और अनुरोध फिल्म अपने समय की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और इस फिल्म के बारे में कुछ और कहानी बताते हैं आपको कि होता ये है कि जब हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि एक दिन अरुण का अपने पिता से झगड़ा हो जाता है और वो घर छोड़ करके कलकत्ता, जिसे आज के दौर में हम कोलकाता कहते हैं, वहाँ वो चला जाता है और वहाँ का जो लोकल एक रेडियो स्टेशन होता है वहाँ पर सिंगर के रूप में काम करने लग जाता है। और इसके बाद माथुर साहब एक होते हैं और उनकी पोती सुनीता के वो साथ में रहते हैं। उन्होंने युद्ध में अपने बेटे को खो दिया था और अपनी बहू और पोते का कोई पता नहीं लगा पा रहे थे, जिसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे थे, खोजबीन कर रहे थे। अरुण माथुर की जिद्दी पोती सुनीता के करीब आ जाता है और सुनीता संजय कुमार की प्रशंसा करती है और यह जाने बिना कि वह और अरुण एक ही व्यक्ति है। जी हाँ, जो अरुण का किरदार निभाया है राजेश खन्ना साहब ने, दरअसल उनका फिल्म में किरदार तो अरुण का है लेकिन जब वो सिंगर बनते हैं तो वो अपना अरुण नाम से फेमस नहीं होते हैं बल्कि वो संजय के नाम से फेमस होते हैं। और इस फिल्म की जो हीरोइन है सिंपल कपाड़िया, वो संजय यानी जिस जाना माना जो सिंगर है, जो गायक है, उनसे प्यार करने लग जाती है। और इसी बीच श्रीकांत का किरदार निभाया है विनोद मेहरा साहब ने और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और जब डॉक्टर से उनका चेकअप कराया जाता है तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गई है और वो अंतिम अवस्था में हैं। उसकी माँ उसे लेकर कलकत्ता आती है और जब श्रीकांत को इस हालत में अरुण देखता है तो बेहद ही निराश हो जाता है, स्तब्ध रह जाता है और वह उसे बचाने का निश्चय करता है। वह एक स्टेज शो आयोजित करने का फैसला करता है लेकिन लास्ट मोमेंट में यानी बिल्कुल आखिरी समय में वह इसे टाल देता है। वह स्टेज पर आकर ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे जुटा लेता है और सर्जन श्रीकांत की माँ को माथुर की खोई हुई बहू के रूप में पहचान लेता है और उन्हें सूचना दे देता है। उधर श्रीकांत का ऑपरेशन सफल हो जाता है और वो अपने दादा यानी किशोर, वो जो अशोक कुमार साहब हैं उन्होंने उनके दादा का किरदार निभाया है, उनसे वो मिल जाता है। और अरुण के माता पिता अपने बेटे की प्रसिद्धि देखने कलकत्ता आते हैं और तब उनके पिता का

सिंगिंग के प्रति उसका करियर बनाना, जिसका वो लगातार विरोध करते रहे हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि मेरा बेटा एक गायक के रूप में सफल हो गया है और वो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है, तो फिर गायन के प्रति उनका नज़रिया बदल जाता है और अंत में सब कुछ सामान्य हो जाता है, सुलह हो जाती है और सुनीता और अरुण का विवाह हो जाता है। दोस्तों, यह राजेश खन्ना का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था और बहुत सारे इसमें ऐसे विनोद मेहरा की छोटी सी भूमिका थी लेकिन बेहद ही प्रभावशाली भूमिका थी। आश्रम में भूखे कवि से लेकर स्वस्थ सिंगर के रूप में उनका जो रूपांतरण हुआ था वो बेहद ही वास्तविक लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अभिनय कर रहे हैं। इसके अलावा इस फिल्म के गाने भी बेहद लोकप्रिय हुए थे। तो अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो चलते चलते आपको इस फिल्म का एक और गाना सुनवाते हैं।

किशोर कुमार साहब की दर्द भरी आवाज़ में अभी आप इस गाने को सुन रहे हैं। और इसी बीच कुछ और संदेश ले लेते हैं। हमारे नियमित श्रोता हैं शांतिनगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, और इन्होंने लिखा है कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम लग रहा है, आपकी प्रस्तुति भी बेहद पसंद आ रही है। और इसके अलावा हनुमान नगर नरवाना हरियाणा से बालकिशन, रोशनी, आरती, मुस्कान, पूजा का भी संदेश हमें आया है। और अब इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति, फिर किसी न किसी कार्यक्रम में इसी चैनल में आपसे होगी मुलाकात। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद रखिए ख्याल और सुनते रहिए हमारा चैनल आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। नमस्कार।

0: अभी आप एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुन रहे थे। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे अरुणेश द्विवेदी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।

भारत और अमेरिका ने दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी साझेदारी की अहमियत का इरादा किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की ज़रूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए अलग अलग वसीलों से

पूर्वी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके की दोबारा पोलिंग के वोटों की गिनती में बीजेपी के उम्मीदवार देवांशु पांडा को जबरदस्त तबकत हासिल हो गई है। सरकार ने सभी भारतीय शहरियों को ये सलाह दी है कि वो इबोला वायरस फैलने के मद्देनज़र कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान का गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में क्वेटा शहर में रेल पटरी के नज़दीक धमाका होने से कम अज़ कम 24 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसीतर मौजूद पर तबादले ख्याल किया और भारत अमरीका कलीदी साझेदारी की अहमियत को दोहराया। साथ ही उन्होंने तजारत, तवानाई, मोबिलिटी और इलाकाई सिक्योरिटी समेत इश्तराक के अहम शोबों को उजागर किया। हैदराबाद हाउस में अपनी मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दौरे का तस्करा करते हुए कहा कि अमरीकी इंतजामिया के पहले दिन से ही दोनों मुल्क बाकायदगी से राबता कायम किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोपहर के खाने पर उनकी बातचीत में खलीज के खित्ते के मौजूदा हालात व वाकयात पर तवज्जो मरकूज की गई। साथ ही क्वाड मीटिंग से कबल भारत बहरुल काहिल खित्ता बदस्तूर एक अहम तरजीह है। वजीर खारजा ने भारत और अमरीका के दरमियान तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की अहमियत पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने तवानाई की तजारत में हालिया तौसी का खैर मकदम किया और कहा कि भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी में अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई को मरकजी हैसियत हासिल है। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को भी उजागर किया कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अवाम से अवाम के राबतों को खास मुकाम हासिल है। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि कानूनी और दुरुस्त शक्ल में मोबिलिटी मुतासिर नहीं होगी। उन्होंने तनाज़ात को हल करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करने के भारत के मौक़िफ़ को दोहराया और कहा कि भारत महफूज और बिला रुकावट बहरी तजारत और लेन देन की हिमायत करता है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों के दहशतगर्दी की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अहम मामलात पर भारत और अमरीका के कलीदी एतबार से यकसा मौक़िफ़ हैं, जिससे आने वाली सदी की समत तय होगी। जनाब रूबियो ने यह भी कहा कि तवानाई के मामले पर भी भारत और अमरीका कलीदी एतबार से यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए चार दिन के दौरे पर कल भारत पहुँचे हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। मगरबी बंगाल में फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग के वोटों की गिनती में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने जबरदस्त सबकत हासिल कर ली है। आखिरी खबरें मिलने तक वो 44,891 वोटों से आगे चल रहे थे। सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरी पोजीशन पर हैं, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक तीसरे मुकाम पर चल रहे हैं। इधर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथी पोजीशन पर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक मजमून शेयर किया है, जिसमें इस बात को उजागर किया गया है कि किस तरह खान चेंग जोंग के पांच खजाने सिक्किम के सफर को रोशन करते रहे हैं, जिससे विकसित सिक्किम 2047 की राह हमवार हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मजकूरा मजमून में खान चेंग जोंग को सिक्किम की सरजमीन, उसकी यादों और ज़मीर के मुहाफिज के तौर पर पेश किया गया है। इस मजमून में सिक्किम के लोगों की ज़िंदगी में खान चेंग जोंग की सकाफती, रूहानी और तारीखी अहमियत की अक्कासी की गई है। सिक्किम बाज़ाब्ता तौर पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड का मुकम्मल मेंबर बन गया है। गैंगटोक में सरकारी ज़राए ने बताया कि सिक्किम ने दरिया को महफूज रखने, आबपाशी और सैलाब से पैदा हालात से निमटने के प्रोजेक्टों के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए मालियत की तजवीज़ें पेश की हैं। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की हालिया मीटिंग के दौरान इस फैसले को हतमी शक्ल दी गई।
बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर मुल्क में निराज की कैफियत फैलाने के लिए एक संगीन साजिश रचने का इल्जाम लगाया।

रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के बयान से सभी अपोजिशन पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी साजिश का इशारा मिलता है। जनाब पीयूष गोयल ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क को बदनाम करना, आईनी इदारों की तौहीन करना और भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए गैर मुल्की ताकतों से अपील करने के लिए बैरून मुल्क जाना कांग्रेस पार्टी की असली नीयत रही है। सारिफिन के उमूर के महकमे ने मुल्क में वज़न और पैमाइश की जाँच के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए सरकार के मंजूर करदा जाँच मराकज़ के रोल को उसत दी है। इसके लिए सरकार ने 2013 के कानूनी मेट्रोलॉजी जाब्तों में तरमीम की है। सारिफिन के उमूर की वजारत ने बताया है कि नए जाब्तों की रूह से इन मराकज़ को वज़न और पैमाइश के 23 ज़ुमरों की तस्दीक करने और फिर से तस्दीक करने की इजाज़त होगी। तरमीम शुदा जाब्तों के तहत पेट्रोल, डीजल, LNG, LPG, CNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर्स को भी उन आलात की फहरिस्त में शामिल किया गया है जिनकी जांच सरकार के तस्लीमशुदा जांच मराकज कर सकेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने सभी भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि वो इबोला वायरस के फैलने के पेश नज़र कांगो, युगेंडा और जनूबी सूडान में मजीद नोटिस जारी होने तक गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। हुकूमत ने इन मुल्कों में रहने वाले या सफ़र कर रहे भारतीय शहरियों को भी हिदायत दी है कि वो मुकामी हुकाम की तरफ से जारी सेहत आम्मा की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि भारत में इबोला बीमारी के किसी भी केस की कोई इत्तला नहीं मिली है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम 24 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए। ये धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नज़दीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुज़्वी नुकसान पहुंचा जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाक़े के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। शुमाली चीन में एक कोयला कान में हुए एक धमाके से कम 82 अफराद हलाक हो गए जबकि 2 अफराद लापता बताए जाते हैं। शांक्सी सूबे में ल्यू शेनयू कोयला कान में हुआ ये गैस धमाका चीन में साल 2009 के बाद से अब तक का बदतरीन हादसा है। 125वां फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज पेरिस में शुरू हो रहा है। नोवाक जोकोविच अपना रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने की मुहिम का आगाज़ करेंगे। भारत की तरफ से मर्दों के डबल्स जुमरे में यूकी भांबरी और न्यूजीलैंड के उनके साथी खिलाड़ी माइकल विनस जोड़ी बनाकर खेलेंगे जबकि एन श्रीराम बालाजी ब्राज़ील के अपने साथी खिलाड़ी मार्सेलो डोमिलिनर के साथ जोड़ी बनाकर मुकाबला करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। उधर कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी साझेदारी की अहमियत का इरादा किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की ज़रूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई अहमियत की हामिल है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया है। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के दोबारा पोलिंग के वोटों की गिनती में बीजेपी के उम्मीदवार देवांशु पांडा को जबरदस्त सबकत हासिल हो गई है। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
0: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है। ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,000

0: 397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्त स्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है।

0: उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 और 15 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां

बनता गया। नमस्कार, आदाब आप सभी का आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार में, जिसे लेकर आई है आज आपकी दोस्त तृप्ति जौहरी। श्रोताओं, आज जिन पंक्तियों से या यूं कहें कि जिस कलाम से आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी, ऐसे अशार कहने वाले, बेहतरीन गजलों नगमों और शेरो शायरी करने वाले महान फनकार मजरू सुल्तानपुरी की याद का दिन है, तो उन्हीं पर केंद्रित है हमारा आज का ये कार्यक्रम।

जी हाँ, ऐसी ही जादू नगरी से आया था वो जादूगर, शब्दों का फनकार, अपने हुनर का उस्ताद, जो है हमारे आज का कलाकार। हमारे आज के कलाकार हिंदी सिनेमा के दिग्गज गीतकार माने जाते हैं। उर्दू शायर, गजल गायक और फिल्मों में गीत लिखने वाले मजरूह सुल्तानपुरी का निधन 24 मई सन 2000 में हो गया था। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके लिखे गाने आज भी लोगों की जुबान पर है, लोगों के दिलों में बसे हैं। वो 250 से ज़्यादा फिल्मों के लिए गाने लिख चुके थे। उनको हमारा शत शत नमन।

भाई आज के कार्यक्रम में हमने तो आवाज़ लगा दी है ऐसे गीतकार को जिन्होंने दिए अपनी कलम से बढ़कर एक बेहतरीन नगमे, बेहतरीन गज़लें, बेहतरीन शायरी, कविताएं और भी बहुत कुछ इस फिल्मी दुनिया को, इस खूबसूरत संसार को। आज की जो है हमारी कलाकार जिसे सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ अपने मनपसंद चैनल इंद्रप्रस्थ से। 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक मुस्लिम राजपूत परिवार में जन्मे असरार उल हसन खान, जो सिनेमा में मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से मशहूर हुए। पिता पुलिस डिपार्टमेंट में थे और चाहते थे कि उनका बेटा असरार हकीम बने। मदरसे में शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद मजरूह निकल पड़े यूनानी मेडिसिन की पढ़ाई करने लखनऊ। भाई अब हकीम की पढ़ाई करने तो निकल पड़े थे, लेकिन हकीम बनने की पढ़ाई कर जरूर रहे थे, लेकिन दिल तो गजल में लगा हुआ था। एक बार सुल्तानपुर में मुशायरा लगा और मजरूह भी निकल पड़े अपनी गजल गाने। उनकी गजल सुन दर्शक भी गदगद हो गए और तब मजरूह को एहसास हुआ कि वो हकीम के लिए नहीं बल्कि शायर और गीतकार के लिए बने हैं।

तो भाई ऐसे ही बेहतरीन गीत नगमे लिखने वाले मजरूह सुल्तानपुरी हैं हमारे आज के कलाकार, जिसे आप सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल पर अपनी दोस्त तृप्ति चौहरी के साथ। यूं तो आपस में बिगड़ते हैं खफा होते हैं, यूं तो आपस में बिगड़ते हैं खफा होते हैं, मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं। मजरू की कलम की स्याही नज्मों गजलों के रूप में जब लोगों तक पहुंची तो उर्दू शायरी को नई ऊंचाई तो मिली, साथ ही उन्होंने रोमानियत को भी नया रंग और ताजगी दी। कहते हैं फिल्मों में गीत लेखन के लिए मजरू को जिगर मुरादाबादी ने बड़ी मुश्किल से तैयार किया था। उन्हें बतौर शायर अपनी पहचान सादा प्रिय थी। पहले तो फिल्मों में गाने से मना कर दिया था, मगर बाद में बढ़िया फीस मिलने के बाद वो मान गए।

आज के राही जो जो कार्यक्रम में हमसे जुड़े हैं वो अपनी प्रतिक्रिया हमें बता सकते हैं अपनी ईमेल के ज़रिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ipradiodelhi@gmail.com। तो जो राही जुड़े हैं बताएं हमें आज का कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है और आपको मजरूह सुल्तानपुरी के गीत सुनकर कैसा लगता था, कैसा लगता है, और आप अक्सर उनके गाने सुनने की फरमाइश हमें भेजते हैं। तो जब आप भेजते हैं तो क्या सोचकर भेजते हैं। तो आज केंद्रित है हमारा आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार मजरूह सुल्तानपुरी पर। तो बात कर लेते हैं मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में थोड़ी सी। और मजरूह सुल्तानपुरी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म शाहजहाँ के गीत बादल आए झूमके से की थी। उन्होंने वतन के रखवाले, कयामत से कयामत तक, घर की कहानी, लाल दुपट्टा, मलमल का और घर हो तो ऐसा जैसी फिल्मों के गाने लिखे। अगर बात करें पुरस्कार और सम्मान की तो भारत के 2013 के डाक टिकट पर अगर आप देखें तो मजरूह सुल्तानपुरी का आपको चित्र भी नज़र आएगा। मजरूह ने 1950 के दशक में लोकप्रिय फिल्मों के लिए गीत लिखे फैज़ अहमद फैज़, हुमार बख्श बख्शी के साथ। मजरूह का सबसे उल्लेखनीय गज़ल लेखक माना जाता था उनको। मजरूह ने 1965 में फिल्म दोस्ती के गीत के लिए चाहूँगा मैं तुझे साथ सवेरे के लिए अपना एकमात्र फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार जीता। उन्हें 1993 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और वो ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले पहले गीतकार बने।

और इसी के साथ कुछ साथी हमारे कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, एक ही कलाकार कार्यक्रम में, और हमारे साथी हैं ये दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा, हसन, बाबू, मिफा, बेबी और सादिया। इनको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। इसके साथ हैं उदय भान, ये कार्यक्रम के आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को इन्होंने शायद नाम नहीं सुना, तो मेरा नाम तृप्ति है। अगली बार से आप कार्यक्रम टाइम से सुनेंगे तो आपको नाम भी पता चलेगा कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता का। प्रताप ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से

श्रोता उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये हैं प्रेम पूर्वक आदाब गांव कुमरहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और इन्होंने लिखा है किसी भी गीत में तो भाई आपका शामिल हो गया है। ग्राम नागरकोहरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, तृप्ति जौरी, मैम जी सब प्रेम नमस्कार। तो भाई आपको भी मेरा दिल से नमस्कार कि आपने मेरा नाम सुना और कार्यक्रम से शुरुआत से जुड़े। मजरूर सुल्तानपुरी जी पर केंद्रित प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। आज हम एक बार फिर आपके साथ शानदार पेशकश के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो धन्यवाद आपका। और अब जुड़े हैं ये हमारे साथी हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जी और इसके साथ हैं धर्मेंद्र छिपा जी, एक ही कलाकार आज आप चर्चा कर रहे हैं, मशहूर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और इनके बारे में इन्होंने लिखा है, शुरुआत से इनके बारे में जानकारी दी है। भोपालगढ़ राजस्थान से आप हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। और हरजिंदर शिंदे जी हैं, ये हैं गाँव नथाना पंजाब से, हरजिंदर शिंदा, जसवीर, सीता, गीता और इनके साथी दिगंबर गौड़ जी आप हैं गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से, दिग्दर्शन और कविता और इनको ये मजरू सुल्तानपुरी पर केंद्रित आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है और रोचक जानकारी प्राप्त कर ये बहुत अच्छी लग रही है इनको, तो इसके लिए इन्होंने कोटि कोटि धन्यवाद लिखा है, ये जानकर और भी अच्छा लगा। और हमारे साथी हैं देव शंकर कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से, देव शंकर तामुरिया और इनके परिवार के सभी सदस्य, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देव और मास्टर अल कबीर, तो आप सभी का धन्यवाद। इसी के साथ और हमारे साथी जुड़ गए हैं तो चलते चलते उनका भी नाम ले दें हम। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और ये हैं हमारे सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, प्रतिक्रिया आदरणीय तृप्ति जौहरी जी, सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं एक ही कलाकार जिसमें आज आप बात कर रही हैं गीतकार मजरू सुल्तानपुरी पर, उत्तम प्रस्तुति, रोचक जानकारियां, सदाबहार गीत, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से बड़ी बधाई। तो धन्यवाद साथी आपका जो आपने इतने अच्छे से आपने कार्यक्रम को सुना, सराहा। आपके कलाकार गीतकार मजरू सुल्तानपुरी जी बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली। अच्छा, एक ही कलाकार के लिए आप लिखना चाह रहे हैं, बेहतरीन गीत ये है हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के। तो साथियों आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और आनंद लीजिए इस गीत का। इसी के साथ आज्ञा दीजिए अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी को।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
1: और वंदना को
0: प्रेम भरो अभिवंदन। बहना,
1: हाँ,
0: कैसे इतनी प्रसन्न चित्त दिखाई दे रही हो?
1: हाँ सखी, तुमने तो पहचान लियो, बहुत दिनांते गिरिराज जी की परिक्रमा देवी के मन में ही पर टल जाती और अब परिक्रमा दे दी तो बड़ा मन प्रसन्न है रहा है।
0: अच्छा, देखो जब मन में ठान लियो ना

0: तो कोई काम रुकना है।
1: हाँ सखी, सही कह रही हो। मन में जब संकल्प करो मैंने, तभी दे पाई हूं परिक्रमा।
0: बिना संकल्प में वो शक्ति है कि समुद्र पार कर गए हनुमान जी, और राजा भागीरथ वे तो स्वर्ग ते गंगा जी को हु धरती पे ले आए।
1: हाँ सखी, अपने पूर्वजन को तारवे के काजे राजा भागीरथ ने कठिन तपस्या करी और गंगा जी को अवतरण धरती पे भयो।
0: हाँ, यही तो है संकल्प की शक्ति के राजा भागीरथ ने या नेक काम सो पूरी की पूरी पीढ़ी तार दई, और गंगा मैया की निर्मल पावन धारा आज हूँ देखो अनवरत प्रवाहित है के जीवन दायिनी बनी भई है।
1: हाँ, और सखी, जेठ मास शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा मैया को अवतरण धरती पे भयो हो जो कल है,
0: हाँ
1: तो अपने श्रोतान को एक गंगा मैया पे गीत सुनवाए के।

0: अनुराधा पौड़वाल के स्वर में बड़ी ही प्यारी स्तुति सुनवाई है बहना। बहना कहो जाए है कि गंगा तब दर्शनार्थ मुक्ति, मतलब है कि गंगा मैया के दर्शन मात्र ते मुक्ति मिल जाए। जे तो धार्मिक दृष्टिकोण है बहना। हाँ। पर सोचो ना, गंगा गंगोत्री ते निकस के कितने पहाड़ जंगल मैदान पार करती भई, अपने अंदर न जाने कितनी जड़ी बूटी को समेटती भई, सबन के काजे औषधीय तुल्य जल लेके कल कल बहती भई, खेतन को सींचती भई, मिट्टी को उपजाऊ बनाती भई, प्रवाहित हुए और सबसे अधिक ऑक्सीजन गंगा के जल में विद्यमान है। तो भई ना जे जीवन दायिनी मुक्ति दायिनी गंगे मैया।
1: हाँ सखी, गंगा को औषधीय जल रोगन को दूर करवे वारो है और कष्टन को दूर करके संपन्नता को देवे वारो है। तभी तो गंगा को मात्र नदी कह के ना पुकारो जाए, बल्कि गंगा मैया कह जाए है।
0: और बहना याई भावना को सकल भारतवासी अपने हिय में धारण करेंगे तो याकी पवित्र जल धारा सदैव प्राणीन के काजे मुक्ति प्रदायिनी रहेगी। हमें काऊ तरिया ते या में गंदगी ना डालनी चाहिए, क्योंकि जाकी रासायनिक संरचना में हस्तक्षेप करके हम अपनो ही नुकसान करेंगे।
1: हाँ सही बात है सखी, और गंगा जी के तरियाई और नदिन को स्वच्छ रखना जरूरी है, जाते हमें स्वच्छ जल प्राप्त होए। और हमारे धर्म ग्रंथन में सभी नदियन के महत्व को वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण की प्यारी यमुना जी को ब्रज मंदिरन में पूजो जाए और या की अष्टयाम सेवा करी जाए।
0: बिल्कुल बहना, यमुना अष्टक में यमुना जी की स्तुति करी गई है। यमुना जी को मुक्ति

0: दायिनी और यमदूतन को टारने वाली पाप नाशनी कहो गयो है और हर धार्मिक पर्व पे यमुना जी को पूजो जाए। और बहना यमुना जी की चुनरी उड़ावे की परंपरा हमारे ब्रज में बहुत प्राचीन है, जाकु चुनरी मनोरथ कहो जाए है।
1: हाँ सखी, अधिक मास में विशेष तौर ते यमुना जी को महत्व बढ़ जाए, क्योंकि अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहो गया है और यमुना जी श्री कृष्ण की पटरानी कही गई है।
0: हाँ बहना, और आपने अधिक मास की बात करी है ना, तो या में देखो पूरे साल भर के त्योहार मंदिरन में मनाए जामे। कितनी सुंदर घटान के दर्शन है रहे हैं, होली को उत्सव है रहे है, झूलेन को उत्सव है रहे है, सबरे मनोरथ उत्सव या मास में मनाए जा रहे हैं।
1: हाँ सखी, देखो अधिक मास में योग तप साधना दान पुण्य करके लोग तीर्थ यात्रा हो करें, अखंड दीपक जलाए भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करें। ऐसा लोग माने हैं कि यह मास में किए अच्छे कार्यों का फल क्यों ना बढ़ जाए है।
0: सही कह रही हो बहना। और देखो भगवान की पूजा अर्चना तो हम बिनके गुण सुन के, बिनकी स्तुति सुन के, गाय के और कवि गोष्ठी को रसास्वादन करके हुए कर सके हैं।
1: बिल्कुल सखी, तो हम अपने श्रोतान को एक कवि गोष्ठी सुनवा रहे हैं, जहाँ में प्रतिभागी हैं डॉक्टर सोहनलाल शीतल, मंजू शाक्य और के राजस्थानी। तो श्रोताओ आनंद लियो या कवि गोष्ठी को।
2: राधे राधे, आज की या कवि गोष्ठी में उपस्थित हैं आदरणीय श्रीमती मंजू शाक्या जी, आदरणीय बड़े भाई के राजस्थानी जी और मैं स्वयं डॉक्टर सोहनलाल शीतल। तो सबसे पहले आज की हमारी यात्रा मंगल में हो और आज की काव्य धारा भावे के ताई मैं निवेदन कर रहे हूँ आदरणीय मंजू शाक्या जी से। मंजू जी आए और हमको काव्य पाठ से रसास्वादन कराए की कृपा करें।
3: सवन को मंजू शाक्या की राधे राधे। और ब्रज की बात हुए तो हम तो कान्हा जी की बात ही कर पाते हैं।
2: बात सही है।
3: तो कन्हैया जी के प्यार में पागल हमाओ मन का कह रहो है।
2: स्वागत है।
3: और बाप प्यार में खोए के घर वालन के ताने मोए सुनने पड़ रहे हैं।
2: स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
3: तो एक छंद रखती हूँ,
2: स्वागत
3: सुनो।
2: स्वागत है, स्वागत है।
3: कि मिलने की आस ऐसी जाग उठी जियरा में, अब मोए कछु न सुहाए मेरे सांवरे।
2: बहुत अच्छे भाई।
3: रोटी जर जाए कहूं कहूं बगरे है दूध, रोटी जर जाए कहूं कहूं बगरे है दूध, तेरी छवि जाने क्यों लुभाए मेरे सांवरे।
2: बहुत बढ़िया।
3: और छेड़े है ननद मोए सास दे ताने और पिया मेरो रूठ रूठ जाए मेरे सांवरे।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
4: बहुत सुंदर।
3: और मैं तो भूल बैठी सुधी बुद्धि और चैन बैन, मैं तो खोए बैठी सुधी बुद्धि और चैन बैन, कौन है कि जाकू तू ना भाए मेरे सांवरे।
2: और
3: जब कन्हैया को प्यार ऐसा हुआ है कि जा से प्यार कर ले तो कुछ ना दिखाई दे। एक छंद और रखूं।
2: स्वागत है, स्वागत।
3: कि कछु और दे ना दिखाई मेरे चित्त को कि जब सूझ सांवरे से लाग रही अखियां।
2: हाय हाय, क्या कहने।
3: कछु और दे ना दिखाई मेरे चित्त को कि जब सूझ सांवरे से लाग रही अखियां, जित को दिखाई परे किसन कन्हाई मोए, बस बाई और मोरी भाग रही अखियां।
2: क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने।
3: कि छोड़ छाड़ी जगत के सिगरे ही रंग रस, छोड़ छाड़ी जगत के सिगरे ही रंग रस, नंद जू के लाड़ ले कूं ताक रही अखियां। और लापता भई है नींद, लापता भई है नींद, प्रीत में जा सांवरे की रात रात भर मोरी जाग रही अखियां। रात रात भर मोरी जाग रही अखियां। और ब्रज के पशु पक्षी पौधा सब कन्हैया जू से इतो प्रेम करे हैं।
2: भाई ब्रज की नगरी तो है प्रेम की नगरी।
3: और हमाओ मन का कह रो है।
2: स्वागत
3: कि
2: स्वागत।
3: काश हमें इंसान ना होते,
2: हम कछु और होते
3: और हमें एक बांस की लकड़ियां बना देते। तो का हो तो सुनो।
2: स्वागत।
3: कि भले अधरन पे ना धरते मुझे सारी उमरिया में, भले अधरन पे ना धरते मुझे सारी उमरिया में, मगर कस के पकड़ रखते मुझे अपनी हथरिया में।
2: आए आए।
3: और मैं मानुष की जगह होती जो सूखे बांस की लकड़ी।
2: बहुत अच्छे।
3: मैं मानुष की जगह होती जो सूखे बांस की लकड़ी, मुझे मुरली बनाकर खोसते मोहन।

0: कमरिया
1: बहुत
0: में
1: सुंदर,
0: मुझे मुरली बना
2: बहुत
0: के।
2: बढ़िया,
1: बहुत
2: बहुत
1: अच्छे, बहुत
2: बढ़िया,
1: अच्छे, बहुत
2: बहुत
1: अच्छे।
2: बढ़िया भाव।
0: और इतनो प्यार होएगा कान्हा जी से, तो एक गीत रखे हैं कान्हा जी
1: स्वागत
0: के लिए,
2: है, स्वागत है,
0: सुनो।
1: स्वागत है, स्वागत।
0: कि मेरे नैनन बीच समाए गई रे कान्हा की सूरत
2: है,
0: भोरी,
1: वाह है।
0: मेरे नैनन बीच समाए गई रे कान्हा की सूरत भोरी, कान्हा की सूरत भोरी संग में ब्रस भानु
1: किशोरी,
0: किशोरी,
1: क्या कह रहे हैं यार,
0: कान्हा
2: रानी
0: की
2: रानी जी, बहुत
0: सूरत
2: सुंदर।
0: भोरी संग में ब्रस भानु किशोरी, हाय मेरे दिल के बीच समाए
1: समाए
0: गई रे
1: गई रे,
0: कान्हा की सूरत
1: बहुत अच्छी,
0: भोरी,
2: आनंद आया।
0: कि ठुमक चले।

0: मुस्कनिया काना जान न ले ले मोरी, मेरे दिल के बीच समाए गई रे काना की सूरत।
1: भूरी, क्या कहने क्या
0: और
1: कहने।
0: का राधा के संग निधि वन जावे, राधा के संग निधि वन जावे, नित नित लीला नई रचावे, कबहू ग्वाल संग फोरे मटकी, सबकी चितवन जापे अटकी, सबकी चितपन जापे अटकी। और कैसो जादू डारो तूने मोहन बंद गए हम बिन डोरी, कैसो जादू डारो तूने कान्हा बंद गए हम बिन डोरी, मेरे मन के बीच समाए गई रे कान्हा की सूरत भोरी। और देखो प्रेम में जलन होती है, तो राधा रानी ने जलन के मारे बसुरिया रख ली चुराए कान्हा जी की। तो क्या होता है सुनो,
1: स्वागत है।
0: एक दिन जब ब्रस भानु किशोरी, एक दिन जब ब्रस भान किशोरी, लीनी चोर मुरलिया तोरी, बंसी के संग प्यार जतावे, कान्हा मोसे ना बतलावे, बंसी के संग प्यार जतावे, मोकुशोतन जैसी लग रही रे मेरे श्याम मुरलिया तोरी, मोए सोत

0: सूरत
1: भोरी।
0: भोरी नैनों के बीच समाए गई रे काना की सूरत भोरी।
1: बहुत
0: अच्छी, बहुत
1: सुंदर,
0: अच्छी
1: बहुत
0: मंजू जी,
1: सुंदर,
0: बहुत प्यारा,
1: कमाल
0: आपने
1: मंजू जी।
0: प्रेम की पूरी रसदार भाई। आपके लिए साधुवाद, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं विनती कर रहे हूँ आदरणीय के राजस्थानी साहब से कि वो आए और अपनों कछु बढ़िया सा काव्य पाठ हमें सुनाएं। आदरणीय राजस्थानी साहब,
1: आभार, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं आप। सबन को ब्रज माधुरी के जाल लोकप्रिय कार्यक्रम में हास्य व्यंग कवि के राजस्थानी की राधे
0: स्वागत
1: राधे।
0: स्वागत है, स्वागत है, स्वागत
1: मुरली
0: स्वागत
1: आप है मंजू जी ने बहुत
0: है,
1: कुछ कहो, वहीं से मैं अपनी बात आरंभ करने की
0: स्वागत है,
1: कोशिश
0: स्वागत है,
1: कर रहे
0: स्वागत है,
1: हूँ।
0: स्वागत है, स्वागत
1: मन को मयूर नाचे, प्रीतम की प्रीत वाचे, हिय में उमंगलिये अंगड़ाई डोल
0: आय
1: रही।
0: आय
1: मन को मयूर नाचे, प्रीतम की प्रीत वाचे, हिय में उमंगलिये अंगड़ाई डोल रही। प्रेम रस सांस भरी मुरली अधर धरे, हिय के जे तार छेड़े मिसरी सी घोल रही। कैसो कमाल करे सबको जे चैन हरे, रस की रसीली करी बातें तोल मोल रही। मुदे कपाट धुनी सुन जिए खोल रही। श्याम जू की बांसुरी राधा राधा
0: बोल
1: बोल
0: रही,
1: रही।
0: वाह भैया, वाह
1: श्याम
0: वाह
1: जू
0: वाह,
1: की बांसुरी
0: राधे
1: राधा
0: राधे बोल
1: राधा
0: रही,
1: बोल रही।
0: बहुत अच्छा,
1: जैसे कि मेरी
0: स्वागत है,
1: विधा हास्य व्यंग की है,
0: स्वागत है,
1: तो
0: स्वागत है,
1: छोटी छोटी छड़काएं आप
0: स्वागत
1: सभी
0: है
1: के समक्ष पहुंचाने की कोशिश में। आजकल सोशल मीडिया को जमाना साहब,
0: जी,
1: तो वहां से एक छड़का उठाने की कोशिश करिए
0: स्वागत
1: ऑनलाइन। सात फेरन के बाद
0: है।
1: जैसे ही सातवो वचन लियो,
0: हाँ
1: दूल्हा ने दुल्हा

0: बहन के गले में मंगलसूत्र डालने से इनकार किया। बोलो मेरी सवरी बात मानेगी तो मैं तेरी भी कहीं नहीं टारेंगो, पहले आठवो वचन निभाने की गारंटी दे, तब ही तेरे गले में मंगलसूत्र डारेंगो।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: तब ही तेरे गले में मंगलसूत्र डारेंगो, वचन दे मेरी तरह सोशल मीडिया से तोबा कहेगी, आज ते तू ऑनलाइन बिल्कुल ना रहेगी।
1: बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
0: दुल्हन बोली, पंडित जी दहेज में जो सामान दियो है सवरों वापस धरवा दो, जे बात ना मानी जा सके भले फेरे उल्टे करवा दो।
1: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: एक मंगल सूत्र पर जे इतने ऐठे हैं, ऑनलाइन ऐसे तो 50 बैठे।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
2: बहुत अच्छे।
0: पंडित जी बोले, सोशल मीडिया से भले तुम तौबा मत करो, परिवार बिखर भी लग जावे, इतनो ऑनलाइन मत रहो, इतनो ऑनलाइन मत रहो। छोटो सो व्यंग
1: स्वागत
0: शीर्षक यमराज। एक दिना मेरे प्राण लेवे को यमराज आए गयो, मेरी आँख इनके सामने अंधेरो छाए गयो।
1: बहुत अच्छा।
0: यमराज बोलो, लाला डरे मत, चाहे तो फायदा ले सके, अपनी जगह का और के प्राण दे सके। अच्छा, चाहे तो फायदा ले सके, अपनी जगह का और के प्राण दे सके। मैं बोलो, यमराज जी बस 5 मिनट ठहर जाओ, पत्नी बाजार गई है।
1: अभी आ रही होगी
0: पत्नी, बाजार गई है, आवती होगी, तुम भाई को ले जाओ। बहुत अच्छा संचालन कर रही डॉक्टर सोहनलाल शीतल जी, एक एक कवि को अपनी मधुर वाणी से उन्हें बुलाए, अपने मधुर कंठ से जितने उनके शब्द की संरचना है, बातें बढ़िया, उनको उतना ही मधुर कंठ है। अपने मधुर कंठ से 1000 ब्रज माधुरी की काव्य गोष्ठी में रसधारा कविताओं की बहाएं और डॉक्टर सोहनलाल जी शीतल आए।
1: धन्यवाद आदरणीय भाई के राजस्थानी जी, आपके आदेश को पालन करते हुए कुछ छंद निवेदन कर रहे हूँ। पहले
0: स्वागत है,
1: आपको पता है कि 17 मई से और 25 जून तक हमारे देश में अधिक मास, जिसे हम ब्रज भाषा में लौंद को महीना कहते हैं, और लौंद के महीना में हमारे जो है पूज्य गोवर्धन पर्वत की हम लोग परिक्रमा करते हैं। और महीनाएं करूँ देश विदेश में तो लोग वहाँ परिक्रमा करवे आमते हैं, लोग पुण्य कमावते हैं। तो मैंने कछु कहवे कोशिश करी है गिरिराज से कि ए रे गिरिराज तोहे टेरू हूँ पुकारू आज, कि ए रे गिरिराज तोहे टेरू हूँ पुकारू आज, अपनी कृपा की कोरम होए पे तू डारे दे। हे रे गिरिराज तोहे टेरू हूँ पुकारू आज, अपनी कृपा की कोरम होहु पे तू कीजियो। मेरे हृदय में श्याम श्यामा करे नित्य रास, कि मेरे हृदय में श्याम श्यामा करे नित्य रास, नैन बस बो छब मोहन भर दीजियो। गोविंद बिरह में प्राण काए निक सतनाए, ताजी दुंगो प्राण मोय सेवा में ले लीजियो। और दीजो कृष्ण भक्ति गिरिराज आयो शरण तेरी, मेरे पाप काल कूट संकर सम पीजियो।
0: कृष्ण
1: भक्ति गिरिराज आयो शरण तेरी, मेरे पाप काल कूट संकर सम कीजियो। और हमने अपने ब्रज के सखा ब्रजराज ब्रजेश भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए कही है कि आजा रे कन्हैया आजा, कि आजा रे कन्हैया आजा चले रे चराए वे धेनु, कि आजा रे कन्हैया आजा चले रे चराए वे धेनु, तेरे संग हिल मिल नाचेंगे और गावेंगे। और तू ना जो चलो तो काना बांसुरी बजावे कौन, कौन बने ग्वाल राजा कौन कु सजावेंगे। गिरिराज की तलेटी माए खेल खेले लुका छिपी, हेरेंगे तो ओए टेर टेर के बुलामेंगे। और दामा सीरी दामा बसु दामा ओ सुदामा संग, भैया बलु दाऊ जी को संग हु जो पामेंगे, भैया बलु दाऊ जी को संग हु जो पामेंगे। और हमारा देश जिन संस्कृति जिन मापदंड से महान कहो जावे, वह में हमारे देश की महिलाओं को सबसे बड़ा योगदान है। कि भारत है पुण्य धाम, जग में है दिव्य नाम, शक्त की रह हो एहसान नारियों के बल पे। कि भारत है पुण्य धाम, जग में है दिव्य नाम, भक्त की रह हो एहसान नारियों के बल पे। कि आन बान स्वाभिमान देश को बढ़ायो सदा, है तिरंगो ऊंची शान नारियों के बल पे। तो मांग को सिंदूर यहाँ सदा दीप्तमान रहो, कि मांग को सिंदूर यहाँ

0: बड़ा दीप्त मान रहे हो, सूरता की पहचान नारियों के बल पे, और नारियों को पूजते हैं देवता समान सभी, भारत को कीर्ति गान नारियों के बल
1: बहुत बढ़िया,
0: पे,
1: बहुत
0: कि
1: बढ़िया,
0: नारियों
1: बहुत
0: को
1: बढ़िया,
0: पूजते हैं देवता समान
1: जिंदाबाद।
0: सभी, भारत को कीर्ति गान नारियों के बल पे। और अब एक लोक धुन में एक गीत प्रस्तुत कर रहे
1: स्वागत है,
0: हूँ,
1: सब आनंद आवे वो।
0: यानी मेरी भारती या मेरी भारत माता सपने में मेरे में आई, तो बाने कछु कहवे की मोदे कछु आदेश करो, वो आदेश मैं गीत के माध्यम से आपके सामने निवेदन कर रहा
1: स्वागत
0: हूँ।
1: है, स्वागत है।
0: मेरे सपने में आए के रात, मेरे सपने में आए के रात, कह रही महतारी, मेरे सपने में आए के रात, क्या कह रही है,
1: क्या कर रही है?
0: अब ला

0: मेरे सपने में आए के रात, कह रही मैं तारी। गंगा जमुना और सरस्वती कहूँ ऐसो देश, यानी मेरे भारत देश पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर देश है। और ब्रह्मांड में के लिए मैंने एक अखिलेश शब्द प्रयोग करो बाबू, अखिलेश का मतलब ब्रह्मांड से है मेरा, कि गंगा जमुना और सरस्वती कहूँ ऐसो देश, अनेकता में बसे एकता, जन जन में अखिलेश, बनो रे एक परिवारी।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।

0: चारी। और का कह रही
1: और क्या कह रही है?
0: कि मत बांटो तुम घर आंगन है और न बांटो खेती, अंग अंग जब टूटेगो तो सुबिरन काया हु रोती, छोड़ो रे ऐसी हठदारी, अब लाओ रे नयो प्रभात, गाओ रे मंगल चारी। प्यारे वीर शहीदन ने मोते ऐसी शिक्षा पाई, प्यारे वीर शहीदन ने मोते ऐसी शिक्षा पाई, चोट एक पे आई है तो दूजे ने छाती खोली अड़ाई, लाओ रे ऐसी
1: बहुत बढ़िया,
0: आचारी,
1: बहुत बढ़िया।
0: मेरे सपने में आए के रात कह रही महतारी, अब लाओ रे नयो प्रभात, कि मह के रहो आंगन कछु ऐसो ज्यो केसर की बगिया, हिमगिर जैसो अटल खड़ो है पकड़ हाथ में लठिया, करो सब रखवारी, मेरे सपने में आए के रात कह रही महतारी, एक एक बन ग्यारह जावे करवे सो मनमान, एक एक बन ग्यारह जावे करवे सो मनमान, ओ भावर बारो परन ने वेया खेत और खलियान, सुनो रे सब नर
1: बहुत बढ़िया,
0: नारी,
1: बहुत बढ़िया।
0: मेरे सपने

0: बहुत बढ़िया,
1: सारी।
0: बहुत बढ़िया।
1: और यह ब्रज काव्य गोष्ठी को आज हम यही विराम दे रहे हैं, यह में भाग ले रहे आदरणीय श्रीमती मंजू साक्या जी, आदरणीय भाई के अस्तानी जी और मैं स्वयं सोनलाल शीतल। तो हमारी कवि गोष्ठी यही विराम लेती है। जय श्री राधे।
2: बड़ी ही प्यारी कवि गोष्ठी अभी आपने सुनी।
3: अब यही के संग ही हमारा आज का ब्रजमादरी कार्यक्रम यही संपन्न हो गए है। भूको यानी के वंदना को
2: और मोको यानी वंदना जौहरी को जाए वे की अनुमति देओ।
3: नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
2: विवेक कुमार तोमर।
4: अभी हमारी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोताओं का प्रिय कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: किया था वादा तो आ गए हम, प्रस्तुत है एपिसोड 2 और आइए चलते हैं आज के सफर रेडियो किड्स पर। शुरुआत करते हैं रोमांचक मनोरंजन की।
1: मैं वंश दलाल और मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त।
2: मैं काशवी अहूजा।
0: मैं आशनापुरी।
3: मैं शिवांश राय।
4: मैं रिद्या शाह।
5: मैं सौम्या सिंह।
6: मैं आराध्या शर्मा।
7: मैं निविता छेत्री।
8: मेरा नाम तुषार अत्री है।
9: मैं लक्षिता शर्मा।
10: मैं अनाया जैन।
11: मैं सौम्या।
12: मेरा नाम काविड शर्मा है।
13: मेरा नाम अयान जैन है।
14: मेरा नाम चिराग गुप्ता है।
15: मेरा नाम आर्यन कुमार है।
16: मेरा नाम अतिक्ष राजपूत है।
17: मेरा नाम खुशी शर्मा है।
18: मेरा नाम अव्युक्त अग्रवाल है।
19: मेरा नाम अंश पाल है।
2: आज हम आपको बताएंगे उस महान बल की कहानी जिसका नाम हम गर्व से अपने स्कूल के साथ जोड़ते हैं।
0: रिद्या, क्या तुम्हें पता है कि जिसे आज हम CRPF कहते हैं उसका जन्म आजादी से पहले ही हो गया था। 27 जुलाई 1939 को इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में निमंच में बनाया गया था।
15: सही कहा नव्यता। आजादी के बाद हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया, यानी इस फोर्स की नींव में ही एकता और अनुशासन का पत्थर लगा है।
0: दोस्तों, एक और अमेजिंग फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली ऑल वुमेन पैरामेडिकल बटालियन, महिला बटालियन भी CRPF ने ही बनाई थी। 1986 में इसकी शुरुआत हुई और आज हमारी महिला अधिकारी पूरी दुनिया में शांति और संदेश दे रही हैं।
5: सिर्फ इतना ही नहीं, जब 2001 में हमारी संसद पर हमला हुआ था तब CRPF की महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी जी ने अपनी जान पर खेलकर आतंकियों को रोका था। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया।
4: वाकई सौम्या, हम ऐसे वीर जवानों की छत्र छाया में शिक्षा पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। चाहे वो लद्दाख की कड़ाके की ठंड हो या जंगलों की गर्मी, CRPF जवान हमेशा तेज यशस्वी के मंत्र के साथ खड़े हैं।
0: बातें तो बहुत सारी हो गई, अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जिसे प्रस्तुत किया है हमारे स्कूल के CRPF मेलोडियस कोर ग्रुप ने।

0: योगा कर्मशु कौशलम। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कर्मों में निपुणता होना, चाहे होमवर्क हो, स्पीच हो, स्पोर्ट्स हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मस्ती। काम का साइज नहीं, काम की क्वालिटी मैटर करती है, यही हमारा मोटो है। हमें सिखाता है कंसिस्टेंसी डेली हैबिट से बनती है। क्यों अनाया?
1: हाँ, ऐसे ही हम CRPF स्कूल के छात्र ना ही केवल शौर्य और साहस से भरे हैं, बल्कि हम शौर्य और साहस को जगाना भी जानते हैं। तो अब हमारे अंदर के राम, हमारे अंदर के पुरुषार्थ को जगाने के लिए आ रहे हैं वंश।
2: सादर अभिवादन, मैं वंश दलाल। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी रचना लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो केवल शब्द नहीं बल्कि हर भारतीय की सोई हुई चेतना को झकझोर देने वाला शंखनाद है। आदरणीय आशुतोष राणा जी की लेखनी से निकली यह कविता हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति और संकल्प छिपा है। तो आइए इस वीर रस की धारा में डूबते हैं। हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही, रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो, बलिदानों के वज दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कण कण पहने है वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे, अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर, जागो रक्त के भक्त लाडलो, जागो सिर के सौदागर, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडो की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शीश न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे, परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, छोटी वाला चाणक जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, और सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी ना जाना, जागे पद्मनी का जौहर जागे केसरिया बाना, देशभक्त का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे वो हल्दी घाटी का राणा, दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून साहजी का ताजा, मरने की हट्ठाना करते विकट मराठों के राजा, छत्रसाल बुंदेला जागे पंजाबी कृपाण जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे, कलवा है का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे, जगे भगत सिंह की फांसी और राजगुरु के प्राण जगे, और जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई, कौन बापू, और जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता वो फौजे 7 समुंदर पार गई, मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लुट्टी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांध कर 7 भावर घूम गया, उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे, इस भारत की जगे, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, अरे इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा, मैं हर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ।

0: बताओ सौम्या, तुम क्या बताना चाहती हो?
1: मैं सौम्या और मेरी मित्र सौम्या सिंह फ्रॉम CRPF पब्लिक स्कूल आपको आज एक सफर पर लेके जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया।
2: बिल्कुल सही कहा। आज बात हो रही है एशिया के ज्योतिपुंज यानी महात्मा बुद्ध की।
1: दोस्तों कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजकुमार जिसके पास दुनिया के हर सुख सुविधा, महल, नौकर चाकर और सुख ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी उसके मन में एक ही सवाल, दुनिया में दुख क्यों है?
2: और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सिद्धार्थ ने आधी रात को अपने परिवार और राजपाट को छोड़ दिया। सालों की तपस्या के बाद बिहार के गया में एक वट के पेड़ के नीचे उन्हें बोध प्राप्त हुआ और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए।
1: बुद्ध ने हमें क्या सिखाया? उन्होंने कहा कि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से जीता जा सकता है। उन्होंने मध्यम मार्ग की बात

0: की, ना ही बहुत अधिक विलासिता और ना ही बहुत अधिक क्रूरता।
1: आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में बुद्ध की शिक्षाएं और भी जरूरी हो गई हैं। उन्होंने कहा था, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर हमारा मन शांत हो तो हमारे चारों ओर की दुनिया भी शांत होगी।
0: दोस्तों, हम CRPF स्कूल के छात्र होने के नाते यह समझते हैं कि अनुशासन और शक्ति जरूरी है, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि उस शक्ति का उपयोग शांति और करुणा के लिए होना चाहिए।
2: अब समय है एक शांतिमय और मन को सुकून देने वाली प्रस्तुति का। अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं CRPF पब्लिक स्कूल रोहिणी क्वायर, मधुर स्वरों में बुद्धम शरणम गच्छामि गीत के साथ।

0: दोस्तों, जब मंजिल बड़ी हो और साथ देने वाला कोई ना मिले तो अक्सर हिम्मत जवाब दे जाती है। ऐसे में याद आता है रविंद्रनाथ जी का, ज्योति तुर दाक्षिणी क्यों नाशे तो बे अकला चलो रे।
1: क्या आप जानते हैं यह गीत महात्मा गांधी के दिल के सबसे करीब था। साल 1947 के मुश्किल दौर में जब चारों ओर अंधेरा था, तब गांधी जी ने इस गीत को अपना सहारा बनाया और अकेले चलने का साहस दिखाया।
2: दिलचस्प बात यह है कि इस गीत का संदेश आज भी उतना ही ताजा है, चाहे वो AR रहमान का म्यूजिक हो या आज के स्टार्टअप का संघर्ष। यह गीत हमें सिखाता है कि अगर आपका रास्ता सही हो तो भीड़ का इंतजार मत कीजिए। तो अगर आज आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि इतिहास अकेले चलने वाले ही रचते हैं। मैं हूँ रिद्या, चलते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि जोश हाई है।
3: ऐसे ही 8 जून 1936 को आकाशवाणी की शुरुआत हुई और फिर कोई भी सफर अकेला नहीं रहा।
4: अब एक और गीत सुनते हैं, एकला चालो, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं तुषार अत्री, खुशी शर्मा।

मैं वंश दलाल अब बात करूंगा भारत की आजादी पर। भारत की आजादी के लिए नरम दल के क्रांतिकारियों ने जहां अनशन सत्याग्रह

भगत सिंह और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों का चेहरा आ जाता है और याद आता है ये गजल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमें लगता है कि ये शब्द महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखे थे, क्योंकि उन्होंने ही इसे फांसी के तख्त तक मशहूर किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका एक ऐसा सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं? असल में ये गजल राम प्रसाद बिस्मिल ने नहीं लिखी थी। जी हाँ, आपने सही सुना, इस कालजयी गजल को साल 1921 में पटना के एक शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। उनका असली नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। उन्होंने ये गजल उस वक्त के असहयोग आंदोलन के जोश में लिखी थी, जब राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे काकोरी कांड के बाद जेल के सलाखों के पीछे और अदालत जाते समय गाया तो ये देश की धड़कन बन गई। अजीब इत्तेफाक देखिए, लिखने वाले का नाम भी बिस्मिल और अमर करने वाले का नाम भी बिस्मिल। तो अगली बार जब आप ये लाइन गुनगुनाएं तो पटना के उस शायर और वतन के उन मतवालों को जरूर याद कीजिएगा जिन्होंने शब्द को शोला बना दिया। बने रहिए हमारे साथ। अब ये खूबसूरत गजल लेकर आ रहे हैं तुषार अत्री, आर्यन कुमार, काविर शर्मा और अतिक्ष राजपूत।

कार्यक्रम रेडियो किड्स। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब हम आपको जानकारी दे दें हमारी आज की इस सभा में और शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में।

श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में यानी 4 बजे आप सुनेंगे स्वरांजलि कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे लोक संगीत कार्यक्रम के कुछ संपादित अंश।

शाम 5:10 पर समय रहेगा लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंजनी का। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। 6:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम चहल पहल। 6:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम संसार का, जिसमें आज आप सुनेंगे पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे साथ ही चर्चा राष्ट्रमंडल दिवस अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। 7:05 पर शाम कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे कृषि पत्रोत्तर कार्यक्रम लोक संगीत के साथ योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और लोकगीत। शाम 7:30 पर आनंद लीजिएगा गजल और कव्वाली का। रात्रि 8:00 होगी कवि गोष्ठी। 8:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। रात्रि 9:30 पर समय रहेगा रेडियो स्कोप नेशनल साइंस मैगजीन का। रात्रि 10:00 अखिल भारतीय रविवार स्तरीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा। रात्रि 11:10 पर समय रहेगा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारी केंद्र से आज की इस सभा में और रात्रि में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वरांजलि।

0: बस मेरे लिए।
1: 听众朋友们，请继续收听。

0: 途的里广播电台，这是普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना
2: जी हाँ नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में, एक ऐसा मंच जहां खेल के मैदान की धड़कन सीधे आपके दिल तक पहुंचती है। मैं हूं हेमंत और मेरे साथ हैं सिमरन सारवान। हर दिन की तरह आज भी खेल दुनिया की कुछ ऐसी कहानियां लेकर आए हैं जो सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं बताती बल्कि जज्बात जगाती हैं। देश के गली मोहल्लों में खेले जाने वाले खेल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों के मुकाबलों तक, चाहे वो क्रिकेट के मैदान में उछलती हुई गेंद हो या ओलंपिक के ट्रैक पर पदकों की वो सुनहरी चमक, हम हर उस पल को आपके करीब लाते हैं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं।
3: बिल्कुल हेमंत, ऐसे ही खेल हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीएल की, साथ ही साथ हम बात करेंगे डायमंड लीग की भी, साथ ही साथ नेशनल सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप को भी हम नहीं छोड़ेंगे, संडे ऑन साइकिल पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल में कल खेले गए मैच की, तो सुनिए ये रिपोर्ट।
4: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को उनके ही घरेलू मैदान पर 7 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पंजाब किंग्स ने न सिर्फ अपनी लगातार 6 मैचों की हार का सिलसिला तोड़ा बल्कि प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को भी जीवित रखा है। ये जीत पंजाब के लिए बेहद जरूरी थी क्योंकि एक और हार का मतलब था कि टूर्नामेंट से पूरी तरह से बाहर हो जाना। मैच की शुरुआत में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 196 रनों का एक मजबूत स्कोर बनाया। टीम के लिए सबसे ज्यादा रन जॉस इंग्लिश ने बनाए। उन्होंने मैदान की हर तरफ शानदार शॉट खेलते हुए 72 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। मध्यक्रम में युवा बल्लेबाज आयुष बदोनी ने भी उनका अच्छा साथ दिया और 43 रनों की एक तेज पारी खेली। लखनऊ के गेंदबाजों की फॉर्म और घरेलू मैदान के दबाव को देखते हुए लक्ष्य पंजाब के लिए किसी भी लिहाज से आसान नहीं होने वाला था। 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद खराब और निराशाजनक रही। पारी की पहली गेंद पर पंजाब ने अपना पहला विकेट गवा दिया। इसके बाद पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने बहुत ही संयम और सूझबूझ का परिचय दिया और मैच को एक अलग दिशा में ही मोड़ दिया। पंजाब की पारी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी कप्तान श्रेयस अय्यर और युवा बल्लेबाज प्रभ सिमरन सिंह ने उठाई। प्रभ सिमरन सिंह ने बिना किसी दबाव के स्वाभाविक खेल दिखाया और तेजी से रन बनाए। उन्होंने 39 गेंदों का सामना करते हुए 69 रन

0: बनाए, जिससे आवश्यक रन रेट को नियंत्रण रखने में टीम को काफी मदद मिली। इस मैच के मुख्य खिलाड़ी कप्तान श्रेयस अय्यर रहे, उन्होंने 51 गेंदों पर नाबाद 101 रन बनाए। खेल के आंकड़े बताते हैं कि ये उनके आईपीएल करियर का पहला शतक था। उन्होंने 18वें ओवर में छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और इसी के साथ टीम को जीत भी दिलाई।
1: जीत के बाद पंजाब किंग्स के असिस्टेंट कोच ब्रैड हेडन ने कहा,
2: I think if you have a look through the whole game, I think we did well to get wickets to start. It's important to get wickets up front in that power play. I thought our bowlers did a really good job there. Asmat did a really good job. And Prab and the captain with the bat were outstanding. Prab took a smart stumping. As an ex-keeper, I was proud of him there, but he set up the innings beautifully. And the captain, in these matches, you want your best players to stand up. These are the matches you want to play where everything's on the line. And the captain, for the last couple of days, he had that look in his eye. He wanted to be the one that made the difference and turned things around and gave us an opportunity to play in the finals. And you go a long way to see a better innings and a better captain's knock than that.
0: ये जीत पंजाब के लिए बहुत जरूरी थी। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स की स्थिति अंक तालिका में काफी बेहतर हो गई है। टीम अब 15 अंकों के साथ सीधे चौथे स्थान पर पहुंच गई है। आईपीएल 2026 के इस सीजन में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर हैदराबाद की टीमें पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। इन तीनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और अंक तालिका में शीर्ष पर तीन स्थानों पर अपनी जगह पक्की कर ली है। अब प्लेऑफ में जाने के लिए सिर्फ एक स्थान बचा है और इसके लिए कई टीमों के बीच करीबी मुकाबला चल रहा है। बिल्कुल सिमरन, अब प्लेऑफ की जो अभी जो मुकाबले चल रहे हैं, प्लेऑफ के लिए फाइट चल रही है, जहां पर मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल के बीच में अब मुकाबला चल रहा है और शाम का मुकाबला केकेआर बनाम दिल्ली कैपिटल के बीच में खेला जाएगा। आज का जो मुकाबला जो अब तक हुआ है, जिसमें 20 ओवर के खेल में 205 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर राजस्थान रॉयल ने, टॉस जीता था मुंबई इंडियंस ने और बैटिंग के लिए इन्वाइट किया राजस्थान रॉयल को, जिसमें शानदार बल्लेबाजी ध्रुव जुरैल की और यहां पर दशुन सनाका की बल्लेबाजी काफी शानदार रही। और अब देखना है कि या ये राजस्थान रॉयल इस मुकाबले को जीत जाता है तो राजस्थान सीधे सीधे क्वालिफाई कर जाएगा प्लेऑफ के लिए, अदरवाइज होगा ये कि राजस्थान इस मैच को हारता है और शाम के मुकाबले को केकेआर जीतता है तो केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच में रहेगी, पॉइंट टेबल बराबर हो जाएंगे, साथ में नेट रन रेट की वजह से दोनों में से कौन सी टीम जाएगी ये देखने वाली बात है। और अब क्रिकेट की खबरों से आगे चलते हैं, बात करते हैं डायमंड लीग की, जहां पर सिमरन दे रही है जानकारी।
3: चीन के शियामेन में आयोजित 2026 डायमंड लीग में दुनिया के स्टार एथलीट्स ने शानदार प्रदर्शन किया और कई यादगार नतीजे सामने आए। सबसे ज्यादा चर्चा महिलाओं की 100 मीटर हर्डल्स में अमेरिका की मसाई रसेल की रही। रसेल ने 12.14 सेकंड का समय निकालते हुए डायमंड लीग रिकॉर्ड बनाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गई। नाइजीरिया की टोबी अमुसान दूसरे स्थान पर रही। वहीं चीन की 18 वर्षीय यान झीयी ने महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में 71.74 मीटर का थ्रो करके नया अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इतिहास रच दिया। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में केन्या के फर्डिनेंड ओमान्याला ने 9.94 सेकंड के साथ जीत हासिल की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के गिफ्ट लेओट लेला को पीछे छोड़ दिया। वहीं पुरुषों की 400 मीटर हर्डल्स में ब्राजील की एलिसन डान सेंटोस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नॉर्वे के कासर्टन वारहोम को हराया। महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में जमैका की शेरिका जैक्सन ने जीत दर्ज की, जबकि पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स में अमेरिका के जमाल ब्रिट पहले स्थान पर रहे। मिडिल डिस्टेंस स्पर्धाओं में भी शानदार मुकाबले दिखने को मिले। ऑस्ट्रेलिया की एबी कैल्डवेल ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ जीतकर अपना पहला डायमंड लीग खिताब हासिल किया। वहीं पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में अडीसु यहुने ने जीत दर्ज की। फील्ड इवेंट्स में जमैका के राजिंद्रा कैंपबेल ने पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा जीती, जबकि अमेरिका के स्टार थ्रोवर रियान क्राउजर चोट से वापसी करते हुए तीसरे स्थान पर रहे। तो शियामेन डायमंड लीग 2026 में रिकॉर्ड, रोमांच और विश्व स्तरीय प्रदर्शन का शानदार समागम देखने को मिला, जिसने आने वाले बड़े एथलेटिक सीजन के लिए उत्साह और दिया है। जी उत्साह बढ़ा दिया और साथ ही साथ अब एक और उत्साह वाले चैंपियनशिप की बात करते हैं, जो कि 29वें नेशनल सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि रांची में चल रहा है। तो आइए
1: करेंगे 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन के कल खेले गए मुकाबलों की, जहां कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन के साथ नए रिकॉर्ड बनाए। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में रिलायंस के गुरिंदर वीर ने 10.09 सेकंड का समय निकालते हुए नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। उड़ीसा के अनिमेष कुजूर दूसरे और रिलायंस के प्रणव प्रमोद तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 400 मीटर में तमिलनाडु के विशाल टीके ने 44.98 सेकंड के साथ नया मीट रिकॉर्ड बनाया। वहीं डेकैथलॉन में

0: लायंस के तेजस्विनी शंकर 8057 अंकों के साथ नया नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया। महिलाओं के 100 मीटर दौड़ में महाराष्ट्र की सुदेशना एच ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि 400 मीटर में तमिलनाडु की विंध्या रामराज पहले स्थान पर रहीं। 1500 मीटर JSW की पूजा ने शानदार जीत दर्ज की। महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में हरियाणा की शिल्पा रानी ने 56.46 मीटर की थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया, जबकि अनुभवी अन्नू रानी दूसरे स्थान पर रहीं। वहीं गोला फेंक में रिलायंस की कृष्णा जयशंकर ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं पोल वॉल्ट में तमिलनाडु की बारनिका एलांगोवन ने 4.10 मीटर की छलांग लगाकर नया मीट रिकॉर्ड बनाया। ट्रिपल जंप पंजाब की निहारिका वशिष्ठ ने 13.64 मीटर की छलांग के साथ अपना ही मीट रिकॉर्ड तोड़ दिया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो ये थे 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन के कल के नतीजे, जहां खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ नए कई रिकॉर्ड बने। अब बात करते हैं आज के परिणाम की, जहां रवीना ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का क्वालिफिकेशन मार्क पार किया। हरियाणा की रवीना फेडरेशन कप 2026 में महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में 44:29 का लाइफ टाइम बेस्ट टाइम निकालकर गोल्ड मेडल जीता। इस परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड 44:44 पार कर लिया है। इस बीच नेशनल रिकॉर्ड होल्डर प्रियंका गोस्वामी 45:57 के साथ चौथे स्थान पर रही। हालांकि प्रियंका ने पिछले हफ्ते बर्लिन में ओपन BBM स्ट्रॉसेन गेन में 43:49 का टाइम निकालकर क्वालिफिकेशन का मार्क पहले ही हासिल कर लिया था। अब आखिरी फैसला सिलेक्शन कमेटी पर है कि प्रियंका को उनके पिछले क्वालिफाइंग परफॉर्मेंस के आधार पर चुना जाएगा या नहीं। अब बात करते हैं चेस की, और चेस पर जानकारी दे रही हैं सिमरन।
1: सुपर चेस क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट 2026 में जर्मनी के युवा ग्रैंड मास्टर विंसेंट कीमर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है। अंतिम राउंड में कीमर ने नीदरलैंड के जॉर्डन वैन फॉरेस्ट को हराकर टूर्नामेंट जीता। इस जीत के साथ कीमर ने कुल 6 अंक हासिल किए। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 4 मुकाबले जीते, 4 ड्रॉ खेले और सिर्फ 1 मैच गंवाया। उनकी एकमात्र हार उज्बेकिस्तान के जोआखिर सिंदारोव के खिलाफ हुई थी। खिताब जीतने के साथ ही उन्होंने ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स के लिए भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। वहीं भारत के स्टार ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड के अनीश गिरी के खिलाफ ड्रॉ खेला। शुरुआती चालों के बाद मुकाबला पूरी तरह संतुलित नजर आया और लगातार मोहरों की अदला बदली के बाद खेल 31 चालों में ड्रॉ पर समाप्त हुआ। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर ने कई अनुभवी खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर देकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। अगर फाइनल स्टैंडिंग्स की बात करें तो पहले स्थान पर विंसेंट कीमर रहे, दूसरे स्थान पर अमेरिका के फाबियानो कैरुआना रहे, तीसरे स्थान पर जोआखिर सिंदारोव रहे और भारत के आर प्रज्ञानंदा ने 5वें स्थान पर समाप्त किया। तो कुल मिलाकर सुपर चेस क्लासिक 2026 में विंसेंट कीमर ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और भारत के आर प्रज्ञानंदा के अच्छे प्रदर्शन ने शतरंज प्रेमियों का दिल जीत लिया।
0: ये तो बात रही सुपर चेस क्लासिक रोमानिया में जो हो रहा है उस पर। अब बात करते हैं फिटनेस से, फिटनेस पर इंस्पायर संडे ऑन साइकिल दिल्ली और अहमदाबाद एडिशन, जिस पर रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाहिद आजमी।
2: संडे ऑन साइकिल की 75th एडिशन है और आज कॉमनवेल्थ डे भी है और 2030 में गुजरात कॉमनवेल्थ होस्ट करने जा रहा है। एक्सिट में कॉमनवेल्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए 75th संडे ऑन साइकिल की एडिशन को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं।
3: यह माननीय केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जो बता रहे हैं आज का दिन क्यों खास है। जी हां, आज का दिन अहमदाबाद के लिए बेहद खास रहा। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हासिल करने वाले इस ऐतिहासिक शहर में 75वें संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के साथ राष्ट्रमंडल दिवस भी उत्साह पूर्वक मनाया गया, जिनमें केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय हर्ष संघवी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर मांडविया ने लोगों को नियमित रूप से साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा,
2: साइकिल का उपयोग करने से 3 फायदा है। मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुका हूँ। दुनिया की बेस्ट एक्सरसाइज साइकिलिंग है। साइकिलिंग हमें संपूर्ण फिट रखने के लिए उपयोगी है और इसलिए फिट रहने के लिए हम साइकिलिंग करें। साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी होता है और साइकिलिंग से फ्यूल की बचत भी होती है। एक ही काम करने से 3 फायदा हो और हम गुजराती हो उसको एनकेस ना करें ऐसा संभव नहीं है और इसलिए संडे ऑन साइकिल तो प्रतीकात्मक है लेकिन एक संदेश है कि हम सब देश के नागरिक साइकिलिंग को अपनाएं, फिट रहे और विकसित भारत के सपने के साथ जुड़े।

0: इसी तरह राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 75वें संडे ऑन साइकिल में बड़ी संख्या में साइकिलिस्टों ने भाग लिया, जहां साइकिलिंग के अतिरिक्त कई खेलों की गतिविधियां भी नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद और देश की दो जानी मानी पहलवान पूजा ढांडा और पूजा सिहाग बतौर खास मौजूद रही। इस मौके पर श्री आशीष सूद ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा,
1: साइकिल अभूतपूर्व कार्यक्रम है। बचपन में साइकिल आजादी का प्रतीक थी, साइकिल मिल जाए तो आजाद हो जाओ, कहीं जाओ कहीं बैठो। आज साइकिल देशभक्ति का प्रतीक है। इस ऊर्जा संरक्षण की अभियान के दौर में हम सबको साइकिल अपनाना चाहिए। भारत सरकार के खेल मंत्रालय का, प्रधानमंत्री जी का ये फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साइकिल्स ऑन संडे एक अभूतपूर्व पहल है। धीरे धीरे इसको दिल्ली में भी दूर तक हम पॉपुलर करने के लिए अपना प्रयास शुरू किया है। हमने हमारे स्कूल हमारे नौजवान साइकिल ऑन संडे में पार्टिसिपेट करें, इसके लिए हम प्रयास।
0: भारत को मेजबानी मिली है 2030 के कॉमनवेल्थ गेम की।
1: भारत को मेजबानी 2030 की मिली है। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस कंपटीशन को दिल्ली सरकार होस्ट कर रही है, हम अपने यहाँ उसका कार्यक्रम करने वाले हैं। इसलिए ये एक बहुत अभूतपूर्व पहल है हमारी, और इसके माध्यम से ये हमारे देश के खेल के इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स का होना हमारे खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे खिलाड़ियों को, हमारी प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर देगा।
0: अब सुनते हैं 2018 बुडापेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता पूजा ढांडा को, जिनका कहना है 2010 में जब भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी तब मैं इन खेलों में खेलने का सपना देख रही थी।
2: बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया माहौल है और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है अब फिट होगा इंडिया तो हिट भी करेगा इंडिया।
0: तो यहाँ जिस तरह फिटनेस देख रहे हैं लोग, जिस तरह सुबह सुबह आते हैं, उसको देख के क्या लग रहा है?
2: अभी लग रहा है मुझे कि लोग हमारे देश में जो है वो पहले की तरह भी ज्यादा जागरूक होते जा रहे हैं, क्योंकि बीच में एक फेज ऐसा था जब लोग थोड़ा फिटनेस को लेकर डाउन हो गए थे, लेकिन कोविड के बाद से लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो दिखाना शुरू किया। साथ में जब ऐसी फिट रैलियाज होती है, साइकिल रैली होती है, तो उसमें लोगों को एक चांस मिल जाता है कि आपको एक जगह एक टारगेट मिल जाता है कि हम उस फिट रैली में जाएं, साइकिल रैली में जाएं और वहां अपना फिटनेस बढ़ाएं। तो ये एक रैली जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है फिटनेस का, तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करना चाहूंगी।
0: आपने वर्ल्ड में जीता मेडल, कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीता, तमाम तरह के मेडल, कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी फिर भारत को मिली, उसको कैसे देखो?

ਭੰਗੜਾ Shaking your boat.

0: ये कृष्ण सुदामा के किस्से की रागनी थी सुनील भाई। जब सुदामा कृष्ण जी से मिलने गए थे, जब उनकी मुलाकात होती है उस मौके की रागनी थी। और अब अगली जो फरमाइश है वो लोकगीत सुनने के लिए है, सुनीता पांचाल की आवाज़ में।
1: और इस क्रम में जो पहली फरमाइश हमें मिली है वो खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली है शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, गोयल सिक्का और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डेकेस्ट्रो, रोजी डेकेस्ट्रो, पर्ल डेकेस्ट्रो, विलिस डेकेस्ट्रो।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है जटवाड़ा गाजियाबाद से शिशपाल अकेला के, और शहर भागा पुराना पंजाब से सरदार परमजीत सिंह और गगनदीप कौर उनके समस्त परिवार की तरफ।
0: MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या और इनका परिवार।
1: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा।
0: गांव लोहडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, सुधीर नूतन और भुवनेश्वरी देवी।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुण वर्मा की।
0: पटेल नगर मलोट कैंप से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और इनका परिवार।
1: सुनीता पांचाल को ही सुनना चाहते हैं कराला नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी।
0: रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू और इनका परिवार।
1: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: गांव हंडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा।
1: और अगली फरमाइश जो हमें मिली है वो करनाल से मिली है ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, रामपल शर्मा और उनके समस्त परिवार की तरफ।
0: दादा बाबू रोड गिरढ़ी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमन नवाज, हसन नवाज और इनका परिवार।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार और उनके समस्त परिवार की तरफ।
0: गाँव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी और इनका परिवार।
1: सुनीता पांचाल को ही सुनना चाहते हैं गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी।
0: ढाणा नरसाना भिवानी से जगदीश

0: सेंडालिया, राजवीर चिंडालिया, सतीश चिंडालिया और इनका परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाई समय मिली है शादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ की।
0: सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र बिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका। तो सुन लें इन सबकी फरमाइश पर सुनीता पांचाल की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: सुनीता पांचाल से ये लोकगीत भाइयों ने अपनी पसंद पर सुना, और निरंकार भाई कुछ भाइयों की फरमाइश और रह गई जो अगले कार्यक्रम कृषि जगत में शामिल करेंगे।
1: बिल्कुल, और जो घड़ी है वो इशारा कर रही है कि कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, तो हम अपने साथियों से लेते हैं इजाज़त। आप सभी को राम राम,
0: राम
1: और
0: राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पारासर और संयोजक शिव नंदन लाल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अभी आपने कार्यक्रम ग्राम संसार का आनंद लिया और अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि श्री डोभाल और श्री रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा का दूसरा

पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: निरंकर भाई, देखिए सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती रही हैं और अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। और इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जो मुख्य उद्देश्य है किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता यानी पोषक तत्वों की स्थिति का स्टिक वितरण देना, ताकि वे वैज्ञानिक तरीके से सही खाद और उर्वरक का उपयोग करके अपनी पैदावार बढ़ा सकें। और यह कार्ड प्रत्येक किसान को हर 3 साल में एक बार जारी किया जाता है, ताकि मिट्टी में होने वाले बदलावों को ट्रैक किया जा सके।
1: बिल्कुल, और जब हमें पोषक तत्वों की जानकारी हो जाती है तो हम उसी हिसाब से खाद और उर्वरक देते हैं जितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादा उर्वरक देने में न केवल हमारी जेब पर भारी पड़ता है बल्कि हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है और मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ जाता है।
0: और साथ ही देखिए भाई, उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। असंतुलित खाद के उपयोग से होने वाले नुकसान से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बची रहती है और फसल की उपज में भी सुधार होता है, यानी डबल फायदा निरंकर भाई।
1: बिल्कुल, हमें मिट्टी की जांच करानी चाहिए, अपना कार्ड बनवा के रखना चाहिए। जिस तरह से आप अपनी बीमारी का हिसाब किताब रखते हैं अगर बीमारी होती है, लेकिन जब आप खेती है, खेती के जितने भी आपके खेत हैं अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग बांट करके आप कार्ड तैयार रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि हमारे इस जगह पे किसी चीज़ की कमी है, क्योंकि फसलों को भी आप बदल बदल के बोते हैं। कुछ एरिया ऐसा हो सकता है जिसमें किसी खास तत्व की कमी हो, अगर खास तत्व की पूर्ति आप नहीं करेंगे तो फसलों का उत्पादन भी उससे प्रभावित होगा।
0: और देखिए निरंकार भाई ने जो कार्ड की बात की, इसके आवेदन के लिए आप किसान भाई राज्य सरकार के कृषि विभाग या नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण और अपने खेत की जाँच रिपोर्ट देखने के लिए आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और जो जून का महीना आने वाला है आगे, उसमें बहुत गर्मी पड़ने वाली है, अभी भी गर्मी पड़ रही है। हमारे किसान भाई अभी से तैयारी करें कुछ खास चीज़ों की, जैसे कि इस तेज़ गर्मी में एक और फ़ायदा कर सकते हैं। इस समय आप जुताई करके खेत को खुला छोड़ देंगे तो सौरीकरण करके जो हानिकारक बैक्टीरिया है या खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। उनको नष्ट करने के लिए आप धूप में तेज़ करके जुताई को छोड़ देते हैं अपने खेत में, उसके बाद जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो मारे जाते हैं और साथ साथ जितने भी सूखे वीड हैं वीड सूख करके नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आपको जो खरीफ की फसल की तैयारी है वो करनी है, जिसमें आपको बीज का चुनाव अभी से कर लेना है। आप धान की बिजाई करना चाहते हैं, ज्वार बाजरा चारे के लिए आप उगाना चाहते हैं, या सब्जियों की बात करें तो भिंडी है, टमाटर है, बैंगन है, उनके जो फसलों के बीज हैं उनका इंतज़ाम आपको अभी से करना है। और एक और बात है, बागवानी अगर आप कर रहे हैं तो अभी से गड्ढे आपको तैयार कर लेने चाहिए, ताकि आप बरसात आने पर नए पौधों का रोपण कर सकें।

0: बिल्कुल, देखिए भाई जुलाई के माह तक आपका खड्डे तैयार कर लेंगे, तो अगस्त में आप बागों की जो रोपाई कर सकेंगे।
1: और जो हमारे किसान भाई पशुपालक हैं उनको भी बहुत ज़रूरी बात यह है कि देखने में आता है कि जब बारिश होती है, बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा बीमारियां पशुओं में आती है, इसलिए उनका टीकाकरण पहले से ही करा लें। अब टीकाकरण पहले से करा लेंगे तो बचाव बीमारियों से हो जाएगा।
0: और देखिए भाई, सबसे बड़ी बात जो टीकाकरण के बारे में हम अपने कार्यक्रम में बताते रहते हैं हमेशा, टीकाकरण या तो बिल्कुल मुफ्त या बहुत कम पैसे में, और आजकल तो निरंकर भाई गांव-गांव में ये टीकाकरण हो सकता है, कहीं बाहर दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल, और पानी की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, कई इलाकों में जल स्तर बहुत नीचे पहुंच गया है, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जल के संरक्षण की हम कोशिश करें, जल का बचाव भी करें। अब जल का बचाव अगर हम करेंगे तो आपकी फसलों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा, और ये काम भी आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बारिश होगी तो उस पानी को बहने से अगर आप बचा लेंगे तो ज़मीन के नीचे भूमिगत जल का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे सुनील भाई, तकनीकें ऐसी अपनाएं जिससे कि पानी का समुचित हम प्रयोग कर
0: बिल्कुल
1: सकें,
0: जी,
1: दूसरे जब बारिश का पानी आता है तो उसको बचाव के तरीके अपना सकें। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम प्रकृति में, जो हमारे किसान हैं पूरी तरह प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं, तो प्रकृति में प्रबंधन करके वो इन चीज़ों से फ़ायदा ले सकते हैं।
0: बिल्कुल। देखिए भाई, खाली जल ही जीवन है ये कहने से काम नहीं चलेगा, जल की बचत जीवन के हर क्षेत्र में करनी पड़ेगी और खेती में भी करनी पड़ेगी, तभी
1: बिल्कुल,
0: जाके आगे जल उपलब्ध हो पाएगा।
1: अच्छा इसी बारे में चलिए एक रागनी भी सुन लेते हैं उपदेश के रूप में, योगेंद्र निमचाना की आवाज़ में।
0: लेकिन भाई कुछ फरमाइश भी निरंकार
1: हाँ
0: भाई आई हैं, तो फरमाइश हमारे पास आई है पुरुषोत्तम कुमार, गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से, और छत्तीसगढ़ हादसा नंबर 2 से कमलेश शाहू, जितेंद्र शाहू और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है गोविंदगढ़ माजी वाला से, राजू टुटेजा, खुशी दूरमिला टुटेजा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। और अगली फरमाइश हमें मिली है ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से, बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति और प्रहलाद और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: यह है गांव चोलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया पर ढींगिया, और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, हिंदुस्तान रेडियो मित्र के तरफ से पत्र है, विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली और इनका परिवार।
0: योगेंद्र निमचाना को ही सुनना चाहते हैं, ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुलंदखंड, उत्तर प्रदेश से, राम शरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिली है चौधरी वास हिसार से, राजू अग्रवाल, केशव और दक्ष के।
1: कुलम रोड, हरगोविंद नगर, नवान शहर शहर से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित और इनका परिवार।
0: साथ ही हमें
1: बिलासपुर,
0: फरमाइश मिली है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से, सुरेश ग्रोवर, बेबी ग्रोवर और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: जलालपुरा जिला सहारनपुर से स्वर्ण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन प्रजापति और इनका परिवार।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है पुराना तालाब डुमराव वलियावाला अंसारी से, बेगम सबनम बानो और असमा नाज अंसारी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली है जेल रोड बक्सर से, राज एस डी अंसारी, फातिमा राज और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: और ये है गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बरासा, विशाल बिरासा, विकास बिरासा, रोशनी बिरासा, सुगुन बिरासा और इनका परिवार। अनारकली बाजार जगराऊं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक और जयपाली यादव।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है कुलामा रोड पंजाब से, इसको भेजने वाले हैं सुरेंद्र संधू, अनीता संधू और उनका समस्त परिवार।
1: दतरंगी से भगवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा और इनका परिवार। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सुरेश ग्रोवर, बेबी ग्रोवर, गौरव और इनका परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है पदमपुरा राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा और समस्त परिवार की तरफ से।
1: ये है कुलाम रोड, हरबी गोविंद नगर से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, दोबारा से इनका मैसेज है। और
0: यानी दो कलाकारों को सुनना चाहते हैं ये कहने का
1: पदम
0: मतलब।
1: पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और इनका परिवार। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल और इनका परिवार।
0: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं योगेंद्र निमचाना को।

तो जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है, ये बात तो है। और ये चीज़ें हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं। और बात करें आकाशवाणी की, तो आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए हैं और इसमें बहुत सारी कोशिशें हमने की हैं आकाशवाणी की तरफ से अपने श्रोताओं तक जानकारी पहुंचाने की। और इसमें समाचार, कृषि, शिक्षा, संगीत, संस्कृति, आपदा की सूचना या फिर जन जागरूकता के काम हैं,

0: उनको जोड़ने में आकाशवाणी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और
1: बिल्कुल
0: गांव
1: निरंकर
0: से
1: भाई, आपने सही कहा। देखिए, हमारे देश में यूं कहें कि आकाशवाणी की पहुंच दुनिया में सबसे व्यापक है। जो देश की 99% से अधिक जनसंख्या सीधे तौर पर उस तक पहुंचती है, और इस वर्ष आकाशवाणी अपने ऐतिहासिक जो गौरवशाली 90 वर्ष का सफ़र पूरा कर रहा है। जून 1936 से शुरू इस यात्रा ने रेडियो को मनोरंजन और सूचना के सबसे भरोसे का माध्यम बना दिया है।
0: अब देखिए, गांव से महानगर तक, किसान से युवा तक और सीमावर्ती क्षेत्रों से जनजातीय अंचलों तक आकाशवाणी की पहुंच ने जन जन का माध्यम बनी है आकाशवाणी। और आप देखिए कि डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता, सरलता और त्वरित सूचना प्रसारण के कारण अभी भी उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है जो अपनी शुरुआत के समय में शुरुआत की गई थी।
1: और बात चाहे देखिए ग्रामीण विकास की हो या खेती की हो, रेडियो के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, युवाओं के लिए रोजगार की जानकारी, या महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, किसान भाइयों को वैज्ञानिक खेती संबंधी जानकारी देने की, नई नई तकनीक जानकारी देने की, उपकरणों की जानकारी देने की, या फिर देश में लगने वाले कृषि मेलों की जानकारी, इतना ही नहीं निरंकार भाई, कृषि आधारित कार्य, चाहे फिर वह मुर्गी पालन है, मछली पालन है या पशुपालन है, सबकी जानकारी रेडियो के माध्यम से किसान भाइयों को मिलती है। और समय के साथ साथ विज्ञान की तरक्की के साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन आया। आज किसान भाई फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से भी घर बैठे फोन द्वारा सीधे वैज्ञानिकों से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
0: और सबसे जरूरी बात है कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है हम सभी के लिए कि आपको हैंडलिंग करने में भी बहुत परेशानी नहीं है कि एक रेडियो सेट आप अपने साथ रखें, मोबाइल के अंदर भी रेडियो है, आप अपने खेत में कहीं भी आप सफ़र में हैं या रसोई में महिलाएं हैं वहीं पे उसको आराम से सुन सकते हैं। और आकाशवाणी ने हर क्षेत्र में कोशिश की है कि हम सर्वांगीण विकास हो समाज का, सभी सूचनाएँ वहाँ तक पहुँचें। तो आज भी रेडियो जिस समय जिस उद्देश्य के लिए शुरू हुई थी आज भी उसी तरह पूरी तरह से प्रासंगिक है। इतने सोशल मीडिया, इतना व्यापक क्षेत्र होने के बाद भी रेडियो का अपना पूरा महत्व अभी भी बना हुआ है।
1: बिल्कुल, और कहने का मतलब ये है कि देखिए आकाशवाणी की अगर बात करें तो 90 वर्ष का सफर सभी के लिए, फिर चाहे वह महिला है, किसान है या युवा साथी हैं, कोई भी किसी के बारे में कहे, सभी के लिए ऐतिहासिक व गौरवशाली।
0: बिल्कुल, और हम बात कर रहे थे सुनील भाई के जो खेती के काम हमें करने हैं वो आगे का जो समय है उसमें सबसे ज़रूरी है। एक तो जैसे कि हम पौध तैयार करेंगे, धान की पौध ख़ास तौर पर जो धान उगाते हैं किसान भाई, उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि बीज को उपचारित ज़रूर करें, नर्सरी के टाइम में संतुलित उर्वरक और खाद देने की ज़रूरत है। बीमारी कोई आती है तो उसका बचाव भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी नर्सरी अच्छी होगी तो आपकी फसल भी फिर आगे चल करके अच्छी होगी। जो दलहनी फसल लगाएंगे उनको हम ये सलाह देना चाहेंगे कि राइजोबियम कल्चर से उपचारित ज़रूर करें, क्योंकि जब आप राइजोबियम इस्तेमाल करेंगे तो उनकी जड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया की गांठें बनेंगी, उससे जो वातावरण से जो नाइट्रोजन लेते हैं हमारे पौधे उसको ले सकेंगे और ज़मीन के अंदर ऐड कर सकेंगे। इसकी वजह से जो उत्पादन है ज़्यादा बढ़ेगा और ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन आ जाएगी, जिससे कि अगली फसल में भी नाइट्रोजन कम देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। और जो हमारे पशु हैं उनको भी ध्यान रखना है, गर्मी के दिनों में आप मेहनत करते हैं खेतों में, पशुओं को प्यास भी लगती है, उनको नहलाने का और उनको खाने का और पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। और इन दिनों में एक समस्या आती है, कीचड़ जैसे हो जाते हैं पशुओं को या पशुओं के बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, उनका उपचार बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि कीचड़ की समस्या आती है, हमारे किसान भाई कई बार उसका निदान करते हैं कि भाई पशुओं को खरारा कर दिया, कोई उसको सफाई कर दी, लेकिन जो उनके अंडे हैं वो जो पशुशाला है उसमें या खूंटे के आसपास बड़ी मात्रा में रहते हैं, उनको नष्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके पशुओं को वे आज ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाएं। तो आप पशुओं का भी ध्यान रखना है, खेत का भी ध्यान रखना है, और खेत में भी अपनी आगामी आने वाली फसलों के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है।
1: और भाई मौसम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ये गर्मी काफ़ी ज़ोरों पर है इन दिनों में, तो जब भी आप खेत पर जाएं तो भाई अच्छी तरह से या तो सुबह शाम क्या काम करें, शरीर को ढककर अच्छी तरह से, और भाई पानी

0: निरंकार भाई, ये तो भाइयों ने सुना विनोद कुमार से उपदेश। और अब कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें, कल 5:10 पर कार्यक्रम लोक रंजनी का आनंद ले सकेंगे और 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में चर्चा करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में। साथ ही जानकारी देंगे गर्मियों में स्वास्थ्य को सही रखने में आयुर्वेद की भूमिका के बारे में।
1: और दोपहर में भी हमारा दोपहर का प्रोग्राम होता है किसान की बात, उसमें भी बता देते हैं फसलोत्पादन के लिए वर्षा जल संरक्षण की तैयारी, इस विषय पर जानकारी दी जाएगी।
0: साथ ही भाई कृषि जगत कार्यक्रम में 7:05 पर जानकारी लेंगे कपास की उन्नत खेती और गुलाबी सुंडी प्रबंधन के बारे में, और भाई बाजार भाव के बारे में भी जानकारी दीजिए।
1: और अब भाइयों से लेते हैं इजाजत, सब बहन भाइयों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत, और अब वक्त हो चला है 7:30, और ये वक्त है गज़लों और कव्वालियों से सजी एक महफिल का। तो इस महफिल की एक खूबसूरत सी गज़ल है जिसमें आँखों का जिक्र है, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी।

कहते हैं कि जब किसी शख्स के जज्बात खूबसूरत अल्फाज में बयां होने लगे और उन्हें वो खूबसूरत अल्फाज की एक जमा मिलने लगे तो गज़ल अपने आप में मुकम्मल होने लगती है। उसके अल्फाज गज़ल का रूप धरने लगते हैं और इतने प्यारे अल्फाज अशार की शक्ल में और इतनी खूबसूरत आवाज़ में बयान हो जाते हैं। यही है गज़ल। और एक और बहुत खूबसूरत गज़ल है जिसे गाया है जगजीत सिंह साहब ने, उम्मीद है आपको पसंद आएगी।

और अब इस कार्यक्रम की एक आखिरी पेशकश जो है एक कव्वाली, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे यानी तलत को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी आपसे 8:30 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम में, और उसके बाद 11:10 पर आप सुनेंगे आपकी फरमाइश कार्यक्रम। इसके बीच भी बहुत खूबसूरत और जानकारी से भरे कार्यक्रम है, आप जुड़े रहिए आकाशवाणी से।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अभी आपने कार्यक्रम गज़ल और कव्वाली का आनंद लिया और अब से कुछ ही क्षण बाद यानी 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
9: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
8: और लाइट बिल के।
9: अब 0 रुपए कैसे दूं?
8: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
9: पक्का।
10: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
12: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने यमुना पुनर्जीवन को सुदृढ़ करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया। देश में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया और दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ के आपूर्ति मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 90 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने आज यमुना पुनर्जीवन को सुदृढ़ करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत जल प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट और जलापूर्ति को सुदृढ़ किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना और दिल्ली को एक स्वच्छ, हरित और जल सुरक्षित राजधानी बनाना है।
13: इन परियोजनाओं में नजफगढ़ क्षेत्र में 12 नए डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। करीब 860 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन प्लांटों की कुल क्षमता को लगभग 46 MGD किया जाएगा और इन्हें केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि केशवपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पहले चरण का उन्नयन और क्षमता विस्तार किया जाएगा। करीब 122 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं के जरिए उपचारित जल की गुणवत्ता को नवीनतम मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि परियोजना में 11 वर्ष तक संचयन और रखरखाव की व्यवस्था भी शामिल होगी। इससे पुनर्नवीनीकरण पानी के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और जल संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अब दिल्ली जल बोर्ड विभिन्न

0: विभागों की ओर से नए वर्षा जल संचयन ढांचों का निर्माण और पुराने ढांचों के पुनर्स्थापन का कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में अमी चंद्र चौक से पुराना कल्याणपुरी सीवेज पंपिंग स्टेशन तक लगभग 57 करोड़ रुपए की लागत से प्रमुख ट्रंक सीवर लाइन का पुनर्वास किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन पहलों से लाखों नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: मुख्यमंत्री ने जनसेवा सदन में किसानों के प्रतिनिधि मंडल से संवाद कर उनकी समस्याओं, खेती से जुड़े विषयों और क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को किसान हित से जुड़े विषयों पर संवेदनशीलता और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री और बवाना विधानसभा से विधायक रविन्द्र इंद्रास सिंह ने आज अपनी विधानसभा के ग्राम सभा पूट कला में नालियों, गलियों और सीवर लाइन के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि क्षेत्र के विकास और बेहतर मूलभूत सुविधाओं की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा श्री सिंह ने बवाना विधानसभा क्षेत्र के शिव विहार कॉलोनी में गलियों और नालियों के विकास कार्यों का शुभारंभ भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। श्री प्रधान ने वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से भी मुलाकात की और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
2: ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामलों में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: देश भर में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री आशीष सूद ने इस विशेष संस्करण में सहभागिता की और साइकिलिंग के माध्यम से फिट और स्वस्थ भारत के संदेश को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देता है और ईंधन बचाने में मदद करता है। श्री सूद ने कहा कि यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास है।
3: फिट इंडिया मूवमेंट है और संडेज ऑन साइकिल्स है भारत सरकार का अनूठा प्रयास है। प्रधानमंत्री जी जो फिट इंडिया के लिए आह्वान करते हैं, जो एक मजबूत फिटनेस के लिए डॉक्टर पे जाने से पहले पैडल मार लो 30 मिनट, तो अपने आप में बहुत बड़ा योगदान आप अपने लिए कर सकते हैं। और आज तो साइकिल का उपयोग देशभक्ति का भी प्रतीक है, ऊर्जा संरक्षण के लिए, पेट्रोल बचाने के लिए, ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। और इतने सारे लोग जो ऑर्गेनिक से आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने भारतीय धावक गुरिंदर वीर सिंह को सबसे तेज धावक बनने के लिए बधाई दी है। गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ को 10.9 सेकंड में पूरा कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि गुरिंदर वीर सिंह यह उपलब्धि देशभर के अनगिनत युवा एथलीटों को प्रेरित करेगी। दिल्ली सरकार कल सूरहेड़ा गांव में नवनिर्मित चौपाल का लोकार्पण करेगी। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री परवेश साहेब सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह चौपाल ग्राम विकास, सामाजिक सहभागिता

नैतिकता और जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने का एक सार्थक प्रयास है। राजधानी आज भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं और सामाजिक समरसता के ऐतिहासिक और अद्भुत दृश्य की साक्षी बनी। देश के विभिन्न राज्यों से आए 1 लाख से अधिक वनवासी समाज के लोगों ने अपनी पारंपरिक संस्कृति, वेशभूषा, लोक नृत्य, संगीत और गौरवशाली विरासत का भव्य प्रदर्शन करते हुए

0: रंगों, परंपराओं और उत्सव की जीवंत झलक से सराबोर कर दिया। जहां एक ओर पारंपरिक वेशभूषा में सजे वनवासी बंधुओं के समूह आकर्षण का केंद्र बने, वहीं दूसरी ओर वनवासियों के स्वागत में दिल्ली के लोगों द्वारा आयोजित किए गए ढोल नगाड़ों की गूंज, लोक कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियां और बैंड बाजों की स्वर लहरियों ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया। अजमेरी गेट चौक से शुरू हुई इस यात्रा को भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल और सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा अजमेरी गेट से हौज काजी, चावड़ी बाजार, घंटाघर और चांदनी चौक मेन बाजार से होते हुए ऐतिहासिक लाल किले तक पहुंची। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ सौम्या शरण।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की उत्तरी जिला टीम ने मादक पदार्थ के आपूर्ति मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को बवाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से लगभग 90 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान यह पता चला है कि आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ कई वर्षों से मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल था। मामले की जाँच जारी है। यातायात पुलिस ने गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ मात्र 2 दिनों में लगभग 1100 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की है और 12000 से अधिक चालान किए हैं। यातायात अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विजयंता आर्या ने कहा कि इस विषय पर पहले भी समन्वित कार्रवाई अभियान चलाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।
2: रॉन्ग साइड ड्राइविंग पे हम निरंतर कार्रवाई करते रहते हैं। पहले भी कंसर्टेड एक्शन और ड्राइव्स होती रही हैं। लास्ट वीक भी इस चीज पे एफआईआर हुई थी और इस वीक में भी मात्र 2 दिनों में, फ्राइडे और सैटरडे में, हम 1100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर चुके हैं ऐसे लोगों पे जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग जो है वो सड़क के ऊपर व्यवस्थित ट्रैफिक को और सड़क के ऊपर सेफ्टी को, दोनों को ही बहुत बड़ा खतरा है।
1: राजधानी के मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में आज लगभग दोपहर 12:30 बजे आग लग गई। दमकल विभाग ने बताया कि आग बुझाने के लिए 10 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। विभाग ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यूपीएससी ने बताया कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। आयोग ने बताया कि अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। राजधानी में आज भी भीषण गर्मी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कल का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने यमुना पुनर्जीवन को सुदृढ़ करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया। देश में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ के आपूर्ति मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 90 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग।
5: आई नो माँ,
6: बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
7: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
8: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
9: आई नो ना।
8: आरबीआई कहता है
10: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
3: ये देख कैसे।
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग।
6: I know, ma. But खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
7: Saving करने की भी यही उम्र है.
8: I know.

0: पापा सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
1: आई नो ना।
0: RBI कहता है
2: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता, आप सुनते हैं कार्यक्रम कवि गोष्ठी।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर चंद्रसेन।
2: नमस्ते श्रोताओं, मैं डॉक्टर चंद्रसेन आज की इस कवि गोष्ठी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ जो प्रतिभागी कवि स्टूडियो में उपस्थित हैं उनमें डॉक्टर दीपा, जो कि एक युवा कवित्री हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरबिंदो महाविद्यालय में कार्यरत हैं, इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। साथ ही हमारे साथ में चंद्रशेखर, बड़े कवि और अधिवक्ता, दोनों का बड़ा मेल जो है ना, अधिवक्ता होना और कवि होना दोनों का एक बड़ा अलग सा नाता है, लेकिन चूंकि अनुभूतियों और संवेदना का स्वर एक जैसा ही होता है और एक ऐसा संगम चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व में है कि वो अधिवक्ता होने के साथ साथ एक बड़े अच्छे कवि भी हैं। और गोपालदास नीरज जी का एक दोहा याद आता है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और साथ ही हमारे बीच में एक जाने माने कवि डॉक्टर रजनीश त्यागी राज जी भी उपस्थित हैं। रचना धर्मिता और इनका जो रचना यात्रा है वो बड़ी बेमिसाल रही है, और जो हिंदी काव्य प्रेमी श्रोता है वो डॉक्टर रजनीश त्यागी जी की रचनाओं और उनकी आवाज से रूबरू ना हुआ हो ये संभव नहीं है। और मैं सबसे पहले प्रारंभ में डॉक्टर दीपा से अनुरोध करूंगा कि वो इस कवि गोष्ठी का प्रारंभ अपनी श्रेष्ठतम रचना से, अपने सस्वर, क्योंकि उनका गायन बड़ा बहुत मधुर है, तो तरन्नुम में प्रारंभ करें इस कवि गोष्ठी का डॉक्टर दीपा जी।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं चाह तो कुछ पेश करना तहत में रही थी, लेकिन अभी आपने कहा कि तरन्नुम में, तो मैं विषय बदल लेती हूँ।

0: सुंदर।
1: हमारी कमी है। धन्यवाद दोस्तों। पिता जो हमेशा हाशिए पर रहता है, उस विषय को, संवेदनशील विषय पर अपनी एक रचना आपके समक्ष रखती हूँ।
0: जी स्वागत है।
1: धन्यवाद। बड़ा मुश्किल है पिता होकर जीना, बड़ा मुश्किल है पिता होकर जीना, दर्द हजारों सीने में दबा कर जीना। कोई पूछता नहीं, कोई पूछता नहीं पुरुषों की यहाँ, जीकर तो देखे एक लम्हा यहाँ पुरुषों की तरह। मुझे प्यारे मेरे रिश्ते हमें इजहार नहीं करता, मुझे प्यारे मेरे रिश्ते हमें इजहार नहीं करता, मगर उनके बिना जीने की कभी सोच नहीं सकता।
0: क्या बात है,
2: सुंदर।
1: धन्यवाद। कोई मुझसे जरा पूछे कि मैं किस हाल में हूँ, कोई मुझसे जरा पूछे कि मैं किस हाल में हूँ, हूँ मैं जिंदा या दफने जिंदा लाश में हूँ। जान से प्यारे रिश्तों से दूर होना क्या है,

0: जान से प्यारे रिश्तों से दूर होना क्या है, जरा पूछे मुझसे कोई कि आखिर घटा क्या है।
1: बहुत अच्छे,
0: धन्यवाद मेरे बच्चों। तुम ना आना इस जमाने की बातों में, मेरे बच्चों तुम ना आना इस जमाने की बातों में, कुछ पल तो गुजारो इस पिता की बाहों में।
2: वाह,
0: मुझे भी बचपन वो तुम्हारा बहुत याद आता है, मुझे भी बचपन वो तुम्हारा बहुत याद आता है। तुम्हें ना याद हो भले, पर वो तुम्हारा उंगली पकड़कर चलना आज भी याद आता है। धन्यवाद। आज हाथ मेरे कपकपाते हैं, आज हाथ मेरे कपकपाते हैं और कदम ये मेरे लड़खड़ाते हैं, आज हाथ मेरे कपकपाते हैं और कदम ये मेरे लड़खड़ाते हैं। काश तुम आकर, काश तुम आकर आज मेरी उंगली थामो, अगर लड़खड़ाए मेरे कदम तो उन्हें संभालो। बड़ा मुश्किल है पिता होकर जीना, अकेले में रोना और कुछ ना कहना। सूजती आंखों का सबब, धन्यवाद। सूजती आंखों का सबब जब भी किसी ने पूछा, सूजती आंखों का सबब जब भी किसी ने पूछा, बूढ़ा हो चला हूँ अब बस इतना ही कहा। बड़ा मुश्किल है पिता होकर जीना।
1: अच्छा है, बहुत
2: अच्छा, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अभी आपने श्रोताओं जानी मानी कवियत्री डॉक्टर दीपा जी को कि उनकी बड़ी मार्मिक रचना जो पिता को समर्पित थी, श्रीवास्तव जी की गजल है, घर की बुनियादे दीवारें बामो दर थे बाबू जी, और सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबू जी।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
2: घर की बुनियादे दीवारें बामो दर थे बाबू जी, घर को बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबू जी, और अब तो सोने माथे पर कोरेपन की चादर है, अम्मा जी की सारी सजधज सब्जेवर थे बाबू जी।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे।
2: कभी बड़ा सा हाथ खर्चते कभी हथेली की सूजन, कभी बड़ा सा हाथ खर्चते कभी हथेली की सूजन, मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबू जी।
0: क्या बात है।
2: तो डॉक्टर दीपा जी की रचना से मुझे सुन के
0: धन्यवाद।
2: बहरहाल मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ एक बड़े अच्छे जाने माने कवि डॉक्टर रजनीश त्यागी राज के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे सुधी कवि और आप हम सब के जाने माने प्रिय कवि डॉक्टर रजनीश त्यागी राज जी से निवेदन करूंगा कि वो श्रोता वर्ग को अपनी रचना धर्मिता से रूबरू कराए। डॉक्टर रजनीश त्यागी जी,
3: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सीधे सीधे अपने अशार पेश करता हूँ कि लहू दिल का निकल कर राज कागज पर उभरता है, लहू दिल का निकल कर राज कागज पर उभरता है, नहीं आसान होता है कलामे मीर लिख देना।
0: क्या बात है।
3: नहीं आसान होता है कलामे मीर लिख देना। बहुत शुक्रिया। और चार मिनट से और देखिए कि आंसुओं की कब रही बाजार में कीमत कभी, आंसुओं की कब रही बाजार में कीमत कभी, कुछ बहाने ढूंढ लो तुम मुस्कुराने के लिए।
1: क्या बात है,
3: कुछ बहाने ढूंढ लो तुम मुस्कुराने के लिए, और दो घड़ी हंसने की हसरत का नतीजा ये मिला, दो घड़ी हंसने की हसरत का नतीजा ये मिला, शहर सारा आ गया मुझको रुलाने के लिए।
1: क्या बात है,
3: शहर सारा आ गया मुझको रुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया। और चार मिसरे हैं कि तेरी जफा की बात ने सब कुछ मिटा दिया, तेरी जफा की बात ने सब कुछ मिटा दिया, यूं तो न कोई बात थी बस दिल दुखा दिया, यूं तो न कोई बात थी बस दिल दुखा दिया, और अशकों से लिख रहा था मैं तो दास्ताने गम, अशकों से लिख रहा था मैं तो दास्ताने गम, अच्छा किया जो तुमने लहू भी मिला दिया।
1: क्या बात है, क्या कहने, फिर पढ़े इस लाइन को, फिर पढ़े इस लाइन को,
2: इस पंक्ति को दोबारा।
3: शुक्रिया कि अशकों से लिख रहा था मैं तो दास्ताने गम, अच्छा किया जो तुमने लहू भी मिला दिया।
1: क्या बात है,
3: बहुत शुक्रिया। और चार में से और देखे कि न राहत ही नजर आती न कुछ तस्कीन मिलती है, न राहत ही नजर आती न कुछ तस्कीन मिलती है, परेशान आसमां मिलता जमीन गमगीन मिलती है, परेशान आसमां मिलता जमीन गमगीन मिलती है, और रईसों के ही घर की ये बपोती है नहीं साहिब, रईसों के ही घर की ये बपोती है नहीं साहिब, हवा मुफलिस के घर में भी बड़ी शालीन मिलती है, हवा मुफलिस के घर में भी बड़ी शालीन मिलती है। बहुत शुक्रिया। और जैसे कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप फोर्स से रिटायर्ड हैं तो कुछ वीर रस में लिखो, तो मैं वीर रस में नहीं लिखता हूँ, बस उनके लिए मेरी दो चार लाइनें हैं कि गर आग ना हो कुछ सीने में, गर आग ना हो कुछ सीने में, और

0: वतन से प्यार ना हो, घर आग ना हो कुछ सीने में, और वतन से प्यार ना हो, तब लफ्जों को ताकतवर शमशीर बनाना मुश्किल है। तब लफ्जों को ताकतवर शमशीर बनाना मुश्किल है, और दिन रात मशक्कत करने से काम हुआ है दुनिया में। दिन रात मशक्कत करने से काम हुआ है दुनिया में, तकदीर भरोसे रहकर तदबीर बनाना मुश्किल है। तकदीर भरोसे रहकर तदबीर बनाना मुश्किल है। और चार मिसरे और देखिए कि गुजारा हो नहीं सकता मेरा तेरे सहारों पर, गुजारा हो नहीं सकता मेरा तेरे सहारों पर, तवज्जो है नहीं तेरी जरा भी खाक सहारों पर, तवज्जो है नहीं तेरी जरा भी खाक सहारों पर, और तेरी पायल की झनकारें मेरे घर अब भी आती हैं।
1: वाह क्या बात,
0: तेरी पायल की झनकारें मेरे घर अब भी आती हैं, जरा पैवंद चस्पा दो मेरे घर की दरारों पर।
2: अच्छा है त्यागी जी, अच्छा है।
0: जरा पैवंद चस्पा दो मेरे घर की दरारों पर, और मोहब्बत में ये मुमकिन है, मोहब्बत में ये होता है, मोहब्बत में ये मुमकिन है, मोहब्बत में ये होता है, नहीं तो कौन नंगे पांव चलता है शरारों पर।
2: क्या बात है,
0: नहीं तो कौन नंगे पांव चलता है शरारों पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बस कुछ आखिरी मिसरे और आपके सामने पेश करता हूँ कि दर्द मेरे दिल में था घुटता रहा मैं रात भर, दर्द मेरे दिल में था घुटता रहा मैं रात भर, दार पर फांसी दार पर जैसे कहीं लटका रहा मैं रात भर, दार पर जैसे कहीं लटका रहा मैं रात भर। और शेर देखिए कि सोचता था दूर होकर मैं कहूं उन पर गजल, सोचता था दूर होकर मैं कहूं उन पर गजल, एक मिसरे पर मगर अटका रहा मैं रात भर, एक मिसरे पर मगर अटका रहा मैं रात भर, और एक कांटे की तरह चुभती रही यादें तेरी, एक कांटे की तरह चुभती रही यादें तेरी, एक गुंचे की तरह चटका रहा मैं रात भर, एक गुंचे की तरह चटका रहा मैं रात भर। और शेर देखिए कि कैसे अनजाने हुए अपनी गली के रास्ते,
3: वाह
0: कैसे अनजाने हुए अपनी गली के रास्ते, अपने घर के पास ही भटका रहा मैं रात भर,
1: अपने
0: कैसे अनजाने हुए अपनी गली के रास्ते, अपने घर के पास ही भटका रहा मैं रात भर। और आखिरी शेर है कि चांद सूरज ओस बिजली गुल घटाएं मैं कदा,
3: हाय हाय
1: क्या बात,
0: चांद सूरज ओस बिजली गुल घटाएं मैं कदा, राज उसके नाम ये रटता रहा मैं रात भर,
3: राज
0: उसके नाम ये रटता रहा मैं रात भर।
2: बहुत अच्छा, बहुत अच्छे।
3: अभी श्रोताओं, डॉक्टर रजनीश त्यागी राज साहब की गजलों से आप रूबरू हुए, और कहते हैं कि जो कविता है वो इशारों के संकेत की भाषा होती है, और उसमें प्रतीक और बिंब का बड़ा महत्व होता है। अभी उन्होंने चांद और कई तरह की उपमाएं दी जो एक कवि कर्म का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। हमारी संवेदनशीलता से वो भावनात्मकता जुड़ती है, शब्दों का वो जामा पहनती है, और एक बड़ा सुंदर चित्र सा कविता या गजल या नज्म के रूप में उभर के आता है। श्रोताओं, उम्मीद है कि आपने डॉक्टर रजनीश त्यागी राज जी के इन रचनाओं से आपको रसास्वादन हुआ होगा।
0: बहुत शुक्रिया।
1: तो दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे आदरणीय चंद्रसेन जी को। जितने अच्छे वो संचालक है उतनी ही सुंदर उनकी कविताएं हैं। तो एक वरिष्ठ कवि के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं, और आप पहले से उनको सुनते आए हैं, तो आज उनकी भावभूमि से हम उनकी संवेदनाओं को झलकते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रसेन जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कविताओं से हमें अभिभूत करें।
3: धन्यवाद डॉक्टर दीपा जी, आपने हमें भी दावतनामा दिया। और लीजिए श्रोताओं, मैं आपके समक्ष में एक गीत को प्रस्तुत करता हूँ कि जो मिलने बिछड़ने का जो मर्म है वो मर्म उस गीत में समाहित है, प्रस्तुत कर रहा हूँ।
0: स्वागत है।
3: मुझ

0: पाला मिले।
1: क्या बात है,
0: मुझको जो भी मिला जाने वाला मिला, मेरी हसरत है अब आने वाला मिले। अब तलक कितना टूटा हूँ कैसे कहूँ, अब तलक कितना टूटा हूँ कैसे कहूँ, कोई भी तरस समझाने वाला मिले।
2: क्या बात है,
0: मुझको जो भी

0: अभिमन्यु सा।
1: क्या बात है।
0: घिरता जाता हूँ यादों में अभिमन्यु सा, मीठी यादें भी हत्यारी लगती
2: वाह
0: है अब।
2: क्या बात है,
1: वाह
2: क्या बात है।
0: घिरता
2: अच्छा।

0: कोई सागर सबस जाने वाला
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया,
2: क्या आशावादी
0: सागर सबस जाने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझको जो भी

0: झुलसा दिया। फूल जब भी खिला मेरे संसार का, एक पतझर ने उसको झुलसा दिया। मन के मधुबन में छाई है वीरानगी, मन के मधुबन में छाई है वीरानगी, कोई उपवन को महकाने वाला मिले। अब तलक कितना टूटा हूँ कैसे कहूँ, कोई भीतर से समझाने वाला मिले। एक ख्वाहिश है मेरी कि जो भी मिले बन के अपना मिले, मन से अपना मिले।
1: अच्छा है।
0: एक ख्वाहिश है मेरी कि जो भी मिले बन के अपना मिले, मन से अपना मिले। मिल के बिछड़े हैं अपने सभी मोड़ पर, मिल के बिछड़े हैं अपने सभी मोड़ पर, कोई तो दूर तक जाने वाला मिले।
2: क्या
0: अब तलक कितना टूटा हूँ कैसे कहूँ, कोई भीतर से समझाने वाला मिले।
1: बहुत अच्छे,
2: बहुत सुंदर,
3: बहुत सुंदर।
0: मैं अपने गीत को प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
3: स्वागत है।

0: देख ले।
1: क्या बात है,
0: वाह।
1: क्या बात है।
0: रिश्ता हर बार में जोड़ता ही रहा, रिश्ता हर बार में जोड़ता ही रहा, आपने तोड़ा नाता तो क्या कीजिए। रिश्ता हर बार में जोड़ता ही रहा, आपने तोड़ा नाता तो क्या कीजिए। नज्म का पहला शेर है, रिश्ता हर बार में जोड़ता

आपने कुछ न बोला तो क्या कीजिए, रिश्ता हर बार मैं जोड़ता ही रहा, आपने तोड़ा नाता तो क्या कीजिए।

0: है, आपका ये हुनर है तो क्या कीजिए। रिश्ता हर बार में जोड़ता ही रहा, आपने तोड़ा नाता तो क्या कीजिए।
1: अच्छा है।

0: होठों पर ऐसा गाना है, जुड़ने वाला हर दिल से अफसाना है।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: मैं एक गीत को प्रस्तुत करता हूँ,

महफूज रखा, यार को महफूज रखा। लाख भटके थे मगर हमने ईमान महफूज रखा।

जहाँ में हम भटक जाते, जहाँ में है तेरा एहसान हम पर, तूने ही महफूज रखा।

0: महफूज रखा।
1: क्या बात है,
0: वाह
1: क्या बात।
0: श्रोता, आपके बीच एक ऐसे जाने माने कवि लेखक श्री
1: आश्री
0: चंद्रशेखर आश्री जी के लगभग आधा दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें मोम का पुतला, जन प्रतिबिंब, जन प्रतिध्वनि, वकालतनामा बहुत चर्चित कविता संग्रह हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अपनी रचना धर्मिता से, अपने रचना कौशल से हिंदी काव्य प्रेमियों को अपनी रचनाओं से रूबरू कराएं।
1: धन्यवाद। कुछ छोटी छोटी रचनाएं आपके सामने हैं। इंतजार। सागर में डूबे तो लौट आए, मगर मोबाइल में वो ऐसे डूबे कि फिर न लौटे। नजरें आज भी करती हैं इंतजार उनके लौट आने का।
2: क्या बात है,
0: वाह
2: क्या बात है।
1: एक धन्यवाद
0: नजरें आज भी करती हैं उनके
1: उनके लौट
0: लौट आने,
1: आने का।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर।
1: शब्द। शब्द मरहम हैं जो घावों को भर देते हैं। शब्द पंख हैं जो उड़ने को प्रेरित कर देते हैं। शब्द मुसाफिर हैं जो हम सफर बन साथ चल देते हैं।
0: वाह
1: शब्द मित्र हैं जो मन की पीड़ा को हर लेते हैं। शब्द पुष्प हैं उपवन के जो
0: वाह
1: जीवन में मकरंद भर देते हैं।
2: बहुत सही, बहुत
1: शब्द
2: सही।

0: ईश्वर का वरदान है जो परम आनंद जीवन में भर देते हैं। एक और कविता, धन्यवाद। जुगनू, शहर के तमाम जुगनू यहाँ चले आए, कितना उजाला है यहाँ, काश कोई एक रुक जाता वहां अंधेरे में भी, तो रोशनी की कुछ उम्मीद वहां भी बची रहती अंधकार में।
1: क्या कहने,
2: बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक।
0: आदमी इस बात से कितना अनजान है, जहां सांस लेना भी एक इम्तिहान है, उसकी मर्जी से ही तो है यह सांस आती जाती है, विधाता का दिया हुआ ये कितना अनमोल वरदान है।
2: बहुत सही, बहुत सुंदर।
0: और वकील हूं तो अदालत में मुकदमे चलते रहते हैं, तो एक कविता मध्यस्थता के ऊपर आपके सामने पेश कर रहा हूं। मध्यस्थता अपनाई, अपने परिवारों का, रिश्तों का अदालत में मजाक ना बनाएं, कड़ी परिश्रम से कमाई दौलत और प्रतिष्ठा को बेकार की मुकदमेबाजी में ना गवाएं।
2: वाह क्या बात है सर।
0: छोटे छोटे मतभेदों, नोक झोंक, अविश्वास को मूछ और पगड़ी का प्रश्न ना बनाएं।
1: क्या कहने,
0: कि जान लें कि एक दूसरे को सबक सिखाने के चक्कर में गुजर जाता है जीवन और समय का कारवान, इसलिए छोड़कर लड़ने मरने का रास्ता, आओ पल भर को विश्वास और सौहार्द्रता से भरे माहौल में क्यों न हम अपने मुद्दों को स्वयं सुलझाएं, शांति को एक और अवसर देकर आओ मध्यस्थता अपनाएं। आओ मध्यस्थता अपनाएं।
2: समकालीन विषय को कितने सुंदर ढंग से उकेर रहा है सर, बहुत सुंदर सर,
0: धन्यवाद।
1: अभी आपने चंद्रशेखर आश्री जी को सुना, क्योंकि वो एक ऐसे पेशे से जुड़े हुए हैं जहाँ पे ना जो मार्मिकता है वो या तो पूरे फान पे होती है या वो कहीं वो पूरी तरह से नेस्त नबूद हो जाती है। अब क्योंकि एक बार जो गुजर गया वो दोबारा नहीं लौट के आता, इसलिए अच्छा है उन्होंने कितने एक मध्यम मार्ग की बात की, और वो ऐसा मध्यम मार्ग, ऐसे रचना धर्मिता जहाँ संवेदनाओं का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वहाँ की उस धरती में संवेदना के बीजारोपण करते हैं हमारे चंद्रशेखर आश्री साहब, उनकी रचना इस बात का प्रमाण है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं फिर से आग्रह करता हूँ अपने डॉक्टर रजनीश त्यागीराज साहब से कि वो कोई और अपनी रचना यहाँ प्रस्तुत करें श्रोताओं के समक्ष, क्योंकि उनकी रचनाएं हम सभी को गुदगुदा भी रही हैं और एक संदेश पर रखे प्रेरणादायी रचनाएं हैं।
3: बहुत शुक्रिया। श्रोताओं को पुनः नमस्कार। एक गजल आपके सामने फिर पेश करता हूँ। इस कदर भारी पड़ा है हम पे खतरा दर्द का, इस कदर भारी पड़ा है
1: हम पे खतरा दर्द,
3: हम पे खतरा दर्द का, खत में लिख भेजा है उनको हमने किस्सा दर्द का।
2: क्या बात है,
3: खत में लिख भेजा है उनको
1: अपना
3: हमने किस्सा दर्द का। और शेर देखिए कि दूसरों के दर्द लेना भी मेरी फितरत हुई।
1: वाह,
3: दूसरों के दर्द लेना भी मेरी फितरत हुई, भेज देना तुम भी मुझको अपना हिस्सा दर्द का।
2: वाह,
3: भेज देना तुम भी मुझको।
2: बहुत सही,
3: बहुत शुक्रिया। दूसरों के दर्द लेना भी मेरी फितरत हुई, भेज देना तुम भी मुझको अपना हिस्सा दर्द का। और पंखुड़ी जो दब रही थी ओस की एक बूंद से, पंखुड़ी जो दब रही थी ओस की एक बूंद से, सह गई बरसात में वो बोझ सारा दर्द का। सह गई बरसात में वो
1: बोझ
3: सारा दर्द का। और शेर देखिए कि आंसुओं में खिंच के आया है मेरे दिल का लहू,
1: आंसुओं में खिंच के आया है
3: मेरे दिल का लहू, आंसुओं में खिंच के आया है मेरे दिल का लहू, आओ तुम भी देख लो आकर तमाशा दर्द का।
1: क्या बात,
3: आओ तुम भी देख लो
2: क्या बात है,
3: आकर तमाशा दर्द का। और मकता है कि हम तेरी महफिल में आकर राज आखिर क्या करें, हम तेरी महफिल में आकर राज आखिर क्या करें, कौन सुनता है तेरी महफिल में चर्चा दर्द का, कौन सुनता है तेरी महफिल में चर्चा दर्द का।
2: बहुत
0: बहुत अच्छे,
2: बहुत सुंदर,
3: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओं, अभी आपने इस कवि गोष्ठी में तीन बड़े जाने माने कवियों को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मूल्यवान समय दिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया,
2: धन्यवाद,
0: धन्यवाद।
4: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे, प्रतिभागी कवि थे सुश्री दीपा केमवाल, श्री चंद्रशेखर आश्री, श्री रजनीश त्यागी और डॉक्टर चंद्रसेन। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे डॉक्टर चंद्रसेन। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत कार्यक्रम में, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरती। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे रोमांटिक गीत से जिसे सुनते ही प्यार का एहसास दिल में उतरने लगता है।

दोस्तों, प्यार एक ऐसा एहसास है जो कभी मुस्कान बनकर चेहरे पर खिल जाता है, तो कभी याद बनकर दिल में बस जाता है। और जब इसी एहसास को संगीत मिल जाए तो हर शब्द दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। और ये अगला जो बेहद खूबसूरत और रोमांटिक गीत है, ये फिल्म धड़कन से है।

शुदा वक्त है एक ऐसे ही गीत का जो दिल को छू जाने वाला गीत है और आज भी वो लोगों के दिलों में बसा हुआ है।

तो दोस्तों इसी गीत के साथ अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और अब मैं आरती लेती हूँ आपसे इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नए गीतों और नई धुनों के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ. जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांग

0: श्री पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 149,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83

शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए यूपीएससी टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है।

पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्रिशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती माहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमद और रफ्त को तआवुन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। टीएमसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वह मुशतबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने CBSE के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसी मौजूआत पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका दिफाई शराकत दारी की ताकत का एक बार फिर जिक्र किया और तिजारत, तवानाई, नकल व हमल, नेज़ इलाकाई सलामती समेत तआवुन के अहम मैदानों का खाका पेश किया। वफ्द की सतह की बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जल्द अज जल्द एक तजारती माहदे की तकमील की जरूरत को उजागर किया। तवानाई की तिजारत में तोसी का खैर मकदम किया और जोर देकर कहा कि मुख्तलिफ किस्म की तवानाई सप्लाई भारत में तवानाई की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए अहम है। ईरान के साथ तनाज़े के बारे में जनाब जयशंकर ने कहा कि भारत और अक़वामे मुत्तहिदा को इस बात को यकीनी बनाने में काफ़ी दिलचस्पी है कि तवानाई की आलमी कीमतें कम रहें। उन्होंने मुज़ाकरात, सिफारती कोशिशों, महफूज और बिला रुकावट समंदरी तिजारत के हक़ में भारत के मौक़िफ़ को भी एक बार फिर दोहराया। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिसके ताल्लुकात अमरीका, इसराइल, ईरान नेज दिगर खलीजी मुल्कों के साथ मजबूत हैं। उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत खित्ते में अमन इस्तेहकाम, बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी की फलाह और तवानाई की कीमतों में कमी चाहता है। डॉक्टर जयशंकर ने अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को उजागर किया और कहा कि कानूनी तौर पर की जाने वाली आमदोरफ्त पर कोई मनफी असर नहीं पड़ना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने शराकत दारी के दिफाई पहलुओं की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने भारत को दुनिया में अमरीका के सबसे अहम शराकत दारों में से एक करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमरीका उन सभी अहम मामलों पर दिफाई तौर पर मुत्तफ़िक़ हैं जिनसे नई सदी की वजाहत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के नतायज बर्दाश्त किए हैं। उन्होंने ये बात भी जोर देकर कही कि अमरीका ने दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात भारत के साथ उसके दिफाई इत्तेहाद की कीमत पर नहीं किए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो क्वाड वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए कल भारत के 4 रोज़ा दौरे पर आए हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को होगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में दिफा, सलामती और दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन पर तवज्जो मरकूज की गई जिनमें ट्रस्ट पहल भी शामिल है। वजारत ने मजीद बताया कि कौमी सलामती के दोनों मुशीरों ने दो तरफा जामे आलमी दिफाई शराकत दारी के मुताबिक आला तरजीहात का एक बार फिर जिक्र किया। उन्होंने मकामी और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिव्यांशु पांडा ने फाल्टा असेंबली सीट के लिए दोबारा हुई पोलिंग में जबरदस्त जीत हासिल की है। जनाब पांडा ने 1,09,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। यह सीट तृणमूल कांग्रेस का अहम गढ़ तसव्वुर की जाती है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटिंग में बड़े पैमाने पर मुबैना धांधली के वाकयात के बाद 21 मई को दोबारा पोलिंग कराई गई। फाल्टा सीट जीतने के बाद 294 नशिस्तों वाली असेंबली में बीजेपी के अराकीन की तादाद 208 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तृणमूल कांग्रेस के मुबैना डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए बीजेपी ने आज फाल्टा असेंबली सीट पर दोबारा कराई गई पोलिंग में

0: एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पार्टी के उम्मीदवार दिव्यांशु पांडा ने अपने करीबी हरीफ CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से ज्यादा वोटों के भारी फर्क से हराकर ये सीट जीत ली। शंभुनाथ कुर्मी को 40,645 वोट मिले, जबकि दिव्यांशु पांडा को 1,49,666 वोट हासिल हुए। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान 7,783 वोट पाकर चौथे मकाम पर रहे। उनकी जमानत जब्त हो गई, जबकि कांग्रेस तीसरे मकाम पर रही। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: मगरबी बंगाल हुकूमत ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वह उन मुशतबा गैर कानूनी गैर मुल्कियों नेज गैर मुल्की कैदियों के लिए हिरासती मरकज कायम करें जिन्हें वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक जिला वतन किया जाना है या उनके वतन वापस भेजा जाना है। दाखिली और पहाड़ी अमूर के महकमे की तरफ से जारी एक सरकारी ऐलामिया के मुताबिक ज़िलों से कहा गया है कि वो उन अफराद को उन मरकजों में भेजने के लिए ज़रूरी इकदाम करें जिनकी शनाख्त मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की हैसियत से की गई है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी कैद की मुद्दत पूरी हो गई है और उन्हें जिला वतन किया जाना है। हिदायतनामे में हुकाम से कहा गया है कि वो उन बांग्लादेशी शहरियों और रोहिंग्या अफराद को जिला वतन करने और उनके वतन वापस भेजने के लिए वजारत दाखिला के तरीक़े कार के मुताबिक कार्रवाई करें जो भारत में गैरकानूनी तौर पर रह रहे हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल की खामियों को दूर करने के लिए CBSE की मदद की गरज से IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसर्स और तकनीकी माहिरीन की एक टीम तैनात करने की हिदायत दी है। ये फैसला CBSE के नतायज के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के बारे में तलबा और वालिदैन की तरफ से जाहिर की गई तशवीश के पेश नज़र किया गया है। तालीम की वजारत ने एक बयान में कहा है कि IITs के माहिरीन की ये टीम निज़ाम में तकनीकी बेहतरी लाने नेज़ ख़ास तौर पर इम्तिहान के पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारकर्दगी को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के नतायज और दोबारा जांच के अमल के दौरान तलबा के सामने पेश आने वाले तकनीकी और अदायगी से मुतल्लिक मसाइल पर मालियात और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन से आज बातचीत की। वजारत तालीम ने कहा कि बातचीत के दौरान ये फैसला किया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और इंडियन बैंक अदायगी के बुनियादी ढांचे और इम्तिहान के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के साथ ज़रूरी इंजमाम में CBSE की मदद करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गर्मी की शिद्दत ने वस्ती और शुमाल मगरबी भारत के बड़े हिस्से में मामूलात ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। कई इलाके खुश्क हवाओं और शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं जिससे लोग दोपहर के औकात में घर के अंदर रहने पर मजबूर हो गए हैं। कौमी राजधानी दिल्ली भी शदीद गर्मी की जद में है। आज कौमी राजधानी खित्ते के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने कल उत्तर प्रदेश, मशरक़ी मध्य प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की पेशगोई की है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बंगाल के हिमालयी इलाके, आसाम और मेघालय में कल शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। मध्य प्रदेश शदीद गर्मी की लपेट में है। पूरी रियासत में गर्म हवाएं चल रही हैं और कई शहरों में दर्जा हरारत 43 डिग्री से तजावज़ कर गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश को इस वक्त शदीद गर्मी का सामना है। बेशतर शहरों में दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। आज महकमा मौसमियात ने 4 अजला टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना के लिए शदीद गर्मी की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। दतिया, नेवाड़ा और सागर समेत 11 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन समेत 22 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह रियासत के 37 अजला गर्मी की शिद्दत से जूझ रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम अगले 4 रोज तक शदीद गर्मी से राहत का कोई इम्कान नहीं है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो दोपहर के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें, बहुत ज्यादा पानी पिएं, नीज बच्चों और बुजुर्गों को खसूसी निगहदाश्त में रखा जाए। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: महाराष्ट्र में अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों में शदीद गर्मी के पेश नज़र मंगल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस मुद्दत के दौरान अकोला, नागपुर और गढ़चिरौली जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के एक कुनबे के 8 अफराद, जिनमें 7 खवातीन थीं, आज उत्तर कन्नड़ा जिले के थट्टेहक्कालू दरिया में डूब गए। ये लोग ताज़ा पानी की सीपियाँ चुन रहे थे कि तेज़ हवा की वजह से बहकर दरिया में चले गए।

सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा ज़िले में डूबने से हुए जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने इस हादसे में मरने वालों के कुनबों के तहत ताज़ियत का इजहार किया है और मुतासरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वज़ीर आज़म के कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपये की इमदादी रकम का ऐलान किया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली की एक 4 रुकनी मेडिकल टीम ने भोपाल में मॉडल से अदाकारा का पेशा अख्तियार करने वाली ट्रिशा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दौरान तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। कानूनी तरीक़ेकार मुकम्मल करने के बाद ट्रिशा का जस्ते खाकी उनके कुनबे के सुपुर्द कर दिया गया और उनकी आखिरी रसूम भोपाल में भदभदा क्रिमेशन में अदा की जाएंगी। 33 साल ट्रिशा की मौत भोपाल में उनके मायके में हो गई थी और उनके कुनबे ने उनके ससुराल वालों पर जहेज के लिए हरासा करने ने उन्हें खुदकुशी पर उकसाने के इल्ज़ाम आयद किए हैं। पुलिस ने ट्रिशा के शौहर समर्थ सिंह के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली है, जो खुद वकील हैं। उनकी सास गिरिबाला सिंह साबिक जिला जज हैं, उन पर भी जहेज के लिए हरासा किए जाने के इल्ज़ाम हैं। बहरीन की एक अदालत ने 9 लोगों को उम्र कैद और दीगर 2 अफराद को 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। इन अफराद पर ईरान के सिपाहे पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से मुआवनत करने का इल्ज़ाम था, जिसे हुक्काम ने मुल्क के खिलाफ साजिश और एक दहशतगर्दाना अमल करार दिया था। बहरीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये अफराद हसास मकामात के बारे में मालूमात जमा करने और उससे मुतालिक पैसों के लेन देन में मदद करने में शामिल थे। बहरीन की वजारत दाखिला ने इस माह की 9 तारीख को बताया था कि उसने ऐसे 41 अफराद को गिरफ्तार किया है जिनके मुबैना तौर पर ईरान के सिपाहे पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से रवाबित थे। 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की पहलवानों ने अपनी उम्दा कारकर्दगी जारी रखते हुए आज वियतनाम के शहर डानांग में सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे जीते। ख्वातीन के फ्री स्टाइल मुकाबलों में मानसी लथेरा और काजल ढोजक ने सोने के तमगे, स्वीटी और नेहा सागवान ने चांदी के तमगे, जबकि अहिल्या शिंदे ने कांसे का तमगा जीता। मर्दों के ग्रेग रोमन जुमरे में सुमित दलाल ने सोने का तमगा जीता, जबकि नीरज पटेल और रोहित बोरा ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम 24 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए। यह धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नज़दीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुज़्वी नुकसान पहुंचा, जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाक़े के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तलब किया गया है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक इस धमाके के बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के नज़दीक गोलियां चलने के वाक़े के बाद तेज़ी के साथ कार्रवाई करने पर कानून नाफिज करने वाले हुक्काम और खुफिया सर्विस के अहलकारों का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि मुश्तबा शख्स की पुरतशद्दुद तारीख रही है और ये वाक़ा वाशिंगटन में सिक्योरिटी से वाबस्ता गोलीबारी के एक और हालिया वाक़े के चंद रोज़ बाद पेश आया है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती मुआहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमदोरफ्त को तआवुन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1 लाख से ज़्यादा वोटों से ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। TMC उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी ज़िला मजिस्ट्रेट को हिदायत की है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज़ कायम करें। हुकूमत ने CBSE के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के माहरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की ज़िंदगी मुतासिर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए। इसी के

0: ये जरा सी खरोच पर जख्म करते हैं। मैंने तो सुना था एयरफोर्स के लोग बहुत बहादुर होते हैं।
1: तब तो आपने ये भी सुना होगा कि एक छोटा सा जख्म बहुत गहरा दाग बन सकता है और एक छोटी सी मुलाकात जीवन भर का साथ बन सकती है।
0: अब बैठिए, मैं दवा लेकर आती हूँ।
2: صباح الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. والآن أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان كومار شانو.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय

0: जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरीद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थी। पुलिस के अनुसार श्राली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव में की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से ही किसी बीमार से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। IPL क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सकी। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi yesterday. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Mr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Hill Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Debangshu Panda has registered a landslide victory in the re-poll for the Phalta Assembly constituency. Mr. Panda won by over 1,09,000 votes in a seat widely regarded as a stronghold of the Trinamool Congress.

आप हमें जो सुन रहे हैं एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर मध्य रात्रि के 1:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत सुनहरे। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे। मैं हूं आपके साथ कीर्ति। चलिए पहली आवाज आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की। आइए सुनते हैं ये गीत।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी नगमे। और अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है फिल्म आशा से, लता मंगेशकर की आवाज़ है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम, पुराने फिल्मी नकमों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत और आप हमारे साथ जुड़े रहिए AR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। फिलहाल रात्रि के 2 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

0: ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान में औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सकी। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi yesterday. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. National Security Advisor Ajit Doval met U.S. Secretary of State and NSA Marco Rubio in New Delhi yesterday. In a social media post, Ministry of External Affairs said, the discussions focused on defense, security and strategic technology cooperation, including the Trust Initiative. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Devangshu Panda has registered a landslide victory in the re-poll for the Phalta Assembly constituency. Mr. Panda won by over 1,09,000 votes in a seat widely regarded as a stronghold of the Trinamool Congress, whose nominee slipped to fourth place and forfeited his deposit. Prime Minister Narendra Modi congratulated Devangshu Panda for winning the Phalta Assembly re-poll with a record margin. In a social media post, the Prime Minister said that the victory indicates the unwavering faith of the people of West Bengal towards the BJP. President Draupadi Murmu will present Padma Awards for the year 2026 at Civil Investiture Ceremony today. On the occasion, we are broadcasting special programs as part of our series People's Padma on Akashvani. In these episodes, we provide listeners insights into the work and life of Padma awardees. To listen to the episodes, tune into 100.1 Akashvani Gold today from 10 minutes past 9 a.m. onwards It can also be

आप हमें सुन रहे हैं एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। रात्रि के 2:10 और अब समय है कार्यक्रम गीत बहार का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक, और गीतों की लिस्ट फहरिस्त आपके लिए तैयार है। हमेशा की तरह हम इस वक्त इन गीतों के सफर पर निकलते हैं ठीक 3 बजे तक, और ये गीत नॉन स्टॉप आपके दिलों तक पहुंचेंगे। आप हमें सुनते रहिए। मैं हूं आपके साथ कीर्ति।

0: हाँ, आपका भी मन नहीं करेगा कि अब इन गानों को यहीं पे रोक दिया जाए, क्योंकि समय हो चुका है और अब जाना होगा और इस कार्यक्रम को समाप्त करना होगा। गीत बाहर कार्यक्रम से अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने विशेष प्रावधान करके सभी आदिवासी समुदायों को समान नागरिक संहिता UCC से बाहर रखा ताकि उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रह सकें। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि UCC से आदिवासियों के किसी भी अधिकार का हनन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने पूरे भारत के आदिवासियों को यह संदेश दिया था कि ये देश उनका है और कोई भी उनके जंगलों पर कब्जा नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिबांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

ये शायर जिसका नाम भूपेन हजारिका है, कितनी आसानी से अवाम के दिलों की आहट सुन लेता है। ये रात जो लोगों के दर्द की रात है, अवाम के गम की रात है, जब उसके सीने में गूंजती है तो वो तलाश करने लगता है ये आवाज कहां से आ रही है, इनकलाब किस रास्ते से आ रहा है और दर्द किस रास्ते से आगे बढ़ रहा है। वो कान लगाए सुन रहा है और वक्त से पूछ रहा है ये किसकी सदा है।

0: इसी के साथ आज का गजलों का कार्यक्रम यही होता है संपन्न। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के ठीक 4 बजे हैं।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 4:20 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं वायलिन वादन, कलाकार है TK जयराम अय्यर, संगीत दिया है त्यागराजा ने, आपके साथ मृदंगम पर संगीत दिया है रामानंद ऐश्वरन ने और राग श्री रंजनी आदिताल में निबद्ध है। तो लीजिए सुनिए TK जयराम अय्यर का वायलिन पर राग श्री रंजनी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे टीके जयराम अय्यर का वायलिन वादन। आपने प्रस्तुत किया राग श्री रंजनी जो आदिताल में निबद्ध था।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई 2026। सुबह की 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। पाँच बजकर 20 मिनट का समय रहेगा देशभक्ति गीत का और 5:30 आप सुन सकेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शहनाई वादन, कलाकार होंगे अशोक कुमार। 6:10 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर चिंतन होगा और आज आप सुनेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार। 6:45 पर रामचरित मानस से पाठ सुनिएगा। आज होगा बालकांड का भाग 66। 7:10 पर सुनिएगा संगीतिका। आज आप सुनेंगे आशुतोष कुमार के गाए भजन। 7:30 गीतों भरी गुड मॉर्निंग का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे और 8:00 आप सुनेंगे समाचार। 8:45 पर स्वर गंगा शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायन शुभम कुमार से। 9:15 का समय रहेगा अवर गेस्ट का। 9:00 कार्यक्रम मिट्टी दी महक का समय रहेगा सुबह 9:30। 10:10 पर सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:10 पर आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया और उसी के साथ आपके लिए प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम सबरस। 11:30 हम आपके लिए लेकर आएंगे सुर मंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित राजन मिश्रा और पंडित साजन मिश्रा का गायन।

12 बजकर 10 मिनट पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम घर आंगन। 1 बजकर 10 मिनट पर सुनेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आज की फिल्म होगी मुकद्दर का सिकंदर। 2 बजकर 30 मिनट पर सुनिए

0: होगी जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, सुबह के 5 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो की यात्रा का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यात्रा समसामयिक संदर्भ में भारत और अमेरिका के संबंधों का महत्व उजागर करती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एक वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों की सतत भागीदारी और मजबूत करने की दिशा तय कर दी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। सीबीएसई ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। बोर्ड ने यह भी बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सके। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी

0: Kudung was ceremonially enshrined within the golden reliquary stupa at Devrali Chorten Gonpa, an eternal symbol of the Rinpoche's compassion, wisdom, and enduring spiritual legacy. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 5:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

मैं योगाचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है। ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लगे।

जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है। दीर्घ श्वास प्रेक्षा, शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है। दीर्घ श्वास के अभ्यास से बेहतरीन मेडिटेशन।

印度特里广播电台，听众朋友们，请收听 Rahat Fateh Ali Khan 唱的歌曲。

印度特里广播电台听众朋友们，请收听 Nusrat Fateh Ali Khan 唱的印地语歌曲。